सुप्रभात, ये आकाशवाणी का चाय बासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। आज बृहस्पतिवार है, सक संवत 1948, आषाढ़ माह की तिथि 18, तदनुसार जुलाई 9 ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वागत समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
1: सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में कल 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। आईएमएफ द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि वो ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पहुंचने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से वर्षा जारी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Discussions between the two leaders are expected to focus on strengthening cooperation in trade, defence, critical technologies, education and people-to-people ties. His visit is expected to provide fresh momentum to the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. Prime Minister Modi is also scheduled to participate in the India-Australia CEOs Forum and address business leaders from both the countries. He will also interact with the Indian diaspora at a community event in Melbourne. Mr. Modi arrived in Melbourne yesterday evening on a 3-day visit to Australia at the invitation of Australian Prime Minister. PM Modi arrived in Melbourne from Indonesia in the second leg of his three-nation tour. India and Myanmar have discussed bilateral security cooperation and reviewed progress under bilateral dialogue mechanisms. The two-day 23rd national-level meeting between India and Myanmar concluded in New Delhi yesterday. Ministry of Home Affairs said that the two sides discussed cooperation in combating transnational crimes, including terrorism, insurgency, narcotics trafficking, arms smuggling, human trafficking, wildlife trafficking, cybercrime, and other forms of organized crime. They also agreed to enhance intelligence sharing and operational coordination and undertake capacity building initiatives to address shared security challenges effectively. Centre has approved the procurement of copra and Thoothukudi mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare said that this will ensure better price realisation for producers and protect them from distressed sales caused by market fluctuations. The approval is based on the proposal submitted by Tamil Nadu. Under the approval, over 87,000 metric tons of copra will be procured in the state. The entire procurement will

श्री रामचरितमानस के प्रत्येक सोपान का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास ने देववाणी संस्कृत में रचित मंगलाचरण से किया है। इन छंदों में शंकर तथा श्री राम सहित अन्य देवताओं की स्तुति की गई है। प्रथम सोपान बालकांड के आरंभ में सरस्वती, गणेश, पार्वती, शंकर, कविश्वर वाल्मीकि तथा हनुमान की वंदना की गई है। द्वितीय सोपान अर्थात अयोध्या कांड गुरु रूप श्री शंकर तथा नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले श्री राम की स्तुति से आरंभ होता है, जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती, मस्तक पर गंगा, ललाट पर द्वितीया का बालचंद्र,

में हलाहल विश तथा वक्षस्थल पर सर्पराज शेष सुशोभित हैं। भस्म से विभूषित शरीर देवताओं में श्रेष्ठ संहारकर्ता तथा भक्तों के पापनाशक सर्वव्यापी कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण वाले ऐसे देवाधिदेव महादेव से गोस्वामी तुलसीदास अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। भक्त कवि की कामना है कि रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले श्री रामचंद्र, जिनका मुखमंडल ना तो राज्याभिषेक से प्रसन्न हुआ और ना ही जो वनवास के दुख से मलिन हुआ, सदा मंगलदायी हों। नीले कमल के समान श्याम वर्ण और कोमल अंग हैं जिनके, सीता जी जिनके वाम भाग में अवस्थित हैं, जिनके हाथों में अमोघ बाण और धनुष सुशोभित हैं, उन रघुवंशनाथ का तुलसीदास नमन करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार थे रंजन मिश्रा और साजन मिश्रा। ये आकाशवाणी का चहबसा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण, लता मंगेशकर और पंडित भीमसेन जोशी के स्वरों में।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी, महेंद्र कपूर के स्वरों में।

आइए अब सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ देर बाद यानी कि सुबह के 6:45 का समय होगा सुगम संगीत का। आप सुनेंगे सुभाषिष मित्रा के स्वर में। सुबह के 7 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायवासा का। सुबह 8 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार सुबह के 8:15 पर। सुबह 8:30 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का आकाशवाणी रांची से। सुबह के 8:40 का समय होगा लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आप सुनेंगे खोरठा लोकगीत कलाकार होंगी करुणा कुमारी और साथी। सुबह के 9 का समय होगा कार्यक्रम विविधा का। सुबह 9:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। सुबह 10 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, इसके प्रायोजक होंगे NCERT। सुबह 10:30 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। दोपहर के 1:10 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा दोपहर के 1:20 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे दोपहर के 2:55 पर आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा 3 आकाशवाणी रांची से। मुख्य समाचार आप सुनेंगे शाम के 4 आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का प्रसारण जारी रहेगा शाम के 4:02 पर। शाम के 5 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। कार्यक्रम विवरण का प्रसारण होगा शाम के 5:02 पर। शाम के 5:05 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें आज आप सुनेंगे युगल गीत। किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे शाम के 5:30 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा बरसात के मौसम में भिंडी की खेती। उसके बाद आप सुनेंगे हो लोकगीत अमरनाथ सामंड और साथी को। मौसम की जानकारी के बाद आप सुनेंगे भेंट वार्ता। कार्यक्रम के अंत में सुनेंगे उड़िया लोकगीत जितेंद्र प्रधान और साथी को। शाम के 6 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम के 6:02 का समय होगा बांग्ला कार्यक्रम सात रंग का। शाम के 6:30 का समय होगा संथाली कार्यक्रम का। शाम के 7 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची से सुनेंगे जिले में आजकल। शाम 7:15 का समय होगा श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। रात्रि के 8 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। समाचार संध्या का प्रसारण होगा रात्रि के 8:45 पर आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार रात्रि के 9। रात्रि 9:15 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। रात्रि के 10 आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि के 10:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम शुरू के रंग। रात्रि के 11 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार रात्रि के 11:05 पर। और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत सुभाषिष मित्रा के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत सुबह से स्मित्रा के स्वर में। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है। आइए सुनते हैं अगला।

ये आकाशवाणी का चाय बासा केंद्र है। पेश है कार्यक्रम जोहार चाय बासा। कार्यक्रम जोहार चाय बासा सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को पूनम का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म राजा और रंग के इस गीत से, लता मंगेशकर के स्वर में।

अभी आपने सुना फिल्म राजपूत का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म इजाज़त से, आशा भोसले के स्वर में।

अभी आपने सुना फिल्म कुदरत का ये गीत किशोर कुमार के स्वर में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म लैला मजनू से, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में।

0: बनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: मोर नाम मंगलो राय को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहां बना है लोग आउ का वो जिंदा है ना।

अभी आपने सुना फिल्म दो दिलों की दास्तां का ये गीत सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म आखिर क्यों से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार की।

और आइए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म एतबार से, आशा भोसले और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ों में।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम जौहर चायबासा। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
0: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
0: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
3: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
3: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान

0: कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लोक सत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से पीएफ खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses India-Australia CEOs Forum in Melbourne, says it is natural and essential for India and Australia to move forward as trusted partners in a world marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of Khopra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
3: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
2: Prime Minister Modi also noted the complementarities between the Indian and Australian economies, underlining vast opportunities available in India across a number of sectors.
3: हमारी पार्टनरशिप केवल दोनों राजधानियों या कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें हमारे राज्यों, छोटे बड़े शहरों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों सभी के स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ, उसको हम उड़ीसा और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। क्वींसलैंड और टेस्मेनिया की क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज, पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिन्यूएबल कॉरिडोर्स और फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को नई गति दे सकते हैं।
2: Mr. Modi invited Australian investors to take advantage of opportunities for long-term investments in the country and also welcomed the growing presence of Australian universities in India.
3: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
2: Following the CEO's forum, Prime Minister Modi also addressed the Economic Roadmap Business Event, a large gathering of over 200 CEOs and business leaders from both sides. Speaking about natural synergies between India and Australia, he highlighted that shared democratic values, a common vision for the Indo-Pacific, vibrant people-to-people ties and strong political understanding created fertile ground for the business partnership between the two countries to grow and prosper together.
3: लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयास में आप सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज का ये संवाद नए आइडियाज, नई पार्टनरशिप और नए कमिटमेंट्स को जन्म देगा।
2: Now we go over to our Melbourne correspondent who is sharing more details on the Prime Minister's visit.
4: The India-Australia CEOs Forum marked a decisive shift from parallel diplomatic tracks to an integrated, future-proof economic engine. Prime Minister Modi

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 8:23 हुए हैं और अब समय हुआ है प्रादेशिक समाचार का।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: PLFI उग्रवादी और सिमडेगा में कोरोना काल के 8 वारंटी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। और रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में आज छाए रहेंगे बादल, गरज चमक के साथ वज्रपात और बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में विजन 2050 पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्श के दौरान वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ एक महत्वपूर्ण बिजनेस टू गवर्नमेंट यानी B2G बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, IBM और AWS जैसी दुनिया की शीर्ष तकनीकी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार झारखंड को नवाचार आधारित प्रौद्योगिकी विकास का अग्रणी राज्य बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: आप सबको मालूम है कि वर्तमान में परिवर्तन का दौर है, कई चीजों पर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा। चूंकि हमारे राज्य में मुख्य रूप से माइनिंग आधारित अर्थव्यवस्था में रहे, आज माइनिंग से ऊपर निकलने का, माइनिंग से बाहर निकलकर नॉलेज बेस विकास में कदम रखने का हम लोगों ने निर्णय लिया है।
0: रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने रांची के इटकी स्थित ऐतिहासिक TB सेनेटोरियम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं, आधारभूत संरचना और मरीजों को मिल रहे उपचार की विस्तृत समीक्षा की। संजय सेठ ने सेनेटोरियम के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और संस्थान की वर्तमान आवश्यकताओं व संसाधनों में सुधार को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। हजारीबाग के चौपारण स्थित बिरहोर टोला में केंद्र सरकार के आदि कर्मयोगी अभियान के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस मुख्य उद्देश्य आदिम बिरहोर समुदाय, अनुसूचित जनजाति और वंचित परिवारों तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। शिविर में ऑन स्पॉट आवेदन सहायता देकर अंतिम व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण का प्रयास किया गया।
2: अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाने आए थे और अपना स्वास्थ्य जांच करवाने, अपना BP, शुगर, हेमोग्लोबिन उसी का मतलब दवा ली।
3: हम यहाँ पे बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए आए हैं, फिर ये जॉब कार्ड में नाम है कि नहीं है उसको जांच करने के लिए आए हैं। जॉब कार्ड से बहुत फायदा है भी।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है।
4: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है, अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: झारखंड CID ने बोकारो के तेतुलिया मौजा में से 103 एकड़ संरक्षित वन भूमि की अवैध खरीद बिक्री के मामले में मुख्य आरोपी शैलेश कुमार सिंह को पटना से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को रांची लाया गया, जहां अदालत में पेशी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने 16 से 25 जुलाई तक आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा और बहुड़ा यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने को कहा गया है। सुरक्षा के लिए CCTV, ड्रोन निगरानी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जाएगी। आपातकालीन सेवाएं भी मुस्तैद रहेंगी। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी पुलिस ने 5 वर्षों से फरार PLFI उग्रवादी तोपाल मुंडा को मुरहू से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वह अपनी पहचान छिपाकर सामान्य जीवन जी रहा था और ड्राइवर का काम कर रहा था। उसके खिलाफ पुलिस मुठभेड़, फायरिंग, और

0: 17 सीएलए एक्ट सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। सिमडेगा की पाकड़टाड़ थाना पुलिस ने कोरोना काल के आपदा प्रबंधन अधिनियम उल्लंघन मामले में पिछले 6 वर्षों से फरार चल रहे 8 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसडीपीओ धर्मदेव पासवान के अनुसार पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत यह सफलता मिली है। रामगढ़ के भुरकुंडा में पुलिस ने पंचायत भवन के पीछे चल रही मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने के उपकरण और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायक ने बताया कि इस अवैध नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान करने और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सघन जांच कर रही है।
1: भुरकुंडा उप अंतर्गत अवैध हथियार के निर्माण और उसकी तस्करी के संदर्भ में प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर विगत रात्रि दिनेश विश्वकर्मा के घर पर छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में अपराधकर्मी दिनेश विश्वकर्मा के घर पर अवैध हथियार निर्माण की इकाई का पर्दाफाश हुआ है और घर की विधिवत तलाशी के क्रम में अवैध हथियार निर्माण में प्रयुक्त होने वाली कई सामग्रियां सबको बरामद किया गया है।
0: गोड्डा के कारगिल चौक स्थित बंगाल ज्वेलर्स में कल शाम 3 नकाबपोश अपराधियों ने 6 राउंड फायरिंग कर करीब 30 लाख रुपए के आभूषण और नकदी लूट ली। घटना के विरोध में पूर्व विधायक अमित मंडल और स्थानीय स्वर्णकारों ने आज गोड्डा बाजार बंद रखने का आह्वान किया है।
2: 7 बजे शाम में अगर इस तरह की घटना घटेगी तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य गोड्डा के लिए और कुछ नहीं हो सकता। मैं पुलिस से भी मांग करता हूं, स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी मांग करता हूं कि त्वरित गति से जो भी कल्प्रिट है, दोषी है, उसको गिरफ्तारी हो। और पुलिस प्रशासन क्या काम कर रही है, यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या काम कर रहे हैं, ये काफी चिंता का विषय दिखने को मिल रहा है।
0: राज्य के पुलिस महानिदेशक आज रांची स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में आयोजित पासपोर्ट सेवा दिवस के विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। इस गरिमामयी समारोह में पासपोर्ट सेवाओं को सुगम बनाने और सुरक्षा सत्यापन प्रक्रियाओं में तेजी लाने से जुड़े प्रयासों पर चर्चा होगी। रांची सहित राज्य के अधिकांश जिलों में आज बादल छाए रहेंगे और कई हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र ने गरज चमक के साथ वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन मॉनसून थोड़ा कमजोर रहेगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने नई दिल्ली में विजन 2050 पर झारखंड की ओर से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्श की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, माइंड से माइंड्स की ओर बढ़ेगा झारखंड, एआई पर फोकस। हिंदुस्तान के शब्द हैं, रांची संघ कार्यालय पर हमले में देश भर में एनआईए छापे। प्रभात खबर लिखता है, वित्त मंत्री दिल्ली में मौजूद लेकिन सरकार के कार्यक्रम से रखी दूरी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जमीन माफिया को लाभ दिलाने के लिए डीसी की सही रिपोर्ट को पलट दिया था कमिश्नर ने। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्श के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वैश्विक कंपनियों के साथ की बैठक, रणनीतिक साझेदारी और विभिन्न तकनीकी प्रस्तावों पर चर्चा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में इटकी टीबी सैनिटोरियम का किया निरीक्षण, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल करने और पुरानी पहचान लौटाने का दिया निर्देश। बोकारो वन भूमि घोटाले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी शैलेश कुमार सिंह पटना से गिरफ्तार, रांची की अदालत ने भेजा न्यायिक हिरासत में। खूंटी में 5 वर्षों से फरार पीएलएफआई उग्रवादी और सिमडेगा में कोरोना काल के 8 वारंटी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। और रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में आज छाए रहेंगे बादल, गरज चमक के साथ वज्रपात और बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आप सुनेंगे खोरठा लोकगीत। कलाकार हैं करुणा कुमारी और साथी।

अभी आप सुन रहे थे खोरठा लोकगीत, कलाकार थी करुणा कुमारी और साथी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं कार्यक्रम विविधा।

कार्यक्रम विविधा सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को पूनम का नमस्कार। श्रोताओं, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना दिवस। जी हाँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना 9 जुलाई

0: 1949 को हुई थी। इसलिए हर साल इस दिन को एबीवी के स्थापना दिवस या राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठनों में से एक है। इसका उद्देश्य ज्ञान, सील और एकता के मूल मंत्र पर आधारित यह संगठन छात्रों में राष्ट्रभक्ति और सामाजिक चेतना जगाने का कार्य करता है। इस अवसर पर देश भर में रक्तदान शिविर, संगोष्ठी और विद्यार्थी चेतना जैसे साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस तरह से आज के दिन यह मनाया जाता है। बातें हम आपसे और भी करेंगे, सुनते हैं जरूरी संदेश।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: इस संदेश के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता, बच्चों के विकास में परिवार और स्कूल का योगदान। भेंट वार्ताकार हैं पूनम देवगम, उनसे बातें कर रही हैं आशा पिंगवा।
2: सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए।
3: मेरा नाम पूनम देवगम, मैं स्प्राउट चाइल्ड ग्रूमिंग सेंटर की सेंटर इंचार्ज हूँ।
2: अच्छा, और यहाँ पर कितने साल के बच्चे और कितने साल तक है यहाँ पर
3: बच्चे? यहाँ पे हम लोग ढाई साल से लेते हैं, ढाई साल से लेते हैं, उसके बाद तो उधर हम लोग का मतलब कि कोई एज लिमिट नहीं रखे हैं।
2: अच्छा, तो यहाँ तो हम देखने के बहुत छोटे बच्चे भी हैं, तो यहाँ कोई परेशानी नहीं होती है आप लोगों को?
3: नहीं, अभी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से ही बच्चे को वैसे तैयार करते हैं। अब तक हम लोग को जैसे कि बच्चे ज्वाइनिंग करते हैं अब तक हम लोग को दिक्कत होता है, लेकिन उसके बाद हम लोग को दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि बच्चे पूरा हम लोग का मॉल में ढल जाते हैं।
2: अच्छा, पूनम जी ये बताइए कि आपका घर तो यहाँ नहीं है, किसी और जगह है?
3: यस मैम, मेरा घर तो यहाँ पे नहीं है, मैं लुफुंगोटो साइड की हूँ।
2: अच्छा,
3: बरंडे गांव है मेरा।
2: अच्छा हाँ, तो आपने कैसे सोचा कि आपको ये काम करना है?
3: जैसे कि गांव में बच्चे लोग को देखते हैं और यहाँ टाउन में भी हम रहे हैं तो टाउन में भी देखे हैं, जैसे कि मम्मी पापा दोनों काम करते हैं तो बच्चे को छोड़ने के लिए उन लोग को दिक्कत होता है कि किसके पास छोड़े, कैसे रखे, दिक्कत होता है, बहुत सारा परेशानी आती है। और आजकल तो सब हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, मम्मी पापा जॉब करते हैं, तो बच्चे को किसके पास छोड़ेंगे।
2: अच्छा,
3: तो इसी के कारण से हम लोग का एक मन में आया कि क्या हम लोग डे केयर सेंटर चलाएंगे और बच्चे लोग को रखेंगे बोल करके। इसलिए अभी हम लोग डे केयर सेंटर चैवासा के हम लोग का एकमात्र डे केयर सेंटर है।
2: अच्छा,
3: जहाँ पे हम लोग दिन भर बच्चे लोग को, छोटे से छोटे बच्चे लोग को रखते हैं यहाँ।
2: और आपकी पढ़ाई लिखाई वही गाँव से ही आना जाना करके हुई?
3: नहीं, मेरा यहाँ चैवासा से ही हुआ है, चैवासा में रह करके हम इंटर किए हैं।
2: अच्छा,
3: हम बोकारो स्टील सिटी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं।
2: अच्छा, और उसके बाद आपने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है?
3: हाँ, हम यहाँ पर ज्वाइन किए हैं, स्टार्टिंग से ही हम लोग हैं, 2022 से हम लोग स्टार्ट किए हैं।
2: अच्छा,
3: तब से ही हम लोग आप साथ में काम कर रहे हैं।
2: तब की ज़्यादा पुराना नहीं है, ये नया ही है समझिए। अभी तो आप देख रहे हैं कि आपका जो ये स्कूल है या सेंटर है वो अभी बाल्य अवस्था में है, वो धीरे धीरे खड़ा हो रहा है, लेकिन यहाँ बच्चे बहुत खुश रहते हैं।
3: जी मैम।
2: जी हाँ, तो अच्छा, बच्चों के विकास में से पूनम जी बताइए कि क्या क्या जरूरी होता है
3: बच्चों का विकास के लिए? जैसे वातावरण हम लोग को उस टाइप का रहना चाहिए जैसे कि बच्चे को अच्छा शिक्षा मिल सके।
2: अच्छा,
3: जैसे कि आपका गांव वाले और टाउन में बहुत अंतर हो जाता है, गांव का बच्चा और शहर के बच्चे का बहुत अंतर हो जाता है। गांव में हम लोग जब तक बच्चे का 4-5 साल नहीं होता है तब तक हम लोग स्कूल नहीं भेजते हैं, लेकिन मेरे यहाँ 2.5 साल से बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए आते हैं। 2 साल का बच्चा भी आते हैं जो बोलने नहीं सीखते हैं, वो लोग भी आते हैं। और फिर हम लोग गांव में क्या करते हैं कि हम लोग अपना जो मातृभाषा है उसको यूज करते हैं, और टाउन में वो लोग का जो हम लोग का राष्ट्रीय भाषा है जो उसको यूज करते हैं, वो लोग सब हिंदी में ही बोलते हैं। तो इसलिए बच्चे लोग का मतलब शुरू से ही अगर आप छोटे से ही आप ऐसे माहौल दीजिएगा तो बच्चे जल्दी पकड़ लेते हैं।
2: जब पूनम जी आपने बहुत सही कहा है कि गांव के बच्चे जो है उनके माता पिता जो है वो जैसे बोलने लायक हो जाते हैं बच्चे, तो उन्हें हो में या जो घर के जो मातृभाषा है उन्हें ही उससे से ही शुरुआत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हिंदी बोलना चाहिए। और जब स्कूल में वो बड़े हो जाते हैं तब अंग्रेजी भी उतना ही जरूरी होता है आगे की पढ़ाई के लिए, है कि नहीं पूनम जी? आप क्या इस बात से आप सहमत है कि?
3: जी मैम, हम इस बात से सहमत है, क्योंकि एक टाइम मेरे साथ भी वही चीज़ हुआ था, क्योंकि हम लोग को गांव में वही घर में अगर गांव में रहते हैं तो वही चीज़ सिखाता है, जो हम लोग का मातृभाषा है उसी में बात करते हैं, सब मम्मी पापा सब जितना है हम लोग उसी में बात करते हैं। फिर बाद में जब टाउन में हम लोग कोई स्कूल में पढ़ते हैं तो

0: को दिक्कत होता है, फिर हम लोग को डर बैठ जाता है कि हम कैसे बोलेंगे, किस तरह से बात करेंगे उसके सामने करके।
1: तो वैसे आप यहाँ पर आप जितने दिन काम कर रहे हैं, आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा?
0: हाँ, मुझे बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला। जैसे कि मैं इंटर कर चुकी थी, इंटर मेरा कंप्लीट था, लेकिन फिर भी लोगों से बातचीत करना मुझे डर लगता था कि कैसे बात करें, क्योंकि हम लोग फोन में ज़्यादा बात करते थे। हमको आता था हिंदी, लेकिन बातचीत करने में फिर भी डर लगता था कि कैसे बातचीत करें। लेकिन यहाँ पे रह करके जैसे बच्चे लोग को सिखाते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे भी आना चाहिए पहले, तब जाके हम बच्चे लोग को उस लेवल ले करके जाएंगे। इसलिए हमको कभी डर नहीं लगता।
1: अच्छा, उसके बाद
0: इसलिए हमको अभी डर नहीं लगता है। तो जैसे कि स्टेज में बच्चे लोग, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लोग प्रोग्राम करते हैं, हम लोग का 5-6 साल बच्चे लोग स्टेज में जाकर बोलते हैं, डांस करते हैं, तो सारा वो चीज़ अभी हम लोग भी अपने ऊपर भी ये करते हैं। जैसे कि बच्चे को हम लोग कुछ सिखा रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि टीचर लोग भी करें, तो हम लोग खुद भी करते हैं, बच्चे लोग को भी करवाते हैं।
1: जी हाँ।
0: तो इसलिए बहुत कुछ यहाँ पे रह करके मुझे सीखने को मिला।
1: और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जब अपनी तोतली जुबान से आपको पुकारते हैं या कुछ से बात करने की कोशिश करते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है?
0: मुझे बहुत खुशी भी मिलती है कि जैसे कि बच्चे बोलने तक नहीं जानते हैं, उस बच्चे को मेरा सेंटर में लाते हैं कि आप सिखाइएगा, हम लोग के ऊपर पूरा भरोसा विश्वास के साथ सिखाइएगा, बोल करके छोड़ देते हैं। उसके बाद बच्चे जब बोलने लग जाते हैं, जैसे तोतला करके बोलते हैं, उसके बाद जब साफ साफ बोलते हैं, तो हम लोग को बहुत खुशी मिलता है। बहुत सारे वैसे बच्चे हैं हम लोग के पास जो कि एक वर्ड भी नहीं बोल पाते हैं, पूरा वो लोग बोल दिए थे गार्जियन लोग कि नहीं नहीं बोलते हैं, ये तो ऐसे वैसे बोल करके नहीं बोल पाएंगे बोल करके, लेकिन यहाँ आ करके बच्चे बोलते हैं,
1: जी हाँ।
0: क्योंकि हम लोग बच्चे लोग को नहीं छोड़ते हैं, हमेशा हम लोग उसी के आगे पीछे इधर उधर रहते हैं, कोई ना कोई स्टाफ हम लोग साथ में रहते हैं, तो हम लोग बातचीत करते रहते हैं,
1: जी हाँ।
0: इसी के कारण से बच्चे लोग जल्दी पकड़ लेते हैं।
1: अच्छा, कोई भी बच्चों के विकास में, वैसे तो परिवार में अगर है तो बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं, वैसे परिवार के तरफ से भी और कहीं और, या तो फिर अगर वो कहीं जा रहे हैं बाहर बाहर बहुत सारी बाधाएं आती हैं, तो उसका निपटारा, उसका समस्या का समाधान माँ बाप कैसे करेंगे?
0: जैसे कि अभी हम लोग स्टार्टिंग में बोले हैं कि यहाँ पे डे केयर सेंटर है, यहाँ पे साथ में हॉस्टल भी है, तो फिर अब जैसे कि यहाँ पे आप बच्चे को छोड़ सकते हैं, अगर हम मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं होता है, पेरेंट्स बने हैं आपके पास, मम्मी पापा दोनों के पास टाइम नहीं होता है, तो कोई हॉस्टल में डाल दीजिए बच्चे को। अभी दोनों हॉस्टल है, प्राइवेट भी सरकारी भी हर जगह मिलता
1: और
0: है।
1: यही कम उम्र में ही जो है, जो सीखना है वो सिखाना है।
0: हाँ, कम उम्र में ही आप जितना कम उम्र में आप सिखा दीजिएगा, उतना ही माँ बाप के लिए आसान होता है
1: जी
0: मेरे।
1: हाँ, क्योंकि नींव जब अच्छा नहीं पड़ेगा तो ऊपरी दीवार आप जैसा कहते हैं वो अच्छा नहीं रहता, वो कमजोर हो जाता
0: हाँ
1: है कि नहीं?
0: जी,
1: और जैसे कि बच्चों को देखभाल की बहुत ज़रूरत होती है, और खेल कूद के माध्यम से भी बहुत ज़रूरी होता है, और बच्चे खेल कूद के माध्यम से बहुत जल्दी सीख जाते हैं,
0: यस मैम।
1: तो आप क्या कहेंगे?
0: इसलिए हम लोग जैसे कि हम लोग का स्प्राउट स्कूल है, तो उसमें हम लोग ये करते हैं कि TLM द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, प्लस जो टीवी जो है स्मार्ट टीवी द्वारा पढ़ाया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे तो उसको हम किताब दिखा करके पढ़ाएंगे तो वो पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं लेंगे,
1: जी हाँ।
0: उसका मन नहीं लगेगा। तो हम लोग जो TLM द्वारा पढ़ाते हैं, उसको दिखा दिखा करके पढ़ाते हैं, टीवी दिखाएंगे, उसमें कार्टून कुछ चला देते हैं, उसमें ABCD बोल रहे हैं, वो आप बोल रहे हैं, हम लोग वैसे बच्चे लोग को पढ़ाते हैं।
1: अच्छा, मतलब अब तो मोबाइल और टीवी का ज़माना है, तो अब बहुत जल्दी ही सीख जाते हैं बच्चे जो है, शुरू से ही टीवी और मोबाइल पर दिलचस्पी है, तो खेल कूद के माध्यम से ही बहुत जल्द सीख जाते हैं उससे।
0: जी,
1: और जैसे और कौन कौन सा खेल होता है बच्चों के लिए?
0: यहाँ पे हम लोग का जो छोटे बच्चे लोग का है, छोटे बच्चे लोग का खेल कूद बहुत ज़्यादा है, जैसे आउटडोर इंडोर अलग अलग हम लोग का है। एक
1: हाँ
0: तो हम लोग जब अंदर में भी करवाते हैं और मैदान भी हम लोग लेकर के चले जाते हैं बच्चे लोग को,

0: जैसे कबड्डी हुआ, बैडमिंटन हुआ, चेस हुआ, लूडो हुआ, वो
1: अच्छा
0: सब कैरम बोर्ड हुआ, वो सब हम लोग खेलने के लिए देते हैं बच्चों को।
1: अच्छा क्विज प्रोग्राम होता है कि नहीं यहाँ पर, जैसे कि
0: हाँ
1: कुछ बड़े हो गए बच्चे?
0: जी मैम, हम लोग का जैसे रूटीन में ही है,
1: अच्छा
0: हर सैटरडे को हम लोग प्रोग्राम करवाते हैं, हर सैटरडे को हम लोग कल्चर प्रोग्राम करवाते हैं, लास्ट सैटरडे को, महीना का लास्ट सैटरडे को हम लोग फाइनल प्रोग्राम करवाते हैं, उसमें बच्चे लोग को प्राइज देते हैं, उसमें कंपटीशन रखते हैं हम लोग, डांस का रहता है सिंगल डांस, उसके बाद आपका ग्रुप डांस भी रहता है, उसके बाद स्पीच उसमें बच्चे लोग को बोलने का रहता है, उसके बाद बच्चे लोग का ड्राइंग भी रहता है, जीके रहता है उसी में। हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे को हफ्ता भर में क्या सीख मिला है यहाँ से, उसको हम लोग कवर करने के लिए हर सैटरडे को हम लोग प्रोग्राम रखते हैं।
1: अच्छा पूनम जी, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जो यहाँ पर बच्चे हैं वो तो सीखते ही हैं, पर कभी कभी हमें आप ही लोग बताए थे कि जो माता पिता जॉब में जाते हैं वो बच्चे यहाँ छोड़ कर जाते हैं,
0: यस
1: है ना, और जो माता पिता जॉब में नहीं जाते हैं, खेतों में काम करने जाते हैं, तो वे बच्चे जो घर में रह जाते हैं वो कोई ऐसे परिवार है जो यहाँ ला करके छोड़ देते हैं?
0: जी मैम, जैसे कि अगर बच्चे को हम लोग आगे लेकर के जाना है, बच्चे को अच्छा शिक्षा मिले बोल करके हम लोग सोचेंगे, तो जरूरी नहीं है कि माँ बाप नौकरी करे तभी बच्चे को पढ़वा सकते हैं,
1: जी
0: वो
1: हाँ
0: माँ बाप के ऊपर में वो चीज़ होना चाहिए कि हम नहीं पढ़े हैं लेकिन मेरा बच्चा को हम पढ़ाएंगे।
1: अच्छा
0: तो वैसे भी यहाँ पे बच्चे रहते हैं जिसका मम्मी पापा दोनों जॉब नहीं करते हैं लेकिन खेत का
1: अच्छा
0: काम करते हैं, जैसे कि बगान लगा करके या तो फिर कुछ ना कुछ काम करके गांव में बच्चे को यहाँ छोड़े हैं, हॉस्टल में भी
1: अच्छा
0: रहते हैं बच्चे लोग ऐसे।
1: अच्छा यहाँ सेंटर में जो कुछ जो बच्चे बड़े हो चुके हैं
0: जी
1: उनके लिए पढ़ाई के अलावा और क्या क्या चीज़ आप लोग एक्स्ट्रा जो है शिक्षा देते हैं?
0: एक्स्ट्रा में हम लोग जैसे कि उसको जैसे ज़रूरत होता है बच्चे को, जैसे एज के हिसाब से हर चीज़ की ज़रूरत होता है बच्चे को, तो हम लोग हर चीज़ वो लोग को अलग अलग डिवाइड करके वो लोग उम्र के हिसाब से हम लोग हर चीज़ सिखाने का कोशिश करते हैं।
1: अच्छा जैसे काम हम पहले हम लोग जो संत जेवियर पढ़ते थे तो उस समय हम लोगों को बागवानी कराया जाता था और हॉस्टल की क्लासरूम की साफ सफाई।
0: यस मैम, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किए कि और एक्स्ट्रा में क्या क्या करवाते हैं हम लोग यहाँ, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि SUPW, जो कि उसमें हम लोग का बच्चे लोग को वो लोग का उम्र के हिसाब से वो लोग को झाड़ू करने भी सिखाते हैं हम लोग, जैसे उसको बगान लगाने भी सिखाते हैं कि कैसे लगाते हैं बगान, उसके बाद साफ सब्जी काटने का भी तरीका हम लोग सिखाते हैं कि ऐसे काटना चाहिए वैसे काटना चाहिए ये करना चाहिए बोल कर, उसके बाद जिस दिन छुट्टी रहता है स्कूल उस दिन हम लोग कपड़ा धोने का भी सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे धोते हैं कपड़ा ऐसे धोते हैं बोल करके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए,
1: जी हाँ
0: अपना काम अपने खुद करना पड़ता है, अभी यहाँ पे है बच्चे कल को बड़े होकर के दूसरा शहर में जाएंगे फिर वहाँ पे वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, सब वो ये के ऊपर ही निर्भर रहेगा तो नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए हम लोग सारा चीज़ बच्चे को सिखाते हैं,
1: यानी कि पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है तो ये सब अपना काम भी जरूरी है,
0: अपना
1: घर का
0: काम भी
1: काम।
0: जरूरी है।
1: अगर बच्चे जो है कृषि लाइन में अगर जा रहे हैं, उनका इंटरेस्ट है खेती बाड़ी करना, तो खेती बाड़ी भी बहुत बड़ा काम
0: यस
1: है कि
0: मैम, यस
1: नहीं?
0: मैम, जैसे कि हम लोग का गांव में तो सब कोई के पास खेत रहता है, तो इसमें कुछ कुछ बच्चे लोग हैं हम लोग के यहाँ पढ़ते हैं, वो लोग बोलते भी है कि हम लोग बिजनेसमैन बनेंगे, हम लोग गांव में अपना खेत है तो हम लोग वहाँ पे बागान करेंगे ये करेंगे वो करेंगे बोल करके, तो हम लोग महीना में एक बार हम लोग गांव लेकर के जाते हैं बच्चे लोग को,
1: अच्छा
0: वहाँ पे गाँव लेकर के जाते हैं, फिर बाद में वहाँ पे हम लोग सिखाते हैं कि बागान कैसे करते हैं, पौधा पौधा को अगर लगाते हैं तो कैसे लगाना चाहिए किस तरीका से लगाना चाहिए बोल करके हम लोग सिखाते हैं।
1: और ये बहुत जरूरी है। पहले के बच्चे क्या होते थे कि हाँ सिर्फ पढ़ाई करना तो सिर्फ हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन अब जो है माता पिता भी गांव के जागरूक हो गए हैं और वो खेतों में भी भेजते हैं, स्कूल में भले ही उतना जानकारी उन्हें नहीं हो लेकिन शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। और अच्छा माता पिता जब गांव जाते हैं तो माता पिता लोगों को कैसे समझाते हैं आप लोग?
0: जैसे कि हम लोग का नियम में ही लिखा हुआ है मैम वो वाला कि
1: अच्छा
0: आपको यहाँ डालना है, तो जैसे हम लोग लिखे हैं उस हिसाब से आपको बच्चे को रखना होगा, जैसे कि हम लोग का नियम में लिखा हुआ है कि बच्चे लोग को हम लोग बगान भी सिखाते हैं, हम अभी अभी ही बोले कि झाड़ू पोछा भी करवाते हैं हम लोग,

0: क्योंकि अपना काम खुद करना है, औरों पे डिपेंड नहीं रहना है, तो इसीलिए हम लोग सारा चीज करने का कोशिश करवाते हैं, कोशिश करते हैं कि सारा चीज बच्चे सीखें। तो हम लोग का रूटीन में तो कुछ नहीं बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हाँ अच्छा सिखाइएगा बोलते हैं, और कुछ कुछ पेरेंट्स तो बहुत ही मतलब कि खुश हो जाते हैं कि मेरा बच्चे कर रहे हैं बोलकर।
1: आखिर तो माँ बाप को ही फायदा होगा उससे, और सबसे पहले तो बच्चे को खुद फायदा होगा इससे कि वहाँ वो अपना काम अपने खुद कर रहे हैं और किसी पर डिपेंड नहीं है, वो खुद करना चाह रहे हैं। और यहाँ आपके संस्था में, आपके सेंटर में और बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है?
0: जी मैम, अभी जैसे कि हमने बोला कि बगान उगान सिखाते हैं हम लोग बोल करके, तो उसके बाद हम लोग जैसे कि छोटा मोटा काम रहता है, वो लोग खुद का कपड़ा धोना,
1: हाँ,
0: वो सब सारा चीज हम लोग सिखाते हैं कि ऐसे धोते हैं, ऐसे करते हैं बोल करके। बर्तन खुद का प्लेट वो लोग का करके खुद ही धोते हैं, 6-7 साल के बच्चे लोग हैं, खुद ही धो देते हैं वो लोग।
1: अच्छा।
0: हम लोग को धोना नहीं पड़ता है, वो लोग को सिखाते हैं कि ऐसे धोते हैं ऐसे, तो लोग खुद धोते हैं।
1: और अब जो है आ जाता है खाना बनाने की पारी, तो उन उधर भी ध्यान लगाना होता होगा उन लोगों को कि किस तरह से खाना बनाया जाता है।
0: जी मैम, इसमें क्या है कि बड़े बच्चे जो हो गए हैं, बड़े जो
1: बड़े
0: 12-13 साल के हो गए हैं,
1: जैसे जैसे मतलब कि उम्र बढ़ रहा है, तो हम उसी हिसाब से उसे आप लोग सिखाते होंगे।
0: जी मैम, तो उसमें बच्चे लोग खुद बोलते हैं कि मैम आज हम लोग चाय बना करके पिलाएंगे आप लोग।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो फिर बाद में हम लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है आइए आप लोग बना करके दीजिए हम लोग को, तो हम लोग कोई गाइड करते हैं, कोई स्टाफ रहते हैं साथ में गाइड करते हैं ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। जब बना लेते हैं उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा बना है, तो बच्चे लोग बहुत खुश होते हैं। तो लेकिन हम लोग घर में नहीं करवाते हैं, सबसे बड़ी बात कि घर में हम लोग बच्चे लोग को अपने हिसाब बच्चे के हिसाब से हम लोग नहीं करवाते हैं। और हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि बच्चे का मन में क्या है, बच्चे का सोच क्या है, बच्चे क्या करना चाहते हैं, तो हम लोग उस हिसाब से बच्चे को करवाते हैं।
1: और यहाँ पर वैसे कि ज़्यादातर कौन सा सब्जेक्ट आप लोग पढ़ाते हैं बच्चों को?
0: हम लोग के यहाँ तीनों सब्जेक्ट हैं मैम, जैसे कि आपका वो भी हम लोग के यहाँ पढ़ाई होता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: उसके बाद हिंदी भी होता है, उसके बाद इंग्लिश भी होता है।
1: और जैसे कि कुछ बड़े होने पर कॉलेज में जैसे कि साइकोलॉजी हिस्ट्री वगैरह पढ़ाई होती है?
0: अभी तक तो हम लोग वैसे ये नहीं किए हैं, बच्चे लोग को हम लोग चाहते हैं कि बच्चे को किस में इंटरेस्ट है।
1: हाँ हाँ।
0: हम लोग बच्चे लोग को फोर्स नहीं करते हैं कि आपको यही करना है यही कीजिए, वैसे नहीं करते हैं। बच्चे को जो मन में आ रहा है वो हम लोग बोलते हैं कि वो चीज़ पढ़ने में ये होता है वो मिलता है, वो चीज़ हम लोग समझाते हैं, लेकिन उसको जबरदस्ती हम लोग किसी सब्जेक्ट में उसको ढकेलते नहीं।
1: हाँ नहीं, मतलब कि जबरदस्ती आप लोग नहीं सब्जी करते, उनकी रुचि, अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं किसी की रुचि होती है मैकेनिक बनने का और किसी की रुचि होती है कि हम मैं बड़ा अफसर बनूंगा डॉक्टर बनूंगा, उसी हिसाब से भी होना चाहिए। और माता पिता को आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग एक बार हम लोग के सेंटर में विजिट करके एक बार जानिए कि यहाँ पे क्या शिक्षा मिलता है, कौन सा कैसे है, क्या है बोल करके। जैसे कि बहुत सारे माता पिता को नहीं पता है स्प्राउट चाइल्ड ग्रूमिंग सेंटर में ये सब वो सब होता है बोल करके, तो हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि सभी माता पिता को जितना को जरूरत है वो लोग तक ये पहुंचे कि हम लोग के यहाँ डे केयर सेंटर है, जहाँ पे आप बच्चे को बेफिक्र होकर के आप छोड़ करके जा सकते हैं, बच्चे को अच्छा शिक्षा के साथ साथ हम लोग अच्छे से ग्रूम करके बच्चे को वापस आपको दे देंगे।
1: जी हाँ। और जैसे गांव के जो परिवार होते हैं, जो गांव में बसे रहते हैं, एक एक समाधान उन लोगों के लिए बहुत कठिन होता जा रहा है जो कि नशा पान, तो उनके उन संदेश के तौर पर आप उन परिवार को क्या कहना चाहेंगे?
0: जी मैम, इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि अभी छोटे छोटे बच्चे लोग नशा पान कर रहे हैं, बीच में इसमें रैली भी निकला हुआ था, हम लोग देखे थे, तो उसमें बच्चे को मतलब कि माँ बाप कहीं ना कहीं हम लोग माँ बाप लोग ही इसका जिम्मेदार रहते हैं, प्लस जो स्कूल में हम लोग उसको शिक्षा देना चाहिए वो सब में थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही है समझाने में बच्चे को, इसी कारण शायद होते जा रहा है ये चीज़। तो उसमें बच्चे को समझना चाहिए, माँ बाप को समझना चाहिए कि बच्चे अभी उम्र उसका बढ़ते जा रहा है, तो क्या सिखाना चाहिए क्या नहीं सिखाना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे बड़े बच्चे हैं उसको हम लोग सिखाते हैं कि आप नशा कीजिएगा तो कुछ नहीं है, वो आपका मुंह का टेस्ट

0: आपको कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए आपको ठीक लगेगा, लेकिन बाद में आपको खुद ही दिक्कत
1: जी
0: होगा।
1: हाँ, वो तो दिक्कत होगा ही।
0: जी मैम,
1: और ये जो है वो जिंदगी भर का वो समस्या रह जाता है अगर नहीं सुधारा गया तो। बच्चे जो है वो माँ बाप से सीखते हैं, है कि
0: जी
1: नहीं?
0: मैम,
1: और माँ बाप के गुजर जाने के बाद वो चीज़ बच्चों में आ जाता है, जो कि आजकल के ज़माने में जो है वो सब तो फैशन ही समझते हैं उसे, इसे छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, जिसके कारण उनका परिवार भी तबाह होता है, शारीरिक प्रॉब्लम भी आ जाती है कि
0: जी
1: नहीं?
0: मैम, ये तो आपने सही कहा, लेकिन हम लोग को इसमें थोड़ा सा बच्चे लोग को मतलब कि समझाना चाहिए, जो माँ बाप होते हैं तो समझाना चाहिए कि ये चीज़ करने से हम लोग को क्या मिलता है, क्या नुकसान होता है।
1: जी हाँ, नुकसान तो देखिए कोई भी चीज़ अगर हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो उसमें भी नुकसान ही है
0: जी
1: कि
0: मैम,
1: नहीं? वो सिर्फ नशा में है, उस वैसा भी बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में
0: सारा
1: नशा
0: चीज़
1: है।
0: में नुकसान तो है मैम, जब
1: जी
0: आप ज़्यादा लीजिएगा तो आप
1: हाँ, जी हाँ,
0: चाय भी अगर ज़्यादा लीजिएगा तो चाय में भी आपको नुकसान ही
1: नुकसान है।
0: मिलेगा।
1: जी हाँ, तो पूनम जी आपने बहुत अच्छी बातें कही, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना भेंट वार्ता, बच्चों के विकास में परिवार और स्कूल का योगदान। भेंट वार्ताकार थी पूनम देवगम, उनसे बातें कर रही थी आशा पिंगवा।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का कार्यक्रम विविधा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म कुर्बान के इस गीत से, अभिजीत और सारिका कपूर के स्वर में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
3: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की। खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे, लगता था ऐसे ही चलेगा। पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी, आयुष्मान वह वंदना कार्ड से। आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के हकदार।
4: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वह वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
5: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चायवासा से फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म यस बॉस से, कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। ये आकाशवाणी का चाय बसा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बजने वाले हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कीजिए स्वीकार। नमस्कार, विमलेश का उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी जोहार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच है, तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: ग्राम चरौदाबार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर।
1: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत, देवेश, ब्रिजेश जगत और एकता लावण्य कश्यप।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन।
1: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: और छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में।
2: पिछले दो दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।
1: जी हाँ श्रोताओं, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं। और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी, उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
2: जी, ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है ग्रैन एबुएलो। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसकी आयु 5000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं।
1: विमलेश जी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं, यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए, यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है, क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत,
2: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और पौधे निकलते रहते हैं। जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़, ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी हवाई जटाएं निकलती हैं, ये भूमि तक पहुंच जाती हैं और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है, क्योंकि इसके प्रकंदों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
1: जी विमलेश जी, जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
2: बिल्कुल।
1: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
2: जी।
1: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़, लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।
2: जी अजीत जी, विशालता की दृष्टि से एक अद्भुत पेड़ है। इसका मूल तना बिजली गिरने से नष्ट हो गया था, लेकिन अपनी हजारों सहायक जड़ों के कारण ये आज भी जीवित है। जी, तो आज हम बात कर रहे थे दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। एक और पेड़ है जिसका नाम है मतुशेलाह। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसकी आयु लगभग 4850 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये ग्रेट बेसिन ब्रिसल पाइन कोन प्रजाति का पेड़ है। ये मानव जाति के अधिकांश लिखित इतिहास से भी पुराना माना जाता है।
1: माना जाता है श्रोताओं कि इस पाइन वृक्ष का अंकुरण संभवतः 2800 ईसा पूर्व हुआ होगा। विमलेश जी, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की आयु की, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी बहुत रोचक होगा ना कि पेड़ों की आयु भला कैसे आंकी जाती है।
2: जी अजीत जी, पेड़ों की आयु को जानने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पेड़ों के वार्षिक वलयों की गिनती। इन वलयों को ट्री रिंग्स भी कहते हैं। आपने किसी कटे हुए पेड़ के तने को यदि देखा होगा कि उसमें कई वलय, छल्ले या रिंग्स दिखाई पड़ते हैं।
1: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन विमलेश जी, फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा।
2: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
1: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता है। विमलेश जी, एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
2: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
1: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते, बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी वर्षा हुई थी, जबकि सकरे वलय सूखा या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
2: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: आज का प्रश्न है, क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
2: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
2: हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश सभी अन्य देशों से अनूठा है।

0: भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी है तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है सबसे प्यारा, और अब सुनते हैं कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से बताया गया है, विशेषकर उस समय की शासन व्यवस्था और संस्कृति की चर्चा की गई है।
2: आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ कुछ लोग पहले से

आर्यों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। ये नदी अब सूख गई है। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी।

इस काल में समाज चार वर्णों में बंटने लगा था। ये वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था। आइए चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्यों की दुनिया में।

0: अरे वो काली गाय कैसे धुली तुमने? ये तो लात मारती है।
1: इसने मेरी काली और लाल दोनों मटकियां तोड़ दी है। हाँ
2: अरे धृताची।
3: हाँ भैया।
2: तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा दूध से भरी मटकी माँ को दिया।
3: अच्छा।
0: अरे अरे अरे देवदत्त, तुम उस घोड़े को संभालो। अरे उसने खूटा उखाड़ लिया है।
2: नहीं तात, ये काम आप प्रवाहन को ही सौंपिए, मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूँ।
4: अरे मगर... भाई ये क्या हो रहा है आज? अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या? तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त
2: जी,
4: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
2: पिताजी बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियां टूट गई। यज्ञ दत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़ाइयों और लोहारों के घर गया है। उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे।
4: ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बैलों वाली गाड़ी भी ले जाना।
2: जी पिताजी।
4: उसमें रख कर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना।
2: ठीक है।
4: टूटे बाड़े को भी ठीक करना है। कल वो काला घोड़ा वहां से निकल भागा था।
2: जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है।
4: अरे प्रवाहन।
1: जी पिताजी।
4: तुम तो मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो।
1: वो पिताजी,
4: अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं। तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ पता भी है? कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
1: जी वो
4: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए।
1: पिताजी हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
0: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे। क्यों देवदत्त?
2: हाँ हाँ पिताजी।
1: और पिताजी हम तो अपने साथ हरिराज शत्रु मर्दन को भी ले जा रहे हैं।
0: हाँ।
1: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे। खेत बस तैयारी समझिए।
4: नहीं नहीं, हरिराज और शत्रुमर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में।
1: जी
4: ने कल हस्तिनापुर जाना है।
0: पर क्यों पिताजी?
4: वहाँ महाराजाधिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है। इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी। वहाँ रथों की दौड़ भी होगी।
0: पिताजी हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
1: जी पिताजी।
0: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार हैं।
4: बहुत अच्छा।
0: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है, और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं।
1: पिताजी देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
0: हाँ पिताजी, हम ही जीतेंगे।
4: देव तुम पर

0: अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं, जौ और चावल ले जाना।
1: जी पिताजी।
0: सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है।
1: अच्छा पिताजी।
0: सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं। यही नहीं, गुरुकुलों के ब्रह्मचारी, गृहस्थ और साधु सन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं।
2: अच्छा पिताजी, हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धिताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है।
3: हाँ। ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है?
0: आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
3: अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना। सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
1: चल चल, बढ़िया ही कंगन वाली। पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने।
4: और क्या,
1: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
3: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
1: अच्छा अच्छा, चल ठीक है, ले ही आएंगे। अब तो खुश।
0: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ, अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो।
1: जी पिताजी।
0: कल सूर्योदय से पहले ही चल देना। आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों, चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है। अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गांव पहुंच जाना।
1: जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पैने तीर भी रख लिए हैं। भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे।
5: और पिताजी, एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है। वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे।
1: भैया सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल, काशी और विदेह से भी रथ आ रहे हैं।
5: हाँ।
1: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
0: हाँ ये तो है।
6: हाँ, हाँ, हाँ, बड़ा आनंद आएगा।
7: और शुरू हो गई रथों की दौड़।

0: इस बार तो हमारा रथ ही जीतेगा।
1: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है,
0: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है?
1: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
0: चलो देखते क्या होता है।
2: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
3: अरे वो देखो
0: क्या
3: रथ की दौड़ शुरू हो गई। वो देखो तो रेस शुरू हो गई।
0: क्या बांके और सजीले सवार है। वाह वाह
3: वाह वाह वाह वाह, देखो देखो वो देखो बीच वाला रथ
2: इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है।

ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी।

0: गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए। अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा। धन्यवाद।
1: मित्र, कुलपति का आदेश सुना तुमने?
2: कैसा आदेश मित्र? मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। मैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था कि आज एक और समस्या आ गई। गुरुजी कह रहे हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है।
1: भोले ब्रह्मचारी, अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
2: अच्छा,
1: वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे।
3: अरे वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है।
4: अरे हाँ, चलो पास से देखते हैं।
3: हाँ, चलो चलो।
4: अरे ये देखो कितना अच्छा घोड़ा।
1: वाह, इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है।
4: इसे पकड़ लेते हैं। हाँ, इसे पकड़ लेते हैं। चलो
1: चलो।
4: अरे वाह, अरे अरे, चलो इसे पकड़ लेते हैं।
5: ये पकड़ा।
2: अरे ये कोलाहल कैसा है?
6: छोड़ दो, छोड़ दो। ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो, छोड़ दो, शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
2: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे अरे, इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
3: अरे चलो चलो, भाग चले, आचार्य को बता दें, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध ही ना कर बैठे।
2: अरे रुको तो सही। अरे देखो देखो,
3: क्या
2: आचार्य तो वही पहुंच गए हैं। और हाँ, वो देखो वो देखो, आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
3: हाँ, अच्छा हुआ, संकट टल गया। अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
2: हाँ,
3: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
2: हाँ,
3: उनका प्रभाव, कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।
7: और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई।

कबीले के सरदार से वो चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर उनके बेटे सम्राट बने और फिर उनके बेटे। इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी

0: चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल, और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, ये आकाशवाणी का चाईवासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 होने को है। आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जोहर, आज के कार्यक्रम में आप सब

तो इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका जोहार रांची कार्यक्रम में। और अब वक्त है सुविचार का। तो कहते हैं ना कि समय ना कभी अच्छा होता है ना ही कभी बुरा, वो सबके लिए ना एक समान है। समय को अच्छा या बुरा व्यक्ति के स्वयं के कर्म बनाते हैं। तो बस अच्छे कर्म करते रहिए, समय खुद ब खुद अच्छा होता जाएगा। कर्म अच्छे होंगे तो दुआएं भी तो अच्छी ही मिलेंगी ना।

और अब कुछ बातें मौसम की। तो रांची समेत राज्य में अगले 4 दिन मॉनसून कमजोर रह सकता है। पिछले दिन खाड़ी पर बना निम्न दबाव क्षेत्र कमजोर पड़ चुका है, लेकिन इस दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। इसलिए इस उम्मीद में घर से ना निकले कि

खतरे का सामना नहीं होगा। आप छतरी जरूर लेकर निकलिए। और कई जिलों में तो हल्की बारिश का भी अनुमान है, और पिछले 2 दिनों में हम यही देख रहे हैं। और राज्य में पिछले 24 घंटे में तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की वृद्धि हुई है। रांची का अधिकतम तापमान 29.1 और न्यूनतम 23.4 डिग्री दर्ज किया गया है। यानी कि राहत भी है और नहीं भी, आप समझ ही रहे हैं ना कि आप बारिश का ये सोचकर घर से ना निकले कि बारिश नहीं होगी। बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो आप छतरी जरूर लेकर निकले और इस बदलते मौसम में अपना ख्याल रखें। बाहर की चीजें जितना कम हो सके खाएं, पानी उबाल कर पिए, नाली में पानी ना जमा होने दें, घर की साफ सफाई रखें, जैसी अनेक छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर ख्याल रखेंगे तो हम इस मौसम में भी अपना और अपने घर को अच्छे से रख सकते हैं, खुश रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।

तो जो है रांची कार्यक्रम में अब कुछ बातें आज के दिन की। तो आज है 9 जुलाई, तो चलिए आज के दिन क्या-क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उनके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो आपको बताएं कि भारत के प्रमुख एक्सचेंज समूहों में से एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का गठन 9 जुलाई 1875 को हुआ था, और ठीक 2 साल बाद दुनिया में टेनिस का पहला महत्वपूर्ण टूर्नामेंट विंबलडन देखा गया, जिसकी शुरुआत आज ही के दिन 1877 में हुई थी। 1951 में देश में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, और 1969 में आज ही के दिन वन्य जीव बोर्ड ने शेर को देश का राष्ट्रीय पशु घोषित किया था। आज ही के दिन 1807 को फ्रांस रूस पर्सिया द्वारा टिलसिट की दूसरी संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, और आज ही के दिन 1969 को वायजर 2 ने बृहस्पति के सबसे करीब से उड़ान भरी, और वायजर 2 ने पहले से अज्ञात चंद्रमा की भी खोज की थी, जिसे बाद में एंड्रास्ट्रिया नाम दिया गया था, जो बृहस्पति के छल्लों को के ठीक बाहर परिक्रमा कर रहा था। 2007 में भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हिमांशु जैन को ग्लास साइंस के क्षेत्र में ध्यात्वत कार्य हेतु ऑटो स्कॉट रिसर्च की पुरस्कार प्रदान किया गया था। और भी बातें होंगी पर इस खूबसूरत से गाने के बाद।

बातें हो रही आज के दिन की, तो अब उनकी बातें जिनका है आज जन्मदिन। तो आपको बताएं कि गुरुदत्त, जो कि भारतीय सिनेमा के सबसे महान फिल्मकारों में से एक थे, उनका जन्म आज ही के दिन हुआ, 1925 में। भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग में गुरुदत्त ने एक अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और लेखक के रूप में अमिट छाप छोड़ी थी। उन्होंने कुल 8 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें प्यासा, कागज के फूल, साहेब बीबी और गुलाम, चौधरी का चांद जैसी कालजयी रचनाएं शामिल है। प्यासा को टाइम पत्रिका की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में जगह मिली थी। तो चलिए ना, इसी फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं।

बातें हो रही है जन्मदिन की, तो आपको बताएं कि फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक के बालाचंद्र का जन्म भी आज ही के दिन 1930 में हुआ था। संजीव कुमार, जो कि हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता थे, उनका जन्म भी आज ही के दिन 1938 को हुआ था। ये एक महान कलाकार थे और इनका नाम फिल्म जगत की आकाश गंगा में एक ऐसे ध्रुव तारे की तरह याद किया जाता है, जिनके बेमिसाल अभिनय से सुसज्जित फिल्मों की रोशनी में बॉलीवुड हमेशा जगमगाता रहेगा। उन्होंने नया दिन नई रात फिल्म में 9 रोल किए थे। इसके अलावा कोशिश, खिलौना, शोले, शतरंज के खिलाड़ी, ना जाने कैसी कई ऐसी हिट फिल्में दी हैं हमें। उन्हें श्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अलावा फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए भी पुरस्कार मिला था। तो चलिए इनकी हिट फिल्म का एक गाना सुनते हैं।

जोहार रांची कार्यक्रम में आप हैं विनीता के साथ। तो चलिए अब कुछ बातें पर्यटन की करते हैं। घूमने के लिए ज्यादातर लोग पहाड़ों का रुख करते हैं या पहाड़ों पर जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको पहाड़ों के साथ शांत झीलों का सुकून भी पसंद है तो ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं जो आपकी छुट्टियों को यादगार बना सकती है। जी हाँ, आज कुछ ऐसे ही खूबसूरत हिल स्टेशनों के बारे में हम आपको बताएंगे जहाँ की झीलें ही सबसे बड़ा आकर्षण है। वहाँ की शांत झीलें, ठंडी हवाएं और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य आपका मन मोह लेगी। तो इससे पहले कि हम उन जगहों के बारे में आपको बताएं, चलिए एक खूबसूरत सा गीत और सुनते हैं।

तो चलिए अब आपको बताते हैं उन खूबसूरत जगहों के बारे में। तो सबसे पहले जो नाम है वो है उत्तराखंड का नैनीताल। यहाँ की पहचान यहाँ की स्थित नैनी झील से है। नाशपाती के आकार की ये खूबसूरत झील चारों ओर से पहाड़ों से घिरी हुई है। यहाँ बोटिंग करने और मॉल रोड पर घूमने और शाम के समय झील में चमकती रोशनी का नजारा देखने का अलग ही मजा है। यहाँ घूमने के लिए मार्च से जून और सितंबर से नवंबर का समय बेस्ट माना जाता है। और फिर आता है राजस्थान का माउंट आबू। ये हिल स्टेशन अपनी खूबसूरत नक्की झील के लिए जाना जाता है। पहाड़ियों और अनोखी चट्टानों से घिरी ये झील पर्यटकों को काफी पसंद आता है। यहाँ आप बोटिंग के साथ साथ झील के किनारे घूमने का भी आनंद ले सकते हैं। और अब बातें करेंगे तमिलनाडु के कोडाईकनाल की। पलानी पहाड़ियों में स्थित कोडाईकनाल झील अपनी खास स्टार शेप के लिए जानी जाती है। सुबह के समय झील के ऊपर छाई धुंध इस जगह को बहुत ही खूबसूरत बना देता है।

ये हंसी वादिया जी, हाँ बातें हो रही हैं खूबसूरत सुकून देने वाली जगहों की, तो अब बारी है मेघालय के शिलोंग की। यहाँ की वॉट्स लेक अपनी शांत सुंदरता और हरे भरे बगीचों के लिए मशहूर है। झील के ऊपर बना छोटा पुल और आसपास का प्राकृतिक वातावरण इस जगह को बेहद खूबसूरत बनाता है। तो अगर आप खूब सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो ये जगह बेहतरीन है। और अब बताते हैं आपको तमिलनाडु के ऊटी हिल स्टेशन की। ऊटी झील नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे फेमस जगहों में से एक है। झील के आसपास फैले यूकेलिप्टस के पेड़ और ठंडी हवाएं यहाँ के माहौल को खास बना देती है। तो अगर आप ऐसी जगह की तलाश में हैं जहाँ पहाड़ों की खूबसूरती के साथ साथ झीलों का सुकून भी मिले, तो ये हिल स्टेशन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो बस लिस्ट काफी लंबी मैंने दे दी है, तो छुट्टियों का आनंद लीजिए, प्रकृति की गोद में सुकून के पल बिताइए।

ढेरों बातें कर ली हमने, अब कुछ एक अच्छी सी खबर भी आपको देते हैं। तो आज की दुनिया में जहां परमाणु युद्ध का साया जलवायु परिवर्तन पर लगातार खतरा बने हुए हैं, ऐसे में फ्रांसीसी कंपनी ने कमाल की तकनीक विकसित की है। स्टार्टअप कंपनी मोमेंटम टेक्नोलॉजी ने लाइफ पॉड नामक सर्वाइवल पॉड डिजाइन किए हैं और कंपनी का दावा है कि प्राकृतिक आपदाओं या युद्ध के समय जब बिजली और घर सरकारी इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से ठप हो जाएंगी, तब भी ये पॉड इंसानी जिंदगी को सुरक्षित रखेंगे। इन बंकरों की सबसे बड़ी खासियत ये है इनका पोर्टेबल होना। इन्हें जरूरत के हिसाब से आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इन्हें आम सामान की तरह जहाजों में भी भेजा जा सकता है, यानी कि सुनामी धमाके से लोगों को बचाएगा ये सर्वाइवल पॉड। तो अच्छी न्यूज है ना ये।

0: तो ढेरों बातों के साथ ही वक्त हो गया है इस कार्यक्रम से विदा लेने का। तो चलते चलते बस इतना ही कहूंगी कि जिंदगी चाहे एक दिन की हो या चार दिन की, उसे ऐसे जिए जैसे जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, जिंदगी को तुम मिले हो। तो बस इन बातों के साथ विनीता को दे विदा। नमस्कार, जोहार।
1: देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम जोहार रांची। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स पर और 100.5 मेगा हर्ट्स पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: Medicina!
1: आप सुन रहे कार्यक्रम आपकी पसंद आकाशवाणी के रांची केंद्र से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म के गीत के साथ। और इस गीत को सुनने की फरमाइश आई है छत्तीसगढ़ भाटापारा ततरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा की।

और अगली फरमाइश आई है मेहर नगर उमर खेर महाराष्ट्र से अभिजीत गौहानकर राही श्रीमती सरिता गौहानकर प्रिंस एकांश गौहानकर की और बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गौहानकर प्रणीता गौहानकर अर्जुन गौहानकर टुकटुक की इन्होंने सुनना चाहा है भूत बंगला फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में। संगीत प्रीतम का है और इस गीत को लिखा है कुमार ने।

और आइए आप सुनते हैं धुरंधर फिल्म का गीत अरिजीत सिंह अरमान खान की आवाज में। इस गीत को लिखा है शाद कामिल ने और इसे सुनना चाहा है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेक विरक और मीका विरक ने।

और आइए अब सुनते हैं सैलाब फिल्म का गीत, अनुपमा देश पांडे की आवाज में। और इस गीत को सुनना चाहे कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय और हैप्पी रॉय ने। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय ने।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। दिन के 12 बजने वाले हैं और ये वक्त है बहनों के पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का, जिसे लेकर आज आपके साथ हैं खुशबू और वंदना रॉय।

0: नमस्कार सखियों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी खुशबू और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और आज साथ में है आपकी
1: रेडियो सखी वंदना। सभी बहनों को मेरा नमस्कार। और सखियों, देखो ना, मौसम ने करवट ली है और बारिश के मौसम की शुरुआत भी हो चुकी है। जहां ये मौसम काफ़ी सुकून भरा होता है, चारों तरफ हरियाली, मिट्टी की सौंधी सौंधी सी खुशबू, मन बिल्कुल खुश हो जाता है।
0: लेकिन वंदना, कहते हैं ना, मौसम काफ़ी खुशनुमा तो होता ही है, लेकिन ये अपने साथ साथ कई बीमारियों को भी लेकर आता है। तो ऐसे में हमें कई तरह की सावधानियां बरतनी होती हैं, तभी हम इस मौसम का ना अच्छे से आनंद उठा सकते हैं।
1: एकदम सही कहा खुशबू। इस बदलते मौसम के साथ अपने खान पान और जीवन शैली में हमें बदलाव करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मौसमी बीमारियों से बचना और स्वस्थ रहना ही हमारी सफलता या स्वस्थ रहने की कुंजी है। अपनी डाइट में मौसमी फल सब्जियों, पर्याप्त पानी और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले आहार को हमें जरूर शामिल करना चाहिए।
0: तो चलिए सखियों, आज इसी विषय पर हम लोग जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे भी कि बदलते मौसम में कैसे अपना खान पान और जीवन शैली को हमें बदलना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सके। सबसे पहले हम जानेंगे कि अपने खान पान में हमें क्या क्या बदलाव करने चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, हर मौसम जहाँ कुछ अच्छाई लेके आता है, वहीं वहीं कुछ कुछ है ना सावधानियां भी लेकर आती है, ताकि हम उस मौसम का आनंद अच्छे से उठा सके।
1: एकदम सही कहा। हमें अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए मौसमी फलों और विटामिन सी से भरपूर जो चीज़ें होती है उन्हें जरूर खाना चाहिए। ठंडे या बासी खाना खाने से बचना चाहिए और पाचन को ठीक रखने के लिए हमेशा ताज़ा, हल्का और सुपाच्य भोजन हमें खाना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा वरना तुमने। साथ ही शरीर में नमी बनाए रखने के लिए और टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए, यानी जो शरीर में विषैले पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में हमें पानी भी पीना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये होता है ना वरना कि बारिश के मौसम में हम पानी कम पीते हैं या हमें प्यास कम लगती है, लेकिन फिर भी हमें निरंतर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए। इसके अलावा नींबू पानी, नारियल पानी या मौसमी फलों का जूस भी हमें पीना चाहिए। और साथ ही वरना हम ये भी बता दें अपनी सखियों को कि सखियों, आप इधर उधर कहीं भी किसी भी जगह की पानी नहीं पिए, आप अपने घर का उबला हुआ साफ पानी ही पिए।
1: एकदम सही कहा खुशबू। और साथ ही हम अदरक, हल्दी, दालचीनी और लौंग का काढ़ा या चाय भी पी सकते हैं। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं वो बदलते हुए मौसम के कारण जो होने वाले संक्रमण है या हमारे गले में जो खराश होती है उससे हमें राहत दिलाते हैं। जीरा युक्त सादा दही या छाछ का सेवन भी

0: अरे
1: बिल्कुल।
0: आंतों को स्वस्थ रखता है और पाचन क्रिया को बहुत बेहतर बनाता है।
1: और वरना तुमने जैसे कहा कि इस मौसम में चाय का आनंद उठाना चाहिए, तो चाय और बारिश का तो पुराना रिश्ता होता
0: एकदम एकदम
1: है ना।
0: बहुत
1: और चाय और बारिश का साथ हो तो चाय पीने का मजा भी दुगना हो
0: कुछ और
1: जाता
0: हो
1: है।
0: जाता है।
1: लेकिन साथ ही साथ मौसम बदल रहा है, तो ऐसे में सब्जियां भी बाजार में बदल रही हैं,
0: बदल
1: और
0: रही है।
1: इस हिसाब से हमें सब्जियों में भी बदलाव करना चाहिए। बदलते मौसम में ब्रोकली, पालक और मेथी जैसी हरी सब्जियां शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी को पूरी करती है, तो इसलिए इन्हें जरूर से हमें लेना चाहिए। साथ ही हमें बाहर के तले भुने मसालेदार और प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए, और बहुत ही ठंडे पेय पदार्थ या फ्रिज के सीधे पानी को पीने की जगह मटका या सामान्य तापमान का पानी पीना चाहिए, ताकि हमारे शरीर का तापमान जो है वो नियंत्रित रहे।
0: एकदम सही कहा खुशबू। देखो ना, इस बदलते मौसम में हमें अपने खान पान के साथ अपनी जो दिनचर्या है या हमारी जो जीवन शैली, उसे भी बदलने की आवश्यकता है। ये जो शारीरिक गतिविधियां होती हैं, उसमें अगर हम उचित संतुलन बनाते हैं तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर होता है।
1: बिल्कुल
0: यह बदलाव हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे मजबूत बनाती है और हमें बीमारियों से वह बचाती है।
1: तो सखियों, मौसम बदल रहा है और ऐसे में हमें हमारे है ना बहुत नियमित व्यायाम भी करना होता है, ताकि हम स्वस्थ रहें, क्योंकि यह बदलते तापमान और नमी के कारण शरीर को होने वाले नुकसान से हमें बचाता है। और नियमित व्यायाम हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जैसा कि वंदना ने भी बताया। और कई बार हम इस मौसम में सर्दी, खांसी या वायरल इन्फेक्शन या संक्रमण से पीड़ित हो जाते हैं, और फिर हमें आलस, थकान, मूड स्विंग्स भी होते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमें व्यायाम को अपने रोजमर्रा की दिनचर्या में जरूर से शामिल करना चाहिए।
0: एकदम सही है। व्यायाम करने से हमारे शरीर में जो एंडोर्फिन का स्तर है वो बढ़ता है, जिससे कि तनाव कम होता है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह भी बढ़ जाता है। और देखो ना, इस मौसम में बच्चों और बुजुर्गों की को ज़्यादा सावधानी के साथ रखने की आवश्यकता है। उन्हें सीधे एसी या कूलर की ठंडी हवा में हमें नहीं सुलाना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि
1: सही।
0: तापमान जब अचानक से बहुत कम हो जाता है तो उसमें तबीयत खराब होने की आशंका रहती है। बच्चों को हल्के सूती और ढीले कपड़े हमें पहनाने चाहिए ताकि उसमें हवा आसानी से पास हो सके, और सुबह शाम जो ठंड अगर लगती हो तो चादर या जैकेट का उपयोग हमें जरूर करना
1: बिल्कुल।
0: चाहिए।
1: और इस मौसम में बच्चे ज्यादातर बीमार पड़ते हैं, इसलिए उन्हें काफी सावधानी से रखनी चाहिए। और बच्चों को बाहर खेलने के बाद या खाना खाने से पहले उन्हें ये आदत डलवानी चाहिए कि वो साबुन से हाथ धोएं, क्योंकि साबुन से हाथ धोना एक अच्छी आदत है। और मौसम बदलने पर अक्सर डेंगू, मलेरिया का प्रकोप भी बढ़ जाता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो ऐसे में हमें अपने घरों के आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, और सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करते रहना चाहिए।
0: और हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें 7 से 8 घंटे की गहरी नींद होनी बहुत जरूरी है। सोने से पहले हमें मोबाइल या टीवी को बंद कर देना चाहिए ताकि दिमाग हमारा शांत हो जाए और हमें अच्छी नींद भी आए। और रोज 10 से 15 मिनट अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन उससे शांत होता है और ध्यान केंद्रित करने में बहुत मदद भी मिलती है, और हम अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों और कृतज्ञता के साथ करते
1: करते हैं।
0: हैं।
1: बिल्कुल, मौसम बदल चुका है सखियों, और ऐसे में बारिश का मौसम तो है, लेकिन एक प्यारा सा गीत हो जाए तो
0: जरूर।
1: और

0: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हाँ तो खुशबू,
2: हाँ हाँ,
1: अभी हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरत गीत सुना, तो चलो अब हम जानकारी करेंगे कि सामान्य बीमारियां और उनसे बचाव के बारे में, जिसके बारे में हमें बताएंगे सीबी सहाय और उनसे बातचीत की है हमारी खुशबू बहन ने। तो चलिए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
3: स्वस्थ शरीर ही सुखी और सफल जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली, असंतुलित खानपान, प्रदूषण और बदलते मौसम के कारण लोग अनेक

0: सामान्य बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इनमें से अधिकांश बीमारियों से थोड़ी सी सावधानी, स्वच्छता और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर बचा जा सकता है। इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर हमें और अधिक जानकारी दे रहे हैं आज के हमारे खास मेहमान। आप हैं डॉक्टर सीबी सहाय जी, जो कि जाने माने चिकित्सक हैं। सर, आपका हमारे गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी।
0: सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सामान्य बीमारियां कौन कौन सी हैं और इसके होने के मुख्य कारण क्या है।
1: सामान्य बीमारियां जो होती हैं उसमें बुखार, सिर दर्द, पेट खराब होना, कमर का दर्द, कमजोरी, खून की कमी, ये जो है सामान्य बीमारियां हैं जो कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों में सामान्य रूप से हो सकता है। बच्चों में कुछ खास बीमारियां होती हैं जो कि आजकल के जो बरसात का मौसम है उसमें पाया जाता है, उसमें भी सामान्य ज्वर, पेट खराब होना, उल्टी, इसमें प्रमुख सामान्य बीमारियां होती हैं। इसके मुख्य कारण जो सामान्य बीमारियां हैं, जैसे बरसात के समय में इन्फेक्शन का रेट, संक्रमण का रेट जो है काफी बढ़ जाता है। इसके कारण से जो है जैसे पेट खराब होना, उल्टी होना, म्यादी बुखार या टाइफाइड होना, यह जो है काफी कॉमन है। और इसके लिए जो है हमें कुछ निश्चित उपाय है जो करने चाहिए। तो ये सामान्य बीमारियां में यही सब बीमारियां कॉमन है।
0: जी, आपने बहुत ही उपयोगी और सरल जानकारी दी सर हमें। अब हमारे सखियों को ये बताएं कि बरसात और बदलते मौसम में कौन सी बीमारियां सबसे अधिक फैलती है और उनसे कैसे बचा जा सकता है।
1: श्रोताओं को जैसे कि अभी मैंने बताया कि बरसात में दूषित पानी, मच्छरों का प्रकोप और गंदगी फैलने के काफी चांसेस रहते हैं। उसमें जो ज्वर है, म्यादी बुखार है, जैसे कि मच्छरों से फैलने वाला मलेरिया है, डेंगू है, और प्रदूषित पानी पीने से उल्टी, पेट खराब होना, ये जो है बहुत ही सामान्य बीमारियां हैं। और इनसे बचने के लिए जो इसके कारण है उसे दूर करना, उससे बचना बहुत ही आवश्यक है। जैसे बरसात का मौसम अभी है तो कभी भी इधर उधर का पानी नहीं पिए, हमेशा स्वच्छ पानी पीने की कोशिश करें। अगर प्रदूषित पानी नल के द्वारा आ रहा है तो उसे उबाल करके, या फिर अगर चापाकल या कुएं से पानी लेकर के हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसे उबाल करके और तभी उसका सेवन करें। दूसरा जो है, मच्छरों का प्रकोप बरसात के समय में काफी ज्यादा हो जाता है। इससे बचने के लिए बरसात के समय में मच्छरदानी लगाकर सोना बहुत ही आवश्यक है। तो इससे जो मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं, जैसे मलेरिया है, फलेरिया है, डेंगू है, इन सबसे जो है बचा जा सकता है। और जो बरसात के समय में पानी में भीगने के कारण से जो खांसी, सर्दी, ये सब जो होता है उससे बचने के लिए हमें जो है छाते का प्रयोग करना चाहिए, पानी से भीगने से बचना चाहिए। और भीगे हुए कपड़े हो तो घर में आकर तुरंत उसे बदलकर सूखे हुए कपड़े को पहनना चाहिए। तो यह सामान्य बचाव के जो तरीके हैं, हमारे श्रोतागण को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो आम बीमारियां बरसात में होती हैं उससे आसानी से हम लोग बचाव कर सकते हैं।
0: जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी। सचमुच छोटी छोटी सावधानियां हमें बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। बीमारियां जो है वो किसी बुलावे का इंतजार नहीं करती, तो ऐसे में हम रोजमर्रा की कौन सी अच्छी आदतें अपनाकर हम सामान्य बीमारियों से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: परिवार को सुरक्षित रखने के लिए बच्चों को जो है हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य के बारे में जो जानकारी है उसे देना जरूरी है। अच्छी आदतों को उसे बताना जरूरी है कि जब भी तुम बाहर से आओ, स्कूल से आओ, या कोई बच्चा अगर खेत में काम करने जाता है, चाहे घूमने जाता है, तो आने

0: के बाद हाथ पांव को अच्छे ढंग से धोना है। खाना खाने से पहले जो है सो हाथ को अच्छे से धो करके तभी खाना है। खाना जो है गर्म अवस्था में जब हो तभी उसका सेवन करना चाहिए। जो काफी देर का बना हुआ खाना है उससे बचाव करना चाहिए। और अपने आप में खुद जो है आगे बढ़ के अच्छी आदतों को अपनाने से जो हमारे परिवार के अन्य सदस्य हैं, बच्चे हैं, वो भी अच्छी बातों को सीखेंगे। जैसे सोने से पहले मच्छरदानी लगाना एक आदत ही बना लेना चाहिए, तो उसके देखा देखी बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य भी मच्छरदानी का इस्तेमाल करेंगे हाथ पांव धो करके, और तभी जो है खाने बैठेंगे। खाने का जो बर्तन है उसे भी अच्छे ढंग से धो करके और तभी उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और खाना खाने के बाद बर्तनों को इसी तरह खुले में नहीं डालना चाहिए, वो जो है मक्खियों को आमंत्रित करते हैं और मक्खियों के द्वारा भी जो है बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जैसे डायरिया है, डिसेंट्री है, पेट खराब होने की जो बातें होती हैं। तो अगर बर्तन ठीक से नहीं धोया हुआ है, खुले में रखा हुआ है, तो उस पर मक्खियां बैठती है और मक्खियों की आदत होती है जहां वो बैठती हैं तुरंत वो उल्टी करती, फिर वहां से जो है से दूसरे खाने के स्थान पर जाती हैं और वहां पर भी इस तरह से जो है मच्छरों द्वारा और मक्खियों द्वारा जो फैलाई हुई बीमारियां हैं उसे बचने के लिए जो है सफाई बहुत ही आवश्यक है। और परिवार के लोगों को, बच्चों को भी यह बताना जरूरी है कि बरसात में अगर स्वस्थ रहना है तो सफाई बहुत ही जरूरी है।
1: जी, वास्तव में स्वस्थ आदतें ही अच्छे स्वास्थ्य की निशानी होती है। हमारी सखियों को ये भी बताएं सर कि किसी बीमारी के शुरुआती लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं तो उस समय हमें क्या करना चाहिए और किस परिस्थिति में हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
0: शुरुआती लक्षण जो रहते हैं कई बार अज्ञानता बस उसे लोग दबा करके रखे रहते हैं और सोचते हैं कि अच्छे अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जैसे ज्वर के बारे में, बुखार के बारे में मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि कभी भी जब बुखार हो तो 100 से ऊपर उसे नहीं जाने दे। 100 डिग्री फारेनहाइट से अगर ऊपर जाते हैं बुखार तो तुरंत उसमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। बुखार के साथ अगर उल्टी हो तब तो तुरंत ही मिलना चाहिए। बुखार के साथ अगर ठंड लगे तो मलेरिया का लक्षण हो सकता है, डेंगू का भी लक्षण हो सकता है, फलेरिया का भी लक्षण हो सकता है। तो यह शुरुआती लक्षण जो है जैसे ज्वर है, बुखार है, तो इसके साथ अगर ठंड लग के बुखार हो, उल्टी हो, सिर में दर्द हो, तो हमें तुरंत जो है डॉक्टर से जाकर मिलना चाहिए। पेट खराब जो है बरसात में काफी ज्यादा होता है, डायरिया, डिसेंट्री, तो एक दो बार अगर पतला पैखाना होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसके साथ उल्टी होने लगे तो हमें तुरंत डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। पेट खराब के साथ अगर पेट में दर्द हो तो भी उसमें डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। पेट खराब के साथ अगर कमजोरी महसूस होने लगे, जीभ सूखा हुआ लगे, शरीर जो है सो पस्त लगे, तो उसमें भी हमें जो है सो तुरंत डॉक्टर से जाकर के मिलना चाहिए। तो ज्वर हो गए, पेट खराब हो गए, या दो जो कॉमन बीमारियां हैं जो कि बरसात में पाया जाता है उसके साथ अगर यह लक्षण हो तो उसमें हमें तुरंत डॉक्टर से जाकर के संपर्क करना चाहिए।
1: जी, कहने का अर्थ ये है सखियों कि सही समय पर सही इलाज से कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। सर, क्या संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं, और यदि करते हैं तो कैसे, ये हमारी सखियों को बताएं।
0: संतुलित आहार जो है बहुत ही आवश्यक है। भोजन में जैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि भात में पाया जाता है, प्रोटीन होता है जो कि मीट में, अंडा में, मुर्गा में और दाल में पाया जाता है, वसा फैट वह जो है सो हम जो तेल इस्तेमाल करते हैं चाहे घी इस्तेमाल करते हैं उसमें होता है। यह तीन प्रमुख चीज जो है भोजन में एक निश्चित अनुपात

0: में होना जरूरी है, जैसे कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए। इसके अलावा संतुलित आहार में विटामिन की भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, तो इसके लिए जो है हमें ऐसे फलों का सेवन करना चाहिए जिसमें कि विटामिन प्रचुर मात्रा में हो। हमारे जो श्रोता महिलाएं हैं, महिलाओं को आयरन की कमी होती है, तो इसमें जो है आयरन युक्त भोजन जो है जरूरी रहता है। तो संतुलित आहार में इस सारे जो आवश्यक अंग होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और आयरन, यह जो है सो बहुत ही आवश्यक है हमें स्वस्थ रहने के लिए। दूसरा कि जैसा कि खुशू जी आपने पूछा कि नियमित व्यायाम, तो नियमित व्यायाम तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे सारे ज्वाइंट्स, शरीर के जितने भी जोड़ होते हैं, वो जो है सो एक्टिव रहते हैं, फ्री रहते हैं, जाम नहीं होते हैं, और जोर संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं वो कम से कम होती है। अत्यधिक मोटापा, उसे भी कम करने के लिए नियमित व्यायाम जरूरी है। नियमित व्यायाम से हमारे हृदय की जो धड़कन होती है और हृदय जो है स्वस्थ रहता है, वो भी आवश्यक है। श्वास की क्रियाएं जो प्राणायाम होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, वो भी एक नियमित व्यायाम के अंदर ही आता है। तीसरा जो आपने पूछा कि पर्याप्त नींद बहुत सारे मानसिक बीमारियों को जो है ठीक करता है। अगर हम अच्छे ढंग से सोते हैं, अच्छी अवस्था में सोते हैं, तो उसमें जो है बहुत सारे मानसिक तनाव, चिंता, फिकर, अवसाद, मन डिप्रेशन, इन चीजों को कम करता है। तो पर्याप्त नींद भी बहुत ही आवश्यक है मानसिक रोगों से स्पेशली बचने के लिए। नींद में एक चीज मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि सही पोस्चर में, सही जो शारीरिक अवस्था है उसमें सोना आवश्यक है। जैसे कि खाना खाने के बाद हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले से बता चुके हैं कि बाएं करवट लेटना चाहिए, तो खाना खाकर कभी भी जो है सो दाहिने करवट नहीं लेटना चाहिए, बाएं करवट लेटना चाहिए, क्योंकि अमाशय जो हमारे पेट के अंदर रहता है, भोजन जो जाता है, तो अमाशय का कर्वेचर जो रहता है बाएं साइड की तरफ रहता है, तो खाना खा करके बाएं करवट ही सोना चाहिए। नींद में बहुत ऊंचा तकिया नहीं लगाना चाहिए, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन में जो दर्द हो जाता है, तो ऊंचा तकिया नहीं लगाना चाहिए। दूसरा जो है सोने के स्थिति में बच्चे कई बार होते हैं कि जैसे पट हो करके सो जाते हैं, तो बच्चों को इसके बारे में बताना चाहिए कि बच्चे जो है चित या बाएं करवट सोया करो, पट होकर नहीं। उससे क्या होता है कि भोजन के पचने में जो है बाधा पहुंचती है और पेट में गैस की, कब्जियत की, ये सब की शिकायत होती है। तो पर्याप्त नींद भी आवश्यक है और सही अवस्था में, सही पोस्चर जिसे बोलते हैं, उस अवस्था में सोना जरूरी है, तभी हमें पर्याप्त नींद आएगी। और पर्याप्त नींद से बहुत सारे मानसिक बीमारी हैं जो कि हमारा कंट्रोल हो जाता है, तो यह बहुत ही आवश्यक है। और जब यह संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अगर हम देते हैं, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से जो सामान्य संक्रमण होता है या सामान्य बीमारियां जो होने का चांसेस रहता है, वो बहुत ही कम हो जाता है और हमारे शरीर जो है रोगों से लड़ने के लिए सक्षम होता है। ये हमारे श्रोताओं को ध्यान देना।
1: जी, बहुत ही अच्छी और उपयोगी जानकारी दी आपने। स्वस्थ जीवन शैली ही अच्छे स्वास्थ्य का सबसे मजबूत आधार है और उम्मीद करती हूँ कि सखियाँ इससे लाभ जरूर उठाएंगी। चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि समाज में बीमारियों को लेकर कौन सी आम भ्रांतियाँ हैं, या मिथक जिसे कहते हैं, वो कौन कौन सी हैं और उसके बारे में सही जानकारी क्या है।
0: समाज में जो भी मिथक या भ्रांतियाँ हैं, वो जो है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं रहने के कारण से है। तो खुशू जी, आपने यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया है कि इसके बहाने जो है हमारे जितने भी श्रोतागण हैं,

0: अपनी भ्रांतियों और मिथक से दूर रहेंगे और सही समय पर बीमारियों का डायग्नोसिस पता लग जाए कि कौन सी बीमारी है और उसका सही समय पर इलाज भी बहुत ही आवश्यक है। भ्रांतियां तो इससे बहुत सारी है, जैसे पेट खराब है तो लोग सोचते हैं कि पेट खराब है तो चलो पेट का जितना गर्मी है बाहर निकल जाएगा तो अच्छा है, और 5-6 बार से ऊपर भी अगर पतला पैखाना हो गया तो लोग उसके लिए दवा नहीं खाते हैं, औषधि नहीं ले। ये एक जो है सो सामान्य भ्रांति है। बुखार है, अब बुखार में लोग सोचते हैं कि अरे इसी तरह से हो गया होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे कि अपने वार्ता के दौरान मैंने शुरू में ही बताया है कि बुखार के साथ और क्या क्या चीज हो तो तुरंत चिकित्सक से मिलना चाहिए, उन बातों को ध्यान में रखना है और उन भ्रांतियों से दूर रहना है। तो ये सब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें भ्रांतियां तो हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लोग जो है श्रोताओं को शिक्षित कर रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं, तो यह एक बहुत ही सार्थक पहल है और इसके द्वारा अपने आप जो भ्रांतियां हैं, मिथक है, वो दूर होंगे और जो है सही समय पर सही इलाज हमारे श्रोताओं को मिलेगा। ये मेरी शुभकामनाएं हैं और मेरा संदेश यही है।
1: आपने बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की है।
2: तो अब बहनों हमारे जाने का समय हो गया है, तो फिर आपसे मुलाकात होगी नए कार्यक्रम के साथ। तब तक खातिर दे हमें विदा। नमस्कार।
3: नमस्कार।
4: गृह लक्ष्मी
3: अभी आप सुन रहे थे बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।
5: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे समर्पण का।

आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं जीनियस फिल्म का गीत आतिफ असलम की आवाज में। संगीत हिमेश रेशमिया का है और इस गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर ने।

और आइए अब सुनते हैं बदलापुर फिल्म का गीत। आतिफ असलम की आवाज में, संगीत सचिन जिगर का है और इस गीत को लिखा है प्रिया सरैया ने।

सूर्यवंशी, आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज में। इस गीत को लिखा है रश्मि विराग ने और संगीत अजीम दयानी का है।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। एक बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार। समाचार आप क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टीकल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज

0: एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
1: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल शोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा तक के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगे, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी दिन में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भाग, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में आधे प्रतिशत से अधिक की बढ़त देखी गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैंसी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में झारखंड विजन 2050 परामर्श का आज आखिरी दिन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने समिट का किया स्वागत, लेकिन राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। राज्य में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। सभी जिलों में उपायुक्तों की अध्यक्षता में बनेगी रक्तदान निगरानी समिति। धनबाद में खनन ब्लास्टिंग का असर। 44 करोड़ की लागत से बनी झरिया सिंदरी बलियापुर सड़क कई जगह धसी। उपायुक्त ने BCCL से मांगी मरम्मत राशि। गिरडी समेत राज्य के कई जिलों में अल नीनो के प्रभाव से सूखे जैसे हालात। कृषि विभाग ने किसानों को कम पानी वाले मोटे अनाज और दलहन की खेती करने का दिया सुझाव। और साहिबगंज में खेलो इंडिया साइकिलिंग सिटी लीग का सफल आयोजन। 3 आयु वर्गों की 203 बालिकाओं ने दिखाया दम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे 2 दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्श का आज दूसरा और आखिरी दिन है। विजन 2050 के तहत आयोजित इस परामर्श में झारखंड को तकनीकी रूप से अग्रणी बनाने के लिए वैश्विक उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड सरकार के 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट का स्वागत करते हुए कहा कि निवेश से रोजगार के अवसर

0: सप्ताह होंगे। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य की कानून व्यवस्था सुधारने पर जोर देने की अपील की। संजय सेठ ने कहा कि अपराध नियंत्रण और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए झारखंड के बड़े शहरों में लंबे समय से लंबित पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को तुरंत लागू किया जाना चाहिए।
1: माननीय मुख्यमंत्री, मेरी शुभकामनाएं हैं, आप अपने मिशन में सफल हो, पूंजी निवेश हो, किंतु उसके पहले बिजली की आपूर्ति 24 घंटे हो, लॉ ऑर्डर दुरुस्त हो। हालात हमारा बियॉन्ड कंट्रोल है और इसीलिए कई सालों से हम यहाँ आवाज उठाते हैं कि पुलिस कमिश्नर बनना चाहिए, और पुलिस कमिश्नर आज तक बना नहीं।
0: वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाने के बाद झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि हर चीज की एक हद होती है।
2: मंत्री प्रिविलेज क्लास होता है, उनको बोलने दे, सबका लिमिट है ना, सब चीज का एक स्काई इज द लिमिट हम लोग कहते हैं, तो यदि स्काई ही लिमिट है तो बाकी का तो लिमिट है ही।
0: इस पर कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने मंत्री के रुख का बचाव करते हुए कहा है, किसी भी डीजीपी की यह प्रशासनिक जिम्मेदारी बनती है कि वे मंत्री द्वारा लिखे गए पत्र का संज्ञान ले और उचित जवाब दे ताकि शासन में पारदर्शिता बनी रहे।
3: बार बार पत्र लिखने पर अगर वो संज्ञान न ले तो स्वाभाविक तौर पे प्रश्न खड़ा होता है, और यही प्रश्न माननीय मंत्री ने खड़ा किया है, और हमें यह लगता है कि ऐसे प्रश्नों का जवाब पुलिस महानिदेशक को देना चाहिए।
0: राज्य सरकार ने स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में रक्तदान जागरूकता एवं निगरानी समिति के गठन का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव अविनाश कुमार द्वारा जारी ये निर्देश झारखंड हाईकोर्ट और WHO के मानकों के अनुरूप है। इसका उद्देश्य थैलीसीमिया और सिकल सेल के मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। धनबाद में 44 करोड़ की लागत से बनी झरिया सिंदरी बलियापुर सड़क निर्माण एक साल के भीतर ही BCCL की हेवी ब्लास्टिंग के कारण कई जगह धस गई है। स्थानीय विधायक रागिनी सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। वहीं उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि पथ निर्माण विभाग ने मरम्मत का प्राकलन तैयार कर BCCL को भेज दिया है, राशि मिलते ही काम शुरू होगा।
4: तो रोड का जो डिपॉजिट पैसा है वो BCCL को देना है। हम लोगों ने BCCL को 3 महीने पहले ही पत्र लिखा, जैसे ही पैसा BCCL डिपॉजिट स्लिप्स में देगा हम लोग उसमें काम लगाएंगे। मुद्दा झरिया CEO के द्वारा उठाया गया, थाना प्रभारी द्वारा उठाया गया, हम लोग उसको संज्ञान में लिए हैं और आज निर्देश दिए हैं कि तत्काल जितनी जल्द से जल्द हो सके BCCL हम लोगों को उसमें फंड दे ताकि RCD उसका काम कर सके।
0: पूर्वी सिंहभूम जिले में ब्रेन मलेरिया से 2 और मरीजों की मौत के साथ इस वर्ष मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई 12,518 लोगों की जांच में 128 नए मरीज मिले हैं, जिनमें 98 ब्रेन मलेरिया से पीड़ित हैं। संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावित गांवों में सघन जांच, दवा वितरण, फॉगिंग और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर संगठन के कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर दोनों नेताओं ने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ यह संगठन दशकों से छात्रों को राष्ट्र सेवा, नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए प्रेरित कर रहा है। पलामू के चियांकी में नेशनल हाईवे 39 निर्माण के दौरान बिना मुआवजा मकान तोड़े जाने का विरोध कर रहे ग्रामीणों और पुलिस में आज सुबह झड़प हो गई। ग्रामीणों की पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई ग्रामीणों और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए

0: सदर एसडीएम संजय पांडे ने क्षेत्र में 2 दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। भाजपा ने राज्य में मॉनसून के आगमन के बाद किसानों को खाद और बीज न मिलने का मुद्दा उठाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के प्रदेश महासचिव मनोज सिंह ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य का अन्नदाता आज संकट में है।
1: किसानों को समुचित खाद बीज नहीं मुहैया करा सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार किसानों के प्रति अपनी असंवेदनशीलता प्रदर्शित करती है। किसानों के प्रति उनके मन में कोई सहानुभूति नहीं है।
0: राज्य के कई हिस्सों में इस वर्ष कम बारिश के कारण खरीफ फसलों पर अल नीनो का प्रभाव दिख रहा है, जिससे धान की रोपणी प्रभावित हुई है। कृषि विभाग के अनुसार गिरिडीह में मात्र 38% वर्षा होने से धान के बिचड़े तैयार करने में रुकावट आ रही है। जिला कृषि पदाधिकारी आशुतोष कुमार ने किसानों को कम पानी वाली फसलों की वैकल्पिक खेती अपनाने का सुझाव दिया है।
2: गिरिडीह जिले में इस वर्ष 62% बारिश कम हुई है। वर्षापात के अभाव में धान के बिचड़े 5000 हेक्टेयर में ही हुआ है, जबकि 8000 हेक्टेयर में लग जाना चाहिए था। जिले में 88000 हेक्टेयर में धान रोपनी का लक्ष्य रखा गया है। किसान भाइयों से आग्रह होगा कि आने वाले दिनों में अगर बारिश नहीं होगी तो वैसी स्थिति में दलहन, तिलहन, मड़ुआ और दूसरे अनाज की खेती की जा सकती है।
0: आज सुबह के सत्र में घरेलू इक्विटी इंडेक्स लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 561 अंक चढ़कर 77065 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 179 अंक बढ़कर 24061 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपये प्रति किलो है। साहिबगंज में आज केंद्र सरकार के निर्देश पर आयोजित खेलो इंडिया साइकिलिंग सिटी लीग में 203 बालिकाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सिदो कान्हू स्टेडियम से समाहरणालय परिसर रोड तक हुई इस रेस का आयोजन 3 आयु वर्गों अंडर 14, अंडर 18 और सीनियर महिला ओपन वर्ग में किया गया। सभी विजेता और प्रतिभागी खिलाड़ियों को मेडल एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में झारखंड विजन 2050 परामर्श का आज आखिरी दिन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने समिट का किया स्वागत, लेकिन राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। राज्य में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। सभी जिलों में उपायुक्तों की अध्यक्षता में बनेगी रक्तदान निगरानी समिति। धनबाद में खनन ब्लास्टिंग का असर। 44 करोड़ की लागत से बनी झरिया सिंदरी बलियापुर सड़क कई जगह धसी। उपायुक्त ने BCCL से मांगी मरम्मत राशि। गिरिडीह समेत राज्य के कई जिलों में अलनीनो के प्रभाव से सूखे जैसे हालात। कृषि विभाग ने किसानों को कम पानी वाले मोटे अनाज और दलहन की खेती करने का दिया सुझाव। और साहिबगंज में खेलो इंडिया साइकिलिंग सिटी लीग का सफल आयोजन। 3 आयु वर्गों की 203 बालिकाओं ने दिखाया दम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, ये वक्त है उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी का। इसमें आज आप सुनेंगे ठुमरी, कलाकार हैं सिद्धेश्वरी देवी।

अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी, जिसमें आज आपने सुना मिस्र खमाज में ठुमरी, कलाकार थी सिद्धेश्वरी देवी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे कुछ पॉप सॉन्ग्स फाल्गुनी पाठक से।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आप सुन रहे सुगम संगीत, जिसमें आज आप सुन रहे हैं पॉप सॉन्ग्स फाल्गुनी पाठक से।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, जिसमें आज आपने सुना कुछ पॉप सॉन्ग्स फाल्गुनी पाठक से। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार के लिए। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना। और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने संयुक्त वक्तव्य दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
1: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि 10 लाख लोगों का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
2: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
1: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
2: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
0: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों

0: के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
2: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
3: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
2: एंड क्रिटिकल मिनरल्स।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया, जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
5: I urge our institutions to continue supporting our fishing community with knowledge, technology and finance. May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
4: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
0: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलोंग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि ये सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव

0: ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था और रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
1: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले NCR दिल्ली की बात करें, तो NCR दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे जय भारती कार्यक्रम।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय भारती आकाशवाणी के रांची केंद्र से। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कर्मा फिल्म के गीत के साथ।

फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं उदित नारायण की आवाज में। संगीत जतिन ललित का है और इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने।

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। राज्य सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के आखिरी दिन राज्य के डिजिटल परिवर्तन को गति देने तथा झारखंड को सार्वजनिक प्रशासन आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग तथा नागरिक सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही पारदर्शी, त्वरित जवाबदेह तथा डेटा

0: आधारित निर्णय प्रणाली विकसित करना है ताकि आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, प्रभावी और सुलभ सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से आज रिम्स 2 निर्माण से प्रभावित रैयत और ग्रामीणों ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री मरांडी को समस्याओं से अवगत कराया और सहयोग की अपील की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नगरी में रिम्स 2 के निर्माण को लेकर राज्य सरकार हर धर्मिता पर अड़ी है। श्री मरांडी ने कहा कि बेकार पड़ी बंजर भूमि पर रिम्स 2 का निर्माण होना चाहिए।
1: युद्ध पर सरकार अड़ी हुई है, जिस जनता को आज वो उजाड़ रही है वही लोग आने वाला सरकार को लोग उजाड़ देगी। भाई आप खेती की जमीन आदिवासियों की है और आप हॉस्पिटल के नाम से जबरदस्ती आप उसको छीन रहे हैं। लोग विरोध कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि भाई सभी पॉलिटिकल पार्टी को और राज्य की जनता को भी ऐसे लोगों को साथ दीजिए।
0: राज्य में वर्ष 2030 तक रेबीज से होने वाली मौतों को शून्य पर लाने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वावधान में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में व्यापक कार्य योजना तैयार करने पर सहमति बनी। इस दौरान सभी सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा विश्व रेबीज दिवस पर 28 सितंबर को राज्य कार्य योजना लॉन्च करने की जानकारी दी गई। इसके अलावा रेबीज नियंत्रण अभियान को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। रांची नगर निगम में डेली मार्केट, न्यू मार्केट और खादगढ़ा के प्रमुख बाजारों के पुनर्विकास के लिए आधुनिक व्यवसायिक परिसरों, मल्टी लेवल पार्किंग और बेहतर नागरिक सुविधाओं से जुड़ी विस्तृत योजना प्रस्तुत की है। नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुराने बाजारों को आधुनिक स्वरूप देने, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता और सार्वजनिक सुविधाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। प्रस्ताव के अनुसार खादगढ़ा बस टर्मिनल परिसर और डेली मार्केट क्षेत्र का चरणबद्ध विकास कर व्यापारियों तथा आम नागरिकों के लिए बेहतर और सुव्यवस्थित बाजार व्यवस्था विकसित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय की अनुकंपा समिति ने लंबित 160 मामलों पर विचार करते हुए 153 आश्रितों को नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। इनमें 62 बाल आरक्षी, 24 महिला आरक्षी, 66 आरक्षी तथा एक अग्निशमन चालक के पद पर नियुक्ति शामिल है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जानकारी दी गई है कि दिव्यांगत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को सम्मानजनक आजीविका उपलब्ध कराने और अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रिया का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राजधानी रांची के अशोक नगर में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक व्यवसायी के घर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया, जबकि एक अन्य आवास में चोरी करने में असफल रहे। हटिया पुलिस उपाधीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्षियों के साथ मामले की छानबीन में जुटी हुई है।
2: एक घर में चोरी हुई है और एक घर में जो है वो चोरी करने का प्रयास किया गया था। उस दौरान जो है वो जैसा लोग सीसीटीवी में देखे हैं किसी और के द्वारा फायरिंग करने का अभी तक नहीं मिला है। बॉडीगार्ड जो है तो उसका हाथ से गोली चलने की संभावना ऐसा लग रहा है कि उसके पैर में अपने से गोली चली है। गोली का भी हम लोग के पास कहीं बाहर से है और बिलेट एक मिला है।
0: दुमका जिले के सरैयाहाट प्रखंड सह अंचल कार्यालय के प्रधान लिपिक आनंद भारद्वाज को एसीबी ने 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लिपिक जमीन से संबंधित कार्यों के लिए एक व्यक्ति से रिश्वत की मांग की थी, जिस पर यह कार्रवाई एसीबी ने की है। मौसम विज्ञान केंद्र ने तत्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ घंटों के दौरान पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, खूंटी, गढ़वा, पलामू, रांची, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा जिले में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात होने की भी संभावना है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कीजिए स्वीकार। नमस्कार, विमलेश का उमंग कार्यक्रम में
0: और अजीत का भी जोहार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच है, तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: ग्राम चरौदाबार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर।
0: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत, देवेश, ब्रिजेश जगत और एकता लवण्य कश्यप।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन।
0: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: और छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में।
2: पिछले दो दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।
0: जी हाँ श्रोताओं, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं। और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी, उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
2: जी, ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है ग्रैन एबियलो। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसकी आयु 5000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं।
0: विमलेश जी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं, यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए, यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा, तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है, क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत,
2: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और पौधे निकलते रहते हैं। जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़, ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी हवाई जटाएं निकलती हैं। ये भूमि तक पहुंच जाती हैं और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है, क्योंकि इसके प्रकंदों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
0: जी विमलेश जी, जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
2: बिल्कुल।
0: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
2: जी।
0: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़, लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।
2: जी जी जी, विशालता की दृष्टि से एक अद्भुत पेड़ है। इसका मूल तना बिजली गिरने से नष्ट हो गया था, लेकिन अपनी हजारों सहायक जड़ों के कारण ये आज भी जीवित है। जी, तो आज हम बात कर रहे थे दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। एक और पेड़ है जिसका नाम है मतुशेलाह। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसकी आयु लगभग 4,850 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये ग्रेट बेसिन ब्रिसल पाइन कोन प्रजाति का पेड़ है। ये मानव जाति के अधिकांश लिखित इतिहास से भी पुराना माना जाता है।
0: माना जाता है श्रोताओं कि इस पाइन वृक्ष का अंकुरण संभवतः 2,800 ईसा पूर्व हुआ होगा। विमलेश जी, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की आयु की, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी

0: रोचक होगा ना कि पेड़ों की आयु भला कैसे आंकी जाती है।
1: जी, पेड़ों की आयु को जानने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पेड़ों के वार्षिक वलयों की गिनती। इन वलयों को ट्री रिंग्स भी कहते हैं। आपने किसी कटे हुए पेड़ के तने को यदि देखा होगा कि उसमें कई वलय, छल्ले या रिंग्स दिखाई पड़ते हैं।
0: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन विमलेश जी, फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा।
1: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
0: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता है। विमलेश जी, एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
1: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
0: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी वर्षा हुई थी, जबकि सकरे वलय सूखा या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: आज का प्रश्न है, क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
1: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
1: हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश सभी अन्य देशों से अनूठा है।

0: भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी है तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है सबसे प्यारा, और अब सुनते हैं कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से बताया गया है, विशेषकर उस समय की शासन व्यवस्था और संस्कृति की चर्चा की गई है।
2: आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ कुछ लोग पहले से रहते थे।

0: कर्मचारियों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। ये नदी अब सूख गई है। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी।
1: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि।

काल में समाज चार वर्णों में बंटने लगा था। ये वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था। आइए चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्यों की दुनिया में।

0: अरे वो काली गाय कैसे धुली तुमने? ये तो लात मारती है, इसने मेरी काली और लाल दोनों मटकियाँ तोड़ दी है। हाँ
1: अरे धृताची।
2: हाँ भैया।
1: तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है, जा दूध से भरी मटकी माँ को दिया।
2: अच्छा।
0: अरे अरे अरे देवदत्त, तुम उस घोड़े को संभालो, अरे उसने खूटा उखाड़ लिया है।
1: नहीं तात, ये काम आप प्रवाहन को ही सौंपिए, मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूँ।
3: अरे, अरे मगर... भाई ये क्या हो रहा है आज, अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या? अब तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त
1: जी,
3: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
1: पिताजी बस थोड़ा सा ही काम बाकी है, वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियाँ टूट गई। यज्ञ दत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़ाइयों और लोहारों के घर गया है, उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे।
3: ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बहनों वाली गाड़ी भी ले जाना।
1: जी पिताजी।
3: उसमें रखकर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना।
1: ठीक है।
3: टूटे बाड़े को भी ठीक करना है, कल वो काला घोड़ा वहां से निकल भागा था।
1: जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है।
3: अरे प्रवाहन।
4: जी पिताजी।
3: तुम मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो।
4: वो पिताजी।
3: अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं, तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ पता भी है, कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
4: जी वो
3: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए।
4: पिताजी हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
0: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे, क्यों देवदत्त?
1: हाँ हाँ पिताजी।
4: और पिताजी हम तो अपने साथ हरिराज शत्रु मर्दन को भी ले जा रहे हैं।
0: हाँ।
4: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे, खेत बस तैयारी समझिए।
3: नहीं नहीं, हरिराज और शत्रुमर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में।
4: जी?
3: ने कल हस्तिनापुर जाना है।
0: पर क्यों पिताजी?
3: वहाँ महाराजा हरिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है, इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी, वहाँ रथों की दौड़ भी होगी।
0: पिताजी हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
1: जी पिताजी,
0: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार हैं।
3: बहुत अच्छा।
0: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है, और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं।
4: पिताजी देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
0: हाँ, हाँ, जी। हम ही जीतेंगे।
3: देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं जौ और चावल ले जाना।
0: जी पिताजी।
3: सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है।
0: अच्छा पिताजी।
3: सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं, यही नहीं गुरुकुलों के ब्रह्मचारी गृहस्थ और साधु सन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं।
4: अच्छा, अच्छा? पिताजी हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धृताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है।
2: हाँ। ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है?
3: आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
2: अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना, सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
4: चल चल बढ़िया ही कंगन वाली। पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने,
1: और क्या
4: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
2: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
4: अच्छा अच्छा चल ठीक है, ले ही आएंगे।
1: हाँ।
4: अब तो खुश।
3: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो।
1: जी पिताजी।
3: कल सूर्योदय से पहले ही चल देना, आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है।
1: जी।
3: अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गाँव पहुँच जाना।
4: जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पैने तीर भी रख लिए हैं, भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे।
0: और पिताजी एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है, वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे।
4: भैया सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल काशी और विदेह से भी रथ आ रहे हैं।
0: हाँ।
4: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
3: हाँ ये तो है।
1: हाँ, हाँ, हाँ, बड़ा आनंद आएगा।
5: और शुरू हो गई रथों की दौड़।

0: bota, né?
1: इस बार तो हमारा रथ ही जीतेगा।
2: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है,
1: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र, क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है?
2: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
1: चलो देखते क्या होता है।
3: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
4: अरे वो देखो
1: क्या
4: रथ की दौड़ शुरू हो गई। अरे वो देखो तो शुरू हो गई।
1: क्या बाकी और सजीले सवाल है। वाह
4: वाह वाह वाह वाह, देखो देखो वो देखो बीच वाला रथ
1: झटका नहीं देगा।
3: इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है।

ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल वनों के शांत और सुरम्य स्थानों पर बनाए जाते थे।

0: गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए। अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा। धन्यवाद
1: मित्र। कुलपति का आदेश सुना तुमने? कैसा आदेश मित्र, मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। मैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था कि आज एक और समस्या आ गई। गुरुजी कह रहे हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है।
2: भोले ब्रह्मचारी, अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान

0: और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
1: अच्छा,
0: वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे।
2: अरे वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है।
3: अरे हाँ, चलो पास से देखते हैं।
2: हाँ, चलो चलो।
3: अरे देखो कितना अच्छा घोड़ा।
1: वाह, हाँ, इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है।
3: इसे पकड़ लेते हैं। हाँ, इसे पकड़ लेते हैं। चलो
1: चलो।
2: अरे वाह, अरे अरे, चलो इसे पकड़ लेते हैं।
4: अरे ये पकड़ा।
1: अरे ये कोलाहल कैसा है?
5: छोड़ दो, छोड़ दो। ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो, छोड़ दो।
2: नहीं नहीं, हमने
5: शीघ्र छोड़ दो।
2: अरे हमने
5: नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
1: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे अरे, इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
2: अरे चलो चलो, भाग चले। आचार्य को बता दें, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध ही ना कर बैठे।
1: अरे रुको तो सही। अरे देखो देखो,
2: क्या
1: आचार्य तो वही पहुंच गए हैं। और हाँ, वो देखो, आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
2: हाँ, हाँ। अच्छा हुआ, संकट टल गया। अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
1: हाँ।
2: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
1: हाँ।
2: उनका प्रभाव, कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।
6: और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई।

0: कबीले के सरदार से वो चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर उनके बेटे सम्राट बने और फिर उनके बेटे। इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रोग्राम रांची मेलोडीज़।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का रांची केंद्र और वक्त है प्रोग्राम रांची मेलोडीज का, जिसे लेकर विनीता है आपके साथ। दोस्तों, लाइफ में सब कुछ अपने हिसाब से हो जाए तो फिर क्या ही बात है। कुछ भी लाइफ में खुद के हिसाब से या जो चाहे हम वो नहीं हो सकता। इसलिए ना, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसी में खुश रहना होगा, उसी में खुशियां तलाशनी होगी। तो बस खुश रहिए, और भी बातें होंगी, पर उससे पहले एक बेहतरीन सा गाना आपके लिए।

इस खूबसूरत सफर में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में कटी पतंग फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, प्यार तो वो है जो सिर्फ दिल से निभाया जाए।

किशोर कुमार के गाए इस गीत के बाद आइए एक और बेहतरीन सा गाना किशोर कुमार की ही आवाज में। लिखूं तो लफ्ज हो तुम, सोचूं तो ख्याल हो तुम, मांगूं तो दुआ हो तुम, सच कहूं तो मोहब्बत हो तुम।

दिल में छुपा कर रखा है मैंने उन लम्हों को जो अक्सर तेरे ख्यालों में तेरे साथ जिए हैं मैंने। तुम इतने नादान भी तो नहीं हो कि समझ ही ना सको। मेरी हर बात में सिर्फ तुम्हारा ही तो जिक्र होता है ना।

और आइए अब सुनते हैं आंधी फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। उनकी मोहब्बत को कुछ इस तरह से निभाते हैं हम, वो नहीं तकदीर में, वो नहीं जिंदगी में, फिर भी बेपनाह चाहते हैं हम।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अब तक के प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। राज्य सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के आखिरी दिन राज्य के डिजिटल परिवर्तन को गति देने तथा झारखंड को सार्वजनिक प्रशासन आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग तथा नागरिक सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभावी उपयोग, पारदर्शी, त्वरित जवाबदेह तथा डेटा आधारित निर्णय प्रणाली विकसित करना है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से आज रिम्स 2 निर्माण से प्रभावित रैयत और ग्रामीणों ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री मरांडी को समस्याओं से अवगत कराया और सहयोग की अपील की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण को लेकर राज्य सरकार हठधर्मिता पर अड़ी है। श्री मरांडी ने कहा कि बेकार पड़ी बंजर भूमि पर रिम्स 2 का निर्माण होना चाहिए। जामताड़ा जिले के सभी प्रखंडों में निर्धारित तिथियों को चरणबद्ध प्रखंड स्तरीय ड्राइविंग लाइसेंस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज नारायणपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में ड्राइविंग लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आवश्यक प्रक्रिया के बाद लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किया जा रहा है।

अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में कथित करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितता के आरोपों की न्यायिक जांच की मांग को लेकर आज जमशेदपुर में झामुमो ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने साक्षी से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जाँच की मांग की। मौसम विज्ञान केंद्र ने तत्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ घंटों के दौरान पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, खूंटी, गढ़वा, पलामू, रांची, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा जिले में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात होने की भी संभावना है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे अब तक के प्रादेशिक मुख्य समाचार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान जगत। प्रस्तुति प्रभु शरण की है, वाचन स्वर वसंत कुमार का।

0: नमस्कार, विज्ञान जगत कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से उपस्थित है हम। मैं हूं बसंत और आप सभी का स्वागत है विज्ञान जगत कार्यक्रम में। तो हर बार की तरह आज भी हम ढेर सारी नई रोचक जानकारी और तथ्यों को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे लिफ्ट एलिवेटर के उपयोग में हमें क्यों सावधानी बरतनी चाहिए इसके बारे में। इसके बाद बारी होगी भेंटवार्ता की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं, बात करने वाले हैं एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मानव जीवन में योगदान और इसका क्या प्रभाव है इसके बारे में। इसके बाद बारी होती है वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं राइट ब्रदर्स के बारे में। इसके बाद बारी होगी खोज और आविष्कार की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं माचिस के आविष्कार के बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करेंगे और क्या जानकारी देंगे इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं लिफ्ट एलिवेटर के उपयोग में हमें सावधानी क्यों बरतनी चाहिए इसके बारे में। आज बहुमंजिला इमारतों, अस्पतालों, कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों और आवासीय परिसरों में लिफ्ट का उपयोग बहुत आम बात हो चुकी है। ये समय और श्रम दोनों को बचाने का काम करता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए लिफ्ट का उपयोग करते समय हमें कुछ शर्तों का, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। सबसे पहली बात कि लिफ्ट में प्रवेश करने से पहले ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि लिफ्ट पूरी तरह हमारे सामने आकर रुकी है या नहीं। लिफ्ट में कभी भी इसकी निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं करना चाहिए। प्रत्येक लिफ्ट पर इसकी अधिकतम भार क्षमता और यात्रियों की संख्या भी लिखी होती है। यदि क्षमता से अधिक भार डाल दिया जाए तो लिफ्ट के संचालन में समस्या आ सकती है और ये दुर्घटना की शिकार हो सकती है। लिफ्ट के दरवाजे बंद होते समय इन्हें हाथ, पैर या किसी वस्तु से रोकने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा देखते हैं कि लोग लिफ्ट में जल्दीबाजी में घुसने के चक्कर में हाथ या पैर से बंद होते समय रोकने की कोशिश करते हैं। ये काफी घातक सिद्ध हो सकता है। अधिकांश आधुनिक लिफ्टों में सेंसर लगे होते हैं, लेकिन फिर भी जोखिम नहीं लेना चाहिए और खास करके बच्चों को कभी भी लिफ्ट में अकेले इसका इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। यदि बच्चे लिफ्ट का उपयोग करें तो इनके साथ किसी वयस्क का होना बहुत आवश्यक है। बच्चों को लिफ्ट में कूदने, शरारत करने या सभी बटन दबाने जैसी जो हरकतें हैं वो बिल्कुल नहीं करने देनी चाहिए। और यदि लिफ्ट अचानक बीच में रुक जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, शांत रहना चाहिए और वहां पे दिए गए अलार्म बटन या इंटरकॉम या मोबाइल फोन से सहायता लेने की कोशिश करनी चाहिए। आग लगने या भूकंप जैसी आपातकालीन स्थिति में लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सीढ़ियों के माध्यम से ही नीचे या ऊपर जाने की कोशिश करें, क्योंकि बिजली कभी भी बाधित हो सकती है और लिफ्ट बीच में फंस सकती है या फिर नीचे गिर सकती है। यदि किसी लिफ्ट पर मरम्मत कार्य चल रहा हो या आउट ऑफ सर्विस का बोर्ड लगा हो तो उसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। केवल सुरक्षित और कार्यशील लिफ्ट का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके हाथ गीले हैं या आप भारी सामान लेकर जा रहे हैं तो सावधानी पूर्वक लिफ्ट में प्रवेश करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास जो सामान है उसका वजन अगर क्षमता से ज्यादा है तो बिल्कुल भी उस लिफ्ट में उसे लेकर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखकर लिफ्ट का अगर सही उपयोग करें और नियमों को मानते हुए उपयोग करें तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन अगर हम इसका गलत उपयोग करते हैं, नियमों की अनदेखी करके हम लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए काफी घातक सिद्ध हो सकता है और इसमें हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो लिफ्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन सावधानी के साथ और पूरी सुरक्षा के साथ।
1: विज्ञान जगत।

नमस्कार, विज्ञान जगत कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से उपस्थित है हम। मैं हूं बसंत और आप सभी का स्वागत है विज्ञान जगत कार्यक्रम में। तो हर बार की तरह आज भी हम ढेर सारी नई रोचक जानकारी और तथ्यों को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे लिफ्ट एलिवेटर के उपयोग में हमें क्यों सावधानी बरतनी चाहिए इसके बारे में। इसके बाद बारी होगी भेंटवार्ता की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं, बात करने वाले हैं एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मानव जीवन में योगदान और इसका क्या प्रभाव है इसके बारे में। इसके बाद बारी होती है वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं राइट ब्रदर्स के बारे में। इसके बाद बारी होगी खोज और आविष्कार की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं माचिस के आविष्कार के बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करेंगे और क्या जानकारी देंगे इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं लिफ्ट एलिवेटर के उपयोग में हमें सावधानी क्यों बरतनी चाहिए इसके बारे में। आज बहुमंजिला इमारतों, अस्पतालों, कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों और आवासीय परिसरों में लिफ्ट का उपयोग बहुत आम बात हो चुकी है। ये समय और श्रम दोनों को बचाने का काम करता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए लिफ्ट का उपयोग करते समय हमें कुछ शर्तों का, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। सबसे पहली बात कि लिफ्ट में प्रवेश करने से पहले ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि लिफ्ट पूरी तरह हमारे सामने आकर रुकी है या नहीं। लिफ्ट में कभी भी इसकी निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं करना चाहिए। प्रत्येक लिफ्ट पर इसकी अधिकतम भार क्षमता और यात्रियों की संख्या भी लिखी होती है। यदि क्षमता से अधिक भार डाल दिया जाए तो लिफ्ट के संचालन में समस्या आ सकती है और ये दुर्घटना की शिकार हो सकती है। लिफ्ट के दरवाजे बंद होते समय इन्हें हाथ, पैर या किसी वस्तु से रोकने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा देखते हैं कि लोग लिफ्ट में जल्दीबाजी में घुसने के चक्कर में हाथ या पैर से बंद होते समय रोकने की कोशिश करते हैं। ये काफी घातक सिद्ध हो सकता है। अधिकांश आधुनिक लिफ्टों में सेंसर लगे होते हैं, लेकिन फिर भी जोखिम नहीं लेना चाहिए और खास करके बच्चों को कभी भी लिफ्ट में अकेले इसका इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। यदि बच्चे लिफ्ट का उपयोग करें तो इनके साथ किसी वयस्क का होना बहुत आवश्यक है। बच्चों को लिफ्ट में कूदने, शरारत करने या सभी बटन दबाने जैसी जो हरकतें हैं वो बिल्कुल नहीं करने देनी चाहिए। और यदि लिफ्ट अचानक बीच में रुक जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, शांत रहना चाहिए और वहां पे

0: दिए गए अलार्म बटन या इंटरकॉम या मोबाइल फोन से सहायता लेने की कोशिश करनी चाहिए। आग लगने या भूकंप जैसी आपातकालीन स्थिति में लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सीढ़ियों के माध्यम से ही नीचे या ऊपर जाने की कोशिश करें, क्योंकि बिजली कभी भी बाधित हो सकती है और लिफ्ट बीच में फंस सकती है या फिर नीचे गिर सकती है। यदि किसी लिफ्ट पर मरम्मत कार्य चल रहा हो या आउट ऑफ सर्विस का बोर्ड लगा हो तो उसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। केवल सुरक्षित और कार्यशील लिफ्ट का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके हाथ गीले हैं या आप भारी सामान लेकर जा रहे हैं तो सावधानी पूर्वक लिफ्ट में प्रवेश करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास जो सामान है उसका वजन अगर क्षमता से ज्यादा है तो बिल्कुल भी उस लिफ्ट में उसे लेकर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखकर लिफ्ट का अगर सही उपयोग करें और नियमों को मानते हुए उपयोग करें तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन अगर हम इसका गलत उपयोग करते हैं, नियमों की अनदेखी करके हम लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए काफी घातक सिद्ध हो सकता है और इसमें में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो लिफ्ट का इस्तेमाल करें लेकिन सावधानी के साथ और पूरी सुरक्षा के साथ। अब बारी है भेंटवार्ता की और भेंटवार्ता में आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मानव जीवन में योगदान और प्रभाव। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में है डॉक्टर अभिजीत मुस्तफी, जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट PIT मिश्रा में कार्यरत हैं और आज हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं। हम आपका स्वागत करते हैं सर हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद बसंत जी मुझे यहाँ पे आने के लिए निमंत्रण देने के लिए।
0: सर आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो कंप्यूटर का युग है और हमारा जो भी काम आज कर रहे हैं वो आधे से ज्यादा काम जो है वो कंप्यूटर पे बेस्ड है और अभी का जो समय है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो चुका है और इस विषय पर बहुत सारे काम भी हो रहे हैं, रिसर्च भी हो रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा आपसे कि AI और मशीन लर्निंग में क्या अंतर है और क्या AI केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित है या आम लोगों के जीवन में भी इसका उपयोग हो रहा है या इससे फायदा हो सकता है।
1: देखिए जो आपका सवाल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आज के डेट में, क्योंकि कई लोग, हम भारतवर्ष की अगर बात करेगा, अगर ग्रामीण भारत की बात करें तो कई लोगों के पास अब भी ये सवाल का जवाब नहीं है कि ये AI क्या है और AI क्या कर रहा है। जो AI को थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए AI का एक अलग इमेज होता है। हमारे लिए जो समझने की बात है कि एक जमाना हुआ करता था जब कंप्यूटर को हम कहते थे कि एक प्रॉब्लम को इस तरह से आप सॉल्व कीजिए, जिसे हम कहते थे उस जमाने में एल्गोरिथम देने, एल्गोरिथम यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय चलता गया AI का जो जागरूकता था वो साइंटिस्ट में बढ़ा और एक नया तरीका निकल के आया जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। और इस तरीके में सबसे खास बात ये निकली कि इसको सॉल्व करने के लिए कोई एल्गोरिथम या प्लान का जरूरत नहीं होता था। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो कंप्यूटर को खुद सिखाया जा सकता था कि इस डेटा को इस्तेमाल करके किस तरह से एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ये एक कोइंसिडेंस की बात मान लीजिए या एक किसी तरह से लोगों के दिमाग में ये बात आ गई कि ह्यूमन ब्रेन भी इसी तरह से काम करता है। जब आप एक बच्चे को बार बार लाल रंग दिखाते हैं और कहते हैं ये लाल रंग है तो कहीं ना कहीं उसके जहन में, कहीं उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि जब हम लाल रंग देखते हैं तो इसे लाल कहना है। तो ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी का एसोसिएशन है, इस तरह से एक ह्यूमन बेबी भी सीखता है, ह्यूमन ब्रेन को भी हम ट्यून करते हैं। और ये कंप्यूटर साइंस में जो आज AI का दौर है इसमें भी इसी पद्धति का यूज कर रहे हैं। फायदा इससे कई सारे हैं कि लोगों को काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका लग रहा है जो पहले, आज से हम 20 साल पहले की बात करें तो हम कहते थे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं सकती, लेकिन आज के दिन में ये सॉल्व हो रही है AI की वजह से, ये सॉल्व हो रही है।
0: और अगर आज के समय में अगर हम बात करें तो किन किन क्षेत्रों में इसका ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और क्या उनसे फायदा हो रहा है?
1: आज के दिन अगर हम बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि सोशल लाइफ में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में कोई ऐसा डोमेन बचा ही नहीं है जो AI से अनछुआ है। हर दिशा में आप देखें तो कहीं ना कहीं AI अपना रोल प्ले कर रहा है। हम एक एग्जाम्पल ही ले लें कि आज दुनिया के कई जगहों पे फार्मिंग होती है, कई जगह में ऐसे ऐसे जगह में फार्मिंग किया जा रहा है कि जहां पहले आदमी सोच नहीं सकता था कि फार्मिंग पॉसिबल है, लेकिन आज हमारे पास प्रिसिशन फार्मिंग के नाम से AI का एक ऐसा उपयोग है जो तुरंत मुझे बता देता है कि इस जगह के लिए कौन सा सही क्रॉप उपयोगी होगा। तो इस तरह से आप अगर देखें, अगर वारफेयर की बात करें, अगर डिफेंस की बात करें, तो जहां पहले हमें सोल्जर भेजने पड़ते थे आज हमें सोल्जर भेजने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आज कई देश हैं जो अपने बॉर्डर्स की रक्षा रोबोट्स के थ्रू कर रहे हैं। आश्चर्यचकित हो गया, कुछ दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा चाइना में बैठे एक साइंटिस्ट ने अपने टेक्स्ट के द्वारा, खाली मुंह से जबानी बोल के, एक विजुअल डायग्राम बना दिया जिसे देख के जर्मनी में एक डॉक्टर ने एक ऑपरेशन कर डाला। तो ये पूरा जो प्रोसेस था ये AI ड्रिवन था और हम साधारण लोगों के लिए लगता है कि AI अभी

0: दूर है और सीखने की बात है, लेकिन ऐसा है नहीं। एआई धीरे धीरे हमारे जीवन में बहुत अंदर तक आ चुकी है, हर चीज में आप देखें। और हमारा जो आज जेंजी की हम बात करते हैं, इनके लिए तो एआई के बिना रहना ही मुश्किल हो जा रहा है। हर चीज में, होमवर्क में हो या फिर कॉलेज एग्जाम में हो या किसी चीज को समझने में हो, जेई या नेट की प्रिपरेशन में हो, हर जगह एआई आज हमारे सामने आ चुकी है।
1: हम एआई का अलग अलग फील्ड में इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, तो अगर हम देखें कि हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने की बात करते हैं, तो हेल्थ सेक्टर में अगर इसका इस्तेमाल हो रहा है, जो महंगे महंगे इलाज हैं, क्या उन इलाजों में इसका फायदा होगा और इसके इस्तेमाल से क्या उसके जो खर्चे हैं उसमें कमी आने के चांसेस?
0: दो चीजें हम जरूर कहना चाहेंगे। एआई इन हेल्थ सेक्टर आज के डेट में बहुत आगे बढ़ चुकी है, और इससे जो आपका सवाल है कि इससे हमें एज अ कॉमन मैन क्या फायदा मिलने वाला है, तो इसमें कई सारे फायदे नजर आ रहे हैं। एक तो होता है कि जो पहले प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस, डिटेक्शन वाला स्टेज चलता है, उसमें हमें पता करना होता है कि भाई किसी पेशेंट को हुआ क्या है, तो ये हमेशा से, सदियों से आप देखेंगे, डॉक्टर का डोमेन में हुआ करता था। लेकिन आप सोच लीजिए कि गांव में चले गए जहां डॉक्टर मीलों दूर है, तुरंत हम डॉक्टर के पास पहुंच नहीं सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो डायग्नोसिस है उसको ठीक से कर पाना ही अपने आप में एक चैलेंज है। आज एआई उस लेवल में पहुंच चुका है जहां पे हम एक एक्सरे इमेज या एमआरआई इमेज या पॉजिट्रॉन एमिशन इमेज, इन सारों को अगर हम एक मॉडल में डाल देते हैं, वो मुझे तुरंत बता देता है कि ये डायग्नोसिस क्या है, और खाली इतना ही नहीं कि इसके डिजीज में क्या है, ये लेवल भी बता देगा, और अगर इमेज है तो उस इमेज में कहां पे ये कैंसर है या कुछ और किसी तरह का अगर उसमें पाया गया, तो वो तुरंत बता देता है कि किस पार्ट में ये इफेक्ट हो रहा है। तो ये तो हो गया कि डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस वाला बात। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आ रही है, वो है डिस्कवरी ऑफ ड्रग। तो ड्रग डिस्कवरी में एआई का आज बहुत यूज हो रहा है, क्योंकि हर ड्रग हर इंसान को सूट नहीं करता, और हमें समझना होगा कि कौन सा ड्रग किसके बॉडी में किस तरह से रिएक्ट करेगा। पहले कंपनियां ये काम ट्रायल एंड एरर से करती थी, एनिमल टेस्टिंग से करती थी, आजकल धीरे धीरे टेस्टिंग के पहले ही आपको क्लियर कट आइडिया हो जाता है कि ये ड्रग क्या होने वाला है और इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। तो ये अगर हम चंद चीजें देखें, तो हेल्थ सेक्टर में एआई आज बहुत आगे बढ़ चुकी है।
1: यानी कि एआई का इस्तेमाल अगर सही तरीके से करें तो आपको फायदा होगा, और अभी इस चीज का फायदा लोग उठा रहे हैं। और हम इस चीज को थोड़ा सा और गहराई से समझना चाहेंगे विज्ञान की भाषा में, कि अगर जैसे नासा या फिर हमारे देश का जो विज्ञान संस्थान है इसरो, अगर हम किसी ग्रह की खोज करने या वहां पर जो भी चीजें हैं उसको जानने के लिए हम यहां से अपने लोगों को भेजते हैं स्पेस क्राफ्ट के थ्रू, तो क्या एआई की मदद से हम बिना इंसानों को भेजे वहां पर क्या है नहीं है ये सारी चीजों की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं?
0: ये बड़ा अनोखा सवाल है। अगर आप पर्सनली हमसे पूछे तो मेरे हिसाब से 2040 कट ऑफ है जब कोई रोबोट भारत के तरफ से कोई एक प्लेनेट पे उतर जाएगी, और वो बिल्कुल वही काम करेगी जो एक इंसान वहां पे पहुंच के करती है। तो उसके आंख में कंप्यूटर विजन लगा होगा, उसके हाथ में टच सेंसर्स लगे होंगे, लेकिन उसे मरने का खतरा नहीं होगा, कोई एक्सीडेंट का खतरा नहीं होगा, और आसानी से वो किसी भी पत्थर को उठा के अपने आंख से देख के उसका टेक्सचर एनालिसिस करके बता पाएगा कि उसमें क्या मेटल है या क्या कंपाउंड है। तो ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में एआई एंड रोबोटिक्स, ये दोनों का जो मिश्रण है, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, और इससे सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको खतरा बिना लिए ही आपको पता चल जाता है कि आपका जो एक्सप्लोरेशन है वो आपको कितना फायदा देने वाला है। तो मुझे लगता है कि स्पेस इज द नेक्स्ट फ्रंटियर फॉर एआई, और आज नहीं तो कल सबसे बड़ा एक्सप्लोजन ऑफ एआई एप्लीकेशन इसी स्पेस में ही
1: इस दिशा में भी कुछ काम देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं डेटा सुरक्षा की, क्योंकि एआई हम इस्तेमाल कर रहे हैं और सबसे बड़ा जो डर होता है कि हम जो डेटा शेयर कर रहे हैं या हमने जो चीज फीड कर रखी है उसका गलत इस्तेमाल होने का, तो अब सबसे बड़ी जो समस्या है लोगों के सामने, जो डेटा है वो सुरक्षित कैसे रहे,
0: इसमें हमें जागरूक होने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इंडिया में अगर हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बात करते हैं, जो आजकल चली हुई है, LLMs की जो बात करते हैं, तो इंडिया में आज के डेट में खुद का अपना LLM उस प्रकार का नहीं बन पाया है जो बाकी देशों में बन चुके हैं। तो इससे ये होना ही होता है कि हम कई बार अपना जो डेटा है वो विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स में डाल देते हैं, और ये कंपनी अपने जहां एग्रीमेंट्स है, जहां पे इनका यूला लिखा हुआ है, वहां पे बड़े छोटे अक्षरों में ये लिखती है कि आपका डेटा को यूज किया जाएगा मॉडल को ट्रेन करने के लिए। अगर हम जागरूक रहें और उन चीजों को यहां अपलोड ना करें जिनका मुझे लगता है मेरा पर्सनल लाइफ से कोई लेन देन है, तो हम सेफ हैं। लेकिन अगर हम किसी भी चीज को अपलोड करते हैं तो ये जान के करना होगा कि ये चीज देश के बाहर जा रही है और हो सकता है कि उसका कोई गलत इस्तेमाल करे। तो इस बारे में मुझे लगता है कि हम भारतीयों को बहुत जानकार होना पड़ेगा, और गवर्नमेंट टाइम टाइम पे कई सारे वार्निंग्स देते हैं, कई सारे हमें ये बताते हैं कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और उन चीजों पे हमें जरूर ध्यान देना चाहिए।
1: जो युवा इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काम

0: करना। अब तो इसकी विधिवत पढ़ाई भी शुरू हो गई है अलग अलग कॉलेज और स्कूलों में। तो इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और जो नौकरी को लेकर के एक सवाल हमेशा उठता है कि AI के आने के बाद हमारी नौकरी चली जाएगी, फ्यूचर में क्या ऐसा हो सकता है, या फिर खुद को सेफ रखने के लिए आप अभी से ही ट्रेनिंग लेते रहें, आगे चलते रहें इस फील्ड में, आप क्या सोचते हैं?
1: मैं अपने क्लास में भी ये कहता हूँ कि किसी भी इंसान का नौकरी AI के कारण नहीं जाएगा, उसकी नौकरी इससे जा सकती है कि उससे बढ़कर कोई AI जानने वाला इंसान आ जाए। तो AI किसी की नौकरी लेगी मुझे नहीं लगता है, लेकिन हाँ ये बात हम कतई नहीं काट सकते हैं कि AI जानना आज बहुत ज़रूरी हो चुका है। और इस बारे में आप देखेंगे कि भारतीय सरकार भी छोटे छोटे क्लासों में ही AI का पढ़ाई शुरू करा रहे हैं। AI का पढ़ाई करना अपने आप में बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत टफ है। मैं खुद फिजिक्स ऑनर्स स्टूडेंट था, तो उस टाइम हमने जो फिजिक्स ऑनर्स में पढ़ा था उसकी जो कठिनाई थी उसके बनिस्बत AI की कठिनाई उतनी नहीं है। लेकिन दिक्कत जो मुझे लगता है कि बच्चों के सामने आ जाती है कि चॉइस बहुत वाइड हो जाए, और क्या पढ़े क्या ना पढ़े इस चीज पे उन्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए। इसके लिए कई सारे आजकल वेबसाइट्स हैं, कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, उसमें अगर आप जाएंगे थोड़ा अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज के दिन क्या पढ़ना जरूरी है और क्या आज है लेकिन कल ना भी रहे। तो मुझे लगता है जो कोर एस्पेक्ट्स है, जो कोर कंपोनेंट्स है AI का, उन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और उससे हम बाकी सारी चीजों को खुद ब खुद ही सीख लेंगे।
0: जो भी युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं या फिर आगे चलकर इसमें काम करना चाहते हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या तैयारी करनी चाहिए और आगे क्या भविष्य हो सकता है?
1: देखिए, AI का भविष्य जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, AI का जो आज के दिन रुझान है ये हो सकता है थोड़ा घटे, लेकिन AI का इस्तेमाल बढ़ना ही बढ़ना है। तो जो भी स्टूडेंट हो, जो भी छात्र हो, जो उसे लगता है कि AI के फील्ड में अपना जीवन वो बनाना चाहता है, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। आपका थोड़ा सा बेसिक साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स में रुझान होना चाहिए, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा और कुछ की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा बहुत मल्टीप्लीकेशन कर पाते हैं, थोड़ा बहुत डिविजन कर पाते हैं और आपको इंटरेस्ट है, तो ये आसानी से आप समझ सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा दौर हमारे लिए चल रहा है कि कई सारे प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं जहाँ पे आपको अधिक डेप्थ में ना जाके भी AI मॉडल जनरेट करने का आसान तरीका मिल जाता है। तो अगर कोई छात्र या स्टूडेंट उस तरह से सोच रहा है तो उसके लिए भी कई संभावनाएं हैं।
0: यानी कि इस फील्ड में अगर आप काम करना चाहते हैं, भविष्य में आप इसमें अपना करियर संवारना चाहते हैं, तो आपको अभी से तैयारी करनी होगी और तभी जाकर इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने ढेर सारी बातें की सर आपसे, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: अभी हम सुन रहे थे भेंटवार्ता में AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मानव जीवन में योगदान और प्रभाव। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में थे डॉक्टर अभिजीत मुस्तफी। ये हमने बात कर लिया AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मानव जीवन में योगदान और प्रभाव के बारे में। इस भेंटवार्ता के बाद क्यों ना आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुना दिया जाए। तो चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत, और गीत के बाद हम लौटेंगे तो अपनी बातों को आगे जारी रखेंगे।

तो इस बहुत ही प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विज्ञान जगत कार्यक्रम में। और अब हम बात करने वाले हैं वैज्ञानिकों के बारे में, और आज हम जिस महान वैज्ञानिक की बात करने वाले हैं उन्हें दुनिया राइट ब्रदर्स के नाम से जानती है। जिन्होंने हवाई जहाज के आविष्कार में अपना पूरा जीवन लगा दिया, जिन्हें दुनिया राइट ब्रदर्स के नाम से जानती है, और जिन्होंने दुनिया में हवाई जहाज की यात्रा को सरल बनाने का काम किया, इन दोनों भाइयों का नाम है ऑर्विल राइट और विल्बर राइट। विल्बर राइट का जन्म 16 अप्रैल सन 1867 को हुआ, जबकि ऑर्विल राइट का जन्म 19 अगस्त सन 1871 को हुआ। इनके पिता एक धर्मगुरु थे और माता यांत्रिक कार्यों में विशेष रुचि रखती थीं। माता पिता ने बचपन से ही दोनों भाइयों में जिज्ञासा, परिश्रम और नई चीजें सीखने की आदत विकसित की। एक दिन इनके पिता बच्चों के लिए रबर से चलने वाला एक छोटा सा खिलौना लेकर आए। उस खिलौने ने दोनों भाइयों के मन में उड़ने की इच्छा जगा दी। अपनी युवावस्था में दोनों भाइयों ने साइकिल बनाने और उसकी मरम्मत का व्यवसाय शुरू किया। इस काम से इन्हें मशीनों की बनावट, संतुलन और गति के सिद्धांत की अच्छी समझ मिल गई। इसी अनुभव का उपयोग करते हुए उड़ने वाली मशीन बनाने में ये लग गए। राइट ब्रदर्स ने पक्षियों की उड़ान का गहराई से अध्ययन किया। इन्होंने ग्लाइडर बनाए, अनेक प्रयोग किए और कई बार असफल भी हुए, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी। और इनका मानना था कि सफलता की सबसे पहली सीढ़ी असफलता ही होती है, इसलिए असफल होने के बावजूद ये कोशिश करते रहे। कई वर्षों के कठिन परिश्रम और लगातार प्रयोगों के बाद 17 दिसंबर सन 1903 को इन्होंने अपने विमान का सफल परीक्षण कर लिया। उस दिन ऑर्विल राइट ने लगभग 12 सेकंड तक उड़ान भरी और लगभग 120 फीट की दूरी तय की। ये इतिहास की पहली सफल नियंत्रित और इंजन संचालित मानव उड़ान थी। इस ऐतिहासिक सफलता ने पूरे विश्व को नई दिशा देने का काम किया। इसके बाद विमान तकनीक का तेजी से विकास हुआ। आज यात्री विमान, मालवाहक विमान, हेलीकॉप्टर और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, इन सबकी नींव राइट ब्रदर्स के प्रयासों पर ही आधारित मानी जाती है। राइट ब्रदर्स केवल आविष्कारक ही नहीं थे, बल्कि धैर्य, अनुशासन, वैज्ञानिक सोच और निरंतर प्रयास के प्रतीक भी माने जाते थे। इन दोनों ने सिद्ध करने का काम किया कि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो असंभव भी संभव बन सकता है। आज दुनिया भर में इनके योगदान को सम्मान के साथ याद किया जाता है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में इनका नाम सदैव प्रेरणा के साथ लिया जाता है। राइट ब्रदर्स का जीवन हमें ये संदेश देता है कि बड़े सपने देखने के साथ साथ उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास, परिश्रम, धैर्य और आत्मविश्वास की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने आपको बता दिया कि राइट ब्रदर्स कौन थे और इन्होंने किस चीज की खोज की थी, किस चीज का आविष्कार किया था। अब हम बात करते हैं खोज और आविष्कार में, आज माचिस के आविष्कार के बारे में। माचिस, वही माचिस जो हमारे घर में है, जिसका इस्तेमाल हम सभी करते हैं, और इस माचिस को बनाने के पीछे काफी मेहनत लगी है। गैस लाइटर और इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन के युग में भी माचिस का जो वैल्यू है, जो महत्व है, वो कम नहीं हुआ। घरों, होटलों, पूजा पाठ,

0: ग्रामीण क्षेत्रों और अनेक छोटे बड़े कार्यों में आज भी माचिस का उपयोग किया जाता है। मानव सभ्यता के प्रारंभिक समय में आग जलाना बहुत कठिन माना जाता था। लोग दो पत्थरों को टकरा कर चिंगारी पैदा करते थे, फिर लकड़ियों को लंबे समय तक रगड़ कर आग जलाने का काम करते थे। ये प्रक्रिया कठिन, समय लेने वाली और कई बार असफलता को भी प्राप्त होती थी। आधुनिक माचिस के आविष्कार का श्रेय अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन वॉकर को दिया जाता है। इनका जन्म 29 मई 1781 में हुआ था और ये एक रसायन और औषधि विक्रेता के तौर पर जाने जाते थे। सन 1826 में एक दिन ये अपनी प्रयोगशाला में रसायनों का प्रयोग कर रहे थे। प्रयोग के दौरान इन्होंने देखा कि एक लकड़ी की तीली के सिरे पर लगा रासायनिक मिश्रण सूख गया है। जब उन्होंने उस तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा तो वो तुरंत जल उठी। इस प्रकार संयोग से दुनिया की पहली घर्षण माचिस का आविष्कार हुआ। इसके बाद जॉन वॉकर ने ऐसी माचिस बनाने का काम शुरू किया जो लोगों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जा सके। ये उस समय एक क्रांतिकारी आविष्कार के रूप में दुनिया के सामने उभर कर सामने आई, और क्योंकि अब आग जलाने के लिए लंबे और कठिन प्रयास की आवश्यकता नहीं रह गई थी। हालांकि शुरुआती माचिस में कुछ कमियां थी, इससे तेज गंध आती थी और ये कभी कभी असुरक्षित भी साबित हुआ करती थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे और अधिक सुरक्षित बनाने के प्रयास जारी रखे। सन 1844 में स्वीडिश रसायनज्ञ एरिक ने सुरक्षित माचिस का सिद्धांत विकसित कर लिया। जॉन एडवर्ड ने इसमें सुधार किया और ऐसी सेफ्टी माचिस बनाई जो केवल डिब्बी की विशेष रगड़ने वाली सतह पर ही जला करती थी। यही प्रणाली आज भी अधिकांश माचिस की डिब्बियों में उपयोग की जाती है। आज माचिस की तीली लकड़ी या गत्ते से बनाई जाती है। इसके सिरे पर विशेष रासायनिक मिश्रण लगाया जाता है। डिब्बी की किनारे पर अलग रसायन होते हैं जबकि तीली को उस सतह पर रगड़ा जाता है, तो घर्षण करने के बाद उत्पन्न गर्मी रासायनिक अभिक्रिया करती है और तीली जलती है। ये छोटा सा आविष्कार मानव जीवन को सरल, सुविधाजनक और समय की बचत करने वाला सिद्ध कर चुका है। लेकिन माचिस का उपयोग करते समय हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। इसे हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थों के पास इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और उपयोग के बाद तीली को पूरी तरह बुझाकर फेंकना चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। माचिस का आविष्कार हमें ये सिखाता है कि विज्ञान के छोटे छोटे आविष्कार भी मानव जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जॉन वॉकर और अन्य वैज्ञानिकों की मेहनत ने आग जलाने की प्रक्रिया को सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने का काम किया। तो आज हमने ढेर सारी जानकारी दे दी आपको माचिस के बारे में भी, और हमने ढेर सारी बातें भी कर ली आपसे। लेकिन अब हमारे स्टूडियो की जो घड़ी है वो आपसे विदा लेने का इशारा कर रही है, और जाने से पहले हम हर बार की तरह आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, और मौसम में परिवर्तन हो चुका है तो जब भी आप घर से बाहर निकलें तो पूरी सुरक्षा के साथ निकलें। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अब आपसे लेते हैं विदा। अगली कड़ी में हम फिर से मिलेंगे नई रोचक जानकारी और तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: ज्ञान जगत।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान जगत, वाचन एवं सहयोग वसंत कुमार का। प्रस्तुति थी प्रभु सरन की। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स तथा एफएम 100.5 मेगा हर्ट्स पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:35 हुए हैं। आइए अब आपको बताते हैं शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। तो अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ सरगम। 5 बजे आप सुन सकेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। पांच बजकर 2 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। 5:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम श्रमिक लोक। 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। 6:32 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया। 7 बजे होगा प्रादेशिक समाचार। 7:11 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले में आजकल। 7:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम

10 बजे का वक्त होगा कार्यक्रम सुनहरी यादें का। दस बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। 11 बजे आप क्रमशः सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ सरगम। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

कार्यक्रम सांझ सरगम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी पूजा और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं फिल्म पठान के इस प्यारे से गीत के साथ। आवाजें अरिजीत सिंह, सुकृति कक्कड़ और विशाल शेखर की। संगीत से सजाया है विशाल शेखर ने और शब्द रचना कुमार की।

अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म सिंह इज किंग से, आवाजें यो यो हनी सिंह की और स्वीटाज बरार की, संगीत से सजाया है हनी सिंह ने, शब्द रचना मयूर पुरी की और संगीत प्रीतम का।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म प्रेम रतन धन पायो से, आवाजें अमन और विनीत सिंह की। सब रचना इशाद कामिल का, संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने।

अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म सूर्यवंशी से आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की, संगीत से सजाया विजू शाह ने और शब्द रचना आनंद बाख्शी और तनिष्क बाख्शी का।

अगला और आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म फाइटर से, आवाजें बेनी दयाल, शिल्पा राव और विशाल शेखर की। संगीत से सजाया है विशाल और शेखर ने, शब्द रचना कुमार की।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। राज्य सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के आखिरी दिन आज राज्य के डिजिटल परिवर्तन को गति देने तथा झारखंड को सार्वजनिक प्रशासन आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने राज्य की अमूल्य धरोहर की झलक भी देखने को मिली। इस मौके पर वक्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विजन की सराहना की। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा की अध्यक्षता में आज रांची में जगन्नाथपुर रथ मेले के सफल आयोजन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। DGP ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेले में सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मेला क्षेत्र और रथ यात्रा मार्ग पर निगरानी बढ़ाने, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करने और महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। झारखंड उच्च न्यायालय में आज JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षाफल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति MS सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी को किसी तरह की राहत नहीं देते हुए याचिका खारिज कर दी। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने आज 78वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान रांची के मोरहाबादी स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मौके पर अधिवक्ता राजेंद्र कृष्णन ने कहा कि ABVP का इतिहास गौरवशाली रहा है और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने तत्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ घंटों के दौरान चतरा और हजारीबाग जिले के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात होने की भी संभावना है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और आज के सांध्यकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, हम लेकर आपको बता दें आज के सायंकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें आज हम सुनवा रहे हैं युगल गीत। 5:30 पर होगा किसानवाणी कार्यक्रम, जिसमें चर्चा होगी बरसात के मौसम में भिंडी की खेती पर। मौसम की जानकारी के अलावा भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी धान फसल के लिए खेत की तैयारी पर। भेंटवार्ताकार होंगे मनसा किस्कू। लोकगीत आप सुनेंगे जितेन प्रधान और साथियों से। शाम 6:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से मुख्य समाचार। 6:02 पर होगा बंगला कार्यक्रम सात रंग। पर आपको सुनवाएंगे संथाली में कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे लांगड़े गीत, भेंटवार्ता और दोंग गीत। 6:55 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। 7:15 पर प्रसारित करेंगे आप सबों के पसंद पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम को जारी रखते हुए आपको रात्रि 8:00 पुनः आपको सुनवाएंगे आप सबों के फरमाइश पर ही आधारित कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:45 पर होगा समाचार संध्या और रात्रि 9:00 News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। 9:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे और रात्रि 10:00 हमारी गजलों की महफिल सजेगी। 10:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग का प्रसारण होगा और रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 11:10 पर सभा समाप्ति की घोषणा की जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप जानकारी ले रहे थे आज के सायंकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं और अब श्रोताओं, हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। और आज के गुलदस्ता को हमने सजाया है युगल गीत से।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: इन संदेशों के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सबों का फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता और हम सुनवा रहे हैं आपको युगल स्वर में गीत। तो आइए अगला गीत सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और जॉली मुखर्जी के युगल स्वर में। फिल्म का नाम है साथी।

और अब श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह और समीरा कोपिकर के युगल स्वर में फिल्म हैट स्टोरी 2 का ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा आज का गुलदस्ता कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे गुलदस्ता में युगल गीत। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

इस कार्यक्रम की प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसानवाणी सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को आशा मनी ग्रुप का जोहार। कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। कार्यक्रम में आज मैं आपके बीच बहुत सी जानकारियों के साथ उपस्थित हुई हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चा से। बरसात के मौसम

0: भिंडी की खेती। किसान भाई बहनों, बरसात के मौसम में सब्जियों का विशेष देखभाल करना चाहिए। भिंडी की अगर हम बात करें तो इसके लिए सबसे पहले खेत में जल निकास की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। यदि खेत में पानी रुक गया तो फसल की जड़ों में सड़न और रोग फैलने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही भिंडी में फूल और फल आने की प्रक्रिया में भी फल छेदक की समस्या देखी जाती है। इसकी खेती के लिए दोमट मिट्टी अच्छी होती है, रेतीली दोमट, चिकनी मिट्टी, इसमें भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। इसकी खेती के लिए आप गोबर खाद, कंपोस्ट खाद का आप प्रयोग कर सकते हैं। अभी इस समय में भिंडी की खेती के लिए काफ़ी अच्छा समय है। अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो आप फसल सितंबर अक्टूबर माह तक प्राप्त कर सकते हैं, यह तैयार हो जाएगा उस मौसम में। भिंडी की फसल का सही समय उसकी किस्म, मौसम और देखभाल पर निर्भर करता है। अगर आप बुआई से पहले बीजोपचार करते हैं तो फसल भी काफ़ी अच्छा होगा, साथ ही फसल में किसी तरह का रोग नहीं लगेगा और इससे जो उत्पादन है वो भी काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। बुआई से पहले अच्छे बीजों का ही प्रयोग करना चाहिए, स्वस्थ बीजों का ही प्रयोग करना चाहिए, इससे जो फसल का उत्पादन है वो भी बढ़ता है। साथ ही इस मौसम में, बरसात के मौसम में, खरपतवार की समस्या ज़्यादा देखी जाती है। आसपास खरपतवार बहुत उग आते हैं तो ऐसे में इन्हें निरंतर साफ करना बहुत ज़रूरी है। अगर खरपतवार ज़्यादा बढ़ते हैं तो ऐसे में जो पौधों का विकास है वो सही तरह से नहीं हो पाता है और इससे फसल भी प्रभावित होता है। साथ ही बरसात के इस मौसम में कीटों का प्रकोप भी ज़्यादा रहता है तो ऐसे में फसलों की देखभाल बहुत ही ज़रूरी है। किसान भाई बहनों, इस चर्चा के बाद आइए अब हम सुनते हैं ये संदेश।
1: जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समंदर का जलस्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पहले से ही भारत, भूटान और श्रीलंका में साझा किया जा रहा है। इसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने आप को बदलती जलवायु के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अधिक जानिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हम सभी के लिए जलवायु के बारे में जानना बेहद जरूरी है।
0: किसान भाई बहनों, अब हम आनंद लेते हैं होलो गीत का, अमरनाथ सामंत और साथियों के स्वर में।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
1: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को बीज ले आते हैं, गेहूं को बीज ले आते हैं, सरसों को बीज ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया।
0: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
2: हमने 1,800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
0: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
3: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें हैं, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
0: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए।

0: मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
1: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है उससे भी उसको राहत मिलती है और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
0: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
2: मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ।
0: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
3: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
0: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।

0: फसल बीमा का।
1: हमने फसल बीमा योजना के वो अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
2: अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
2: बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
4: कार्यक्रम किसानवाड़ी में आप सबका पुनः स्वागत है। किसान भाई बहनों, अब हम जानकारी लेते हैं धान फसल के लिए खेत की तैयारी। इस विषय में जानकारी दे रहे हैं मनसा किस्कू। फसल के लिए खेत की तैयारी, इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे किसान भाई बहनों को दीजिए।
5: सबसे पहले चौहार, मेरा नाम है मनसा किस्कू और हम सिनी सिद्धमा गांव से हैं और जिला है सरायकेला खरसवां।
4: आपका हम कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जोहार
5: जोहार।
4: धान फसल के लिए लगभग खेत की तैयारी हमारे सभी किसान भाई बहन कर रहे हैं, शुरू कर दिए हैं। तो सबसे पहले आप बताइए, धान फसल के लिए खेत की तैयारी में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
5: जैसे कि वो खेत में घास सब निकलता है तो सबसे पहले ट्रैक्टर की मदद से अभी तो हल क्या बोलेंगे चलाएंगे, उसके बाद घास सब को नष्ट कर देंगे। उसके बाद नष्ट होने के बाद 3 सप्ताह छोड़ देंगे, यानी कि वो घास सब मर जाए।
4: अच्छा।
5: नष्ट हो जाए
4: और उसके बाद फिर इसके जुताई करना प्रारंभ कर देते हैं।
5: हाँ।
4: तो वो लगभग कितने सप्ताह के अंतराल में करते हैं?
5: उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर से और ट्रैक्टर की मदद से हल चलाएंगे। उसके बाद और चलाने के बाद 1-2 दिन मिट्टी को सूखने के लिए छोड़ देते हैं।
4: अच्छा।
5: हाँ।
4: और फिर इसके बाद इसमें खाद देते हैं?
5: हाँ, खाद देते हैं गोबर।
4: अच्छा। तो खाद में कौन सा खाद इस्तेमाल करते हैं?
5: खाद जैसे कि वो गाय का वही खाद इस्तेमाल करते हैं।
4: अच्छा, ये आप अभी हमारे गांव घर में तो आप लोग खुद से ही तैयार करते हैं, यही खाद इस्तेमाल करते हैं।
5: हाँ।
4: आप युवा कृषक हैं और आप खेती के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं?
5: हाँ, पढ़ाई भी कर रहे हैं
4: जी। बहुत अच्छा है, मतलब इससे जो खेती का कार्य है वो भी आप सीखते जा रहे हैं।
5: हाँ, खेती का कार्य भी सीखते जा रहे हैं और पढ़ाई भी कंटिन्यू चलते जा रहा है।
4: अच्छा।
5: हाँ।
4: धान के लिए बीजों का जो बुआई है वो कब से प्रारंभ करने वाले हैं?
5: यही जून में करने वाले हैं।
4: अच्छा।
5: हाँ।
4: अभी इस जून माह में ही इसी सप्ताह में लगभग करने वाले हैं।
5: हाँ, करने वाले हैं।
4: अच्छा, जो बीजों के लिए है जो बुआई है किस तरह से करते हैं? छिड़काव करते हैं या मतलब लाइन में किस तरह से करते हैं?
5: हाँ, छिड़काव करते हैं। छिड़काव करने के बाद उसके बाद ट्रैक्टर से मैंने हल्का हल्का हल चलाते हैं।
4: अच्छा, फिर से जुताई कर देते हैं
5: हल्का हल्का।
4: अच्छा,
5: थोड़ा वो बीज थोड़ा ढक जाए।
4: अच्छा। हाँ। तो इसके बाद फिर से ऊपर से फिर खाद देते हैं क्या?
5: हाँ, जो बड़ा होने के बाद उसके बाद देते हैं, देने का यूरिया DAP ये सब मिला के देते हैं, यानी कि जल्दी मतलब पक जाए, मतलब बड़ा हो जाए।
4: अच्छा।
5: हाँ।
4: तो बहुत अच्छा है।
5: हाँ।
4: इसके लिए तो धान फसल के लिए सिंचाई की तो व्यवस्था वर्षा का ही पानी है और उसके ही माध्यम से सिंचाई होता है।
5: हाँ, उसके माध्यम से ही सिंचाई होता है
4: जी। ये जो आप धान लगाने वाले हैं तो ये लगभग आपका कितने महीने में तैयार हो जाता है?
5: हाँ, कम से कम 6 महीने तो लग जाता है।
4: लग जाता है।
5: हाँ।
4: किस तरह की धान को आप लगाने वाले हैं?
5: हाँ, जैसे कि इस साल लगाएं, उसके बाद उसी को धान को बचा के रखेंगे, उसके बाद अगले साल उसी को खेत में लगाएंगे। हाँ, मतलब छिड़काव करके।
4: अच्छा।
5: हाँ, लगाएंगे।
4: तो इसमें किस तरह के किस्म को आप लगाने वाले हैं?
5: जैसे कि हम लोग संताल भाषा से बोलते हैं गेरे हुड़ू, झेल हुड़ू, वैसे बोलते हैं।
4: अच्छा।
5: हाँ, उसी को लगाते हैं।
4: बहुत अच्छा है। तो ये भी लगभग कितने महीने में तैयार हो जाता है?
5: वही 6 महीने जैसे ही लगता है
4: जी।
5: हाँ।
4: उसके बाद इसमें अंकुरण होने के बाद फिर जो खरपतवार निकल आते हैं वो लगभग कितने दिनों के बाद साफ करना प्रारंभ करते हैं?
5: जैसे कि वो बड़ा हो जाने से धान तो उसको थोड़ा साफ कर देते हैं कि वो धान को उसको दिक्कत ना हो कि होना मतलब बड़ा होने में।
4: हाँ, बिल्कुल सही बात है।
5: हाँ, फसल मतलब ठीक से होगा।
4: बीज अंकुरण के बाद फिर किस तरह की प्रक्रिया को अपनाते हैं?
5: जैसे कि वो धान को जब लगाएंगे तो सबसे पहले तोला करेंगे, तोला करने के बाद कि वो लगाने का लायक हो जाएगा तो खेत को उसको कदा करेंगे। कदा करने के बाद उसको मतलब प्लेन करेंगे, प्लेन करने के बाद उसको लगाएंगे। लगाने के बाद पहले सबसे पहले तो वो यूरिया डाई वो सब देंगे, उसके बाद लगाएंगे
4: जी। और फिर उसके बाद किस तरह से करते हैं?
5: लगाने के बाद जैसे कि वो घास सब निकलता है, बड़ा हो जाएगा, उसके बाद जब घास सब निकलता है, निकलेगा ना, घास सब को निकालेंगे जैसे कि वो धान ठीक से निकल सके।
4: हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, जितना भी घास उगाते हैं उसको हटाना बहुत जरूरी है, तो इससे जो पौधा है वो भी सही तरह से नहीं बढ़ पाता है।
5: नहीं बढ़ पाएगा।
4: और ये सबको साफ करना बहुत ही जरूरी है।
5: हाँ, बहुत जरूरी है, नहीं तो धान को होने नहीं देगा, बड़ा होने ठीक से फसल भी नहीं होगा।
4: हाँ, हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें धान फसल में किसी तरह का रोग लगता है और रोग से बचाव के लिए क्या उपाय करते हैं?
5: वैसे तो पहले तो नहीं लगता था, तो अभी आजकल तो यही लगता ही है।
4: अच्छा।
5: हाँ, लगता ही है रोग सब।
4: तो इसमें किस तरह का रोग लगता है?
5: जैसे कि वो पत्ता सब खाता है, वो क्या बोल सफेद सफेद टाइप का हो जाता है।
4: अच्छा।
5: हाँ।
4: अच्छा, वो छोटे छोटे कीट सब।
5: हाँ,
4: वो सब खाते हैं। तो इसके लिए कुछ आप अपना देसी उपचार कुछ करते हैं?
5: वैसे तो देसी उपचार तो नहीं करते हैं, लेकिन बाजार से कुछ दवा देता है, तो दवा का नाम तो नहीं बोल पा रहे हैं, तो उसी को मिलाते हैं पानी में। पानी मिलाने के बाद उसको स्प्रे करते हैं।
4: अच्छा।
5: हाँ, यानी कि वो कीटनाशक सब वो मर जाए।
4: धान फसल की खेती से आपको किस तरह का लाभ मिल रहा है?
5: मिल ही रहा है, मतलब कि वो जैसे कि खरीदना भी नहीं पड़ रहा है, ज़्यादा ही लाभ मिल रहा है।
4: बिल्कुल। और इसकी खेती लगभग आप कब से कर रहे हैं?
5: वैसे तो हम लोग क्या बोलेंगे, मेरा पापा लोग कर रहा था, उसी से ही हम लोग कर रहे हैं, पहले कर रहा था।
4: अच्छा।
5: उसके साथ साथ हम लोग भी कर रहे हैं।
4: बिल्कुल, बहुत अच्छा है। मतलब घर से ही आपके पिता कर रहे थे, उसके बाद अभी आप इस कार्य को आप भी कर रहे हैं,
5: उसी के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं।
4: बहुत अच्छा। फिर ये जो धान फसल की कटाई है वो कब से प्रारंभ कर देते हैं?
5: वो अक्टूबर नवंबर से प्रारंभ करते हैं, यानी कि वो

0: हम लोग से ही कटाते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, आदमी से ही, मशीन से नहीं करते।
1: अच्छा, मशीन से नहीं करते, खुद से ही करते हैं।
0: खुद से ही करते हैं। उसके बाद धान कटाने के बाद उसको जैसे बिना जैसे बनाते हैं, उसके बाद उसको ट्रैक्टर की मदद से घर लेके आएंगे।
1: अच्छा। और खेती के अलावा और आप किस तरह की बागवानी करते हैं?
0: हाँ, वैसे तो वही साग सब जैसे कि कलम साग बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, वही सब हम लगाते हैं। उसी को जैसे कि उसी को लगाने के लिए सबसे पहले बीज मिलता है। बीज मिलता है तो उसको सबसे पहले पानी में डुबाते हैं, वो अंकुर हो जाएगा तो जो लाइन लाइन करके देते हैं
1: जी।
0: लेने देने के बाद उसके बाद पानी देते हैं, मतलब रोज देना पड़ेगा।
1: अच्छा।
0: सुबह शाम देना पड़ेगा। अंकुर तो हुआ है तो बड़ा होने के लिए टमाटर में सोयसा भी लगाते हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे कि वो टमाटर लगाते हैं उसी का भी तोला करते हैं, उसी को जैसे कि लाइन लाइन उसी गड्ढा जैसे बनाना पड़ता है। उसके बाद खाद डालते हैं। खाद डालने के बाद वो यूरिया डाई सब देते हैं जैसे कि वो बड़ा हो जाए जल्दी, उसके बाद लगाते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, उसके बाद लगाने के बाद एक सप्ताह जैसे होगा उसके बाद फिर से और देते हैं यूरिया डाई सब, यानी कि और खुशी आते हैं हम लोग बोलते हैं।
1: अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: यही संदेश देना चाहिए कि ऐसे ही पालन करना चाहिए धान को, फसल उगाने के लिए खेत का बहुत जरूरी है, तो इसको अच्छा तरह से खेती करना चाहिए ताकि अच्छा फसल उग सके।
1: बिल्कुल। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है, खेत की तैयारी तो बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, तभी जो फसल का उत्पादन है वो भी अच्छा
0: अच्छी तरह से निकलेगा
1: होगा। धान फसल के लिए खेत की तैयारी, इस विषय में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए हम आपका पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जोहार।
0: जोहार।
2: किसान मानधन

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रस्तावना, जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है। जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समुन्दर का जलस्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पहले से ही भारत, भूटान और श्रीलंका में साझा किया

0: जा रहा है। इसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने आप को बदलती जलवायु के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अधिक जानिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हम सभी के लिए जलवायु के बारे में जानना बेहद जरूरी है।
1: किसान भाई बहनों, इसी संदेश के साथ कार्यक्रम किसानवाणी अब यहीं संपन्न होता है। आपसे पुनः मुलाकात होगी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आशा मिनी गोप को दीजिए विदा। जोहार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और कुछ ही पलों में समाचार के लिए आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। राज्य सरकार ने झारखंड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित सुशासन और डिजिटल नवाचार का राष्ट्रीय मॉडल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन के आखिरी दिन आज राज्य सरकार ने विजन 2050 और प्रस्तावित AI नीति 2026-31 का विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत किया। इसके तहत अगले 5 वर्षों में 1,150 करोड़ रुपए के निवेश से राज्य में AI आधारित डिजिटल इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने राज्य सरकार पर निवेश के लिए उपयुक्त माहौल बनाने में असफल रहने का आरोप लगाया है। श्री वर्मा ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्टार्टअप इंडिया में राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने ट्रेजरी घोटाले को लेकर भी राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी PM सूर्य घर योजना का उद्देश्य घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर लोगों को मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना का लाभ झारखंड और बिहार के लोगों तक पहुंचाने के लिए आज हजारीबाग में सांसद मनीष जायसवाल ने फ्रेंचाइजी केंद्र का उद्घाटन किया। झारखंड उच्च न्यायालय में आज JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षाफल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति MS सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी को किसी तरह की राहत नहीं देते हुए याचिका खारिज कर दी। रांची में आयोजित 39वें राष्ट्रीय अंडर-9 ओपन और गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप के 6ठे राउंड के ओपन मुकाबले में आज अयांस ने सिद्धार्थ अनुज, जोहान ने जिनसन, रयान ने आरव रवि और श्रेयांस दास ने अर्जुन को पराजित किया। वहीं दिनेश और शफीक के बीच का मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। दूसरी ओर गर्ल्स मुकाबलों में नंदी प्रीतिका ने अनवी, अर्षिता ने अदीना, अंशिता ने इशी सिंह, पविष्णा ने अरावा और सयाद ने आस्था को शिकस्त दी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं आइए सुनते हैं बंगला कार्यक्रम सात रंग।

0: मन भी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल
5: कीजिए आजार इधर चलकापन बांचा ओना इधर थुती बन अंजुमा।
6: ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱚᱸ ᱞᱚᱞᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱥᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱰᱷᱚᱲᱟ ᱰᱷᱤᱯᱟᱹ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ, ᱜᱟᱥ ᱯᱟᱞᱦᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱭᱮᱱᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱟᱜ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱥᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱰᱷᱚᱲᱟ ᱰᱷᱤᱯᱟᱹ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ, ᱜᱟᱥ ᱯᱟᱞᱦᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱭᱮᱱᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱮᱞᱮ ᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱥᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱰᱷᱚᱲᱟ ᱰᱷᱤᱯᱟᱹ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ, ᱜᱟᱥ ᱯᱟᱞᱦᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱭᱮᱱᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱮᱞᱮ ᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱥᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱰᱷᱚᱲᱟ ᱰᱷᱤᱯᱟᱹ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ, ᱜᱟᱥ ᱯᱟᱞᱦᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱭᱮᱱᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱮᱞᱮ ᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱥᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱰᱷᱚᱲᱟ ᱰᱷᱤᱯᱟᱹ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ, ᱜᱟᱥ ᱯᱟᱞᱦᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱭᱮᱱᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱮᱞᱮ ᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱥᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱰᱷᱚᱲᱟ ᱰᱷᱤᱯᱟᱹ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ, ᱜᱟᱥ ᱯᱟᱞᱦᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱭᱮᱱᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱮᱞᱮ ᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱥᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱰᱷᱚᱲᱟ ᱰᱷᱤᱯᱟᱹ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ, ᱜᱟᱥ ᱯᱟᱞᱦᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱭᱮᱱᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱮᱞᱮ ᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱥᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱰᱷᱚᱲᱟ ᱰᱷᱤᱯᱟᱹ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ, ᱜᱟᱥ ᱯᱟᱞᱦᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱭᱮᱱᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱮᱞᱮ ᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱥᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱰᱷᱚᱲᱟ ᱰᱷᱤᱯᱟᱹ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ, ᱜᱟᱥ ᱯᱟᱞᱦᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱭᱮᱱᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱮᱞᱮ ᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱥᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱰᱷᱚᱲᱟ ᱰᱷᱤᱯᱟᱹ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ, ᱜᱟᱥ ᱯᱟᱞᱦᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱭᱮᱱᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱮᱞᱮ ᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱥᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱰᱷᱚᱲᱟ ᱰᱷᱤᱯᱟᱹ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ, ᱜᱟᱥ ᱯᱟᱞᱦᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱭᱮᱱᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱮᱞᱮ ᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱥᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱰᱷᱚᱲᱟ ᱰᱷᱤᱯᱟᱹ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ, ᱜᱟᱥ ᱯᱟᱞᱦᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱭᱮᱱᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱮᱞᱮ ᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱥᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱰᱷᱚᱲᱟ ᱰᱷᱤᱯᱟᱹ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ, ᱜᱟᱥ ᱯᱟᱞᱦᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱭᱮᱱᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱮᱞᱮ ᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱥᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱰᱷᱚᱲᱟ ᱰᱷᱤᱯᱟᱹ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ, ᱜᱟᱥ ᱯᱟᱞᱦᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱭᱮᱱᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱮᱞᱮ ᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱥᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱰᱷᱚᱲᱟ ᱰᱷᱤᱯᱟᱹ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ, ᱜᱟᱥ ᱯᱟᱞᱦᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱭᱮᱱᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱮᱞᱮ ᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱥᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱰᱷᱚᱲᱟ ᱰᱷᱤᱯᱟᱹ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ, ᱜᱟᱥ ᱯᱟᱞᱦᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱭᱮᱱᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱮᱞᱮ ᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱥᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱰᱷᱚᱲᱟ ᱰᱷᱤᱯᱟᱹ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ, ᱜᱟᱥ ᱯᱟᱞᱦᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱭᱮᱱᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱮᱞᱮ ᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱥᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱰᱷᱚᱲᱟ ᱰᱷᱤᱯᱟᱹ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ, ᱜᱟᱥ ᱯᱟᱞᱦᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱭᱮᱱᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱮᱞᱮ ᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱥᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱰᱷᱚᱲᱟ ᱰᱷᱤᱯᱟᱹ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ, ᱜᱟᱥ ᱯᱟᱞᱦᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱭᱮᱱᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱮᱞᱮ ᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱥᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱰᱷᱚᱲᱟ ᱰᱷᱤᱯᱟᱹ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ, ᱜᱟᱥ ᱯᱟᱞᱦᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱭᱮᱱᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱮᱞᱮ ᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱥᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱰᱷᱚᱲᱟ ᱰᱷᱤᱯᱟᱹ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ, ᱜᱟᱥ ᱯᱟᱞᱦᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱭᱮᱱᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱮᱞᱮ ᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱥᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱰᱷᱚᱲᱟ ᱰᱷᱤᱯᱟᱹ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ, ᱜᱟᱥ ᱯᱟᱞᱦᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱭᱮᱱᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱮᱞᱮ ᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱥᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱰᱷᱚᱲᱟ ᱰᱷᱤᱯᱟᱹ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ, ᱜᱟᱥ ᱯᱟᱞᱦᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱭᱮᱱᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱮᱞᱮ ᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱥᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱰᱷᱚᱲᱟ ᱰᱷᱤᱯᱟᱹ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ, ᱜᱟᱥ ᱯᱟᱞᱦᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱭᱮᱱᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱮᱞᱮ ᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱥᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱰᱷᱚᱲᱟ ᱰᱷᱤᱯᱟᱹ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ, ᱜᱟᱥ ᱯᱟᱞᱦᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱭᱮᱱᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱮᱞᱮ ᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱥᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱰᱷᱚᱲᱟ ᱰᱷᱤᱯᱟᱹ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ, ᱜᱟᱥ ᱯᱟᱞᱦᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱭᱮᱱᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱮᱞᱮ ᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱢᱮᱫᱚ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮ ᱤᱠᱳᱱᱤᱠ ᱡᱚᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱢᱮᱫᱚᱜ ᱵᱟᱝ ᱰᱷᱮᱨᱚᱜᱼᱟ, ᱢᱮᱫ ᱟᱨᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱮᱞᱟᱰᱳᱱᱟ ᱡᱚᱢ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ, ᱢᱮᱫ ᱡᱮᱨᱟᱜᱚᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱞᱯᱷᱟᱨ ᱡᱚᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱡᱮᱨᱟᱜ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ, ᱢᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱰᱷᱮᱨ ᱢᱮᱫ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱤᱭᱩᱯᱷᱨᱮᱥᱤᱭᱟ ᱡᱚᱢ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ, ᱛᱷᱚᱯ ᱨᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱤᱭᱩᱯᱷᱨᱮᱥᱤᱭᱟ ᱵᱤᱥ ᱛᱷᱚᱠ, ᱡᱤᱱᱥᱤᱱ ᱵᱤᱥ ᱛᱷᱚᱠ ᱟᱨ ᱨᱩᱴᱟᱹ ᱵᱤᱥ ᱛᱷᱚᱠ ᱪᱩᱣᱟᱹ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱟᱨ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱛᱷᱚᱯ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱢᱮᱫ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱨᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱤᱯᱟᱹᱨ ᱥᱟᱞᱯ, ᱟᱨᱡᱮᱱᱴᱟᱢ ᱱᱮᱴᱤᱠᱟᱢ ᱮᱢᱟᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ, ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱚᱡᱼᱟ, ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱢᱮ ᱰᱟᱭᱨᱤᱭᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱭᱜᱟᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱠᱚᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱤᱡᱩ ᱤᱫᱤᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱛᱤᱡᱩ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱭ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱦᱩᱰᱤᱧᱟ, ᱢᱮᱫ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜᱼᱟ, ᱱᱩᱭ ᱛᱤᱡᱩ ᱫᱚ ᱫᱷᱩᱲᱤ, ᱚᱡᱽᱨᱟ ᱫᱟᱜ ᱟᱨ ᱚᱡᱽᱨᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱚᱡᱽᱨᱟ ᱛᱤᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱡᱤᱱᱤᱥᱮᱢ ᱥᱟᱵᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱡᱤᱱᱤᱥᱨᱮ ᱨᱚᱭ ᱟᱵ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱫᱚ ᱧᱟᱧᱟᱢᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱧᱟᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱫᱟᱜ ᱜᱮ ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ, ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱷᱟᱣ ᱫᱟᱜ ᱜᱮ ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱟᱨ ᱵᱩᱞᱩᱝ ᱚᱰᱚᱠ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱜᱞᱩᱠᱳᱡᱽ, ᱫᱟᱜ ᱟᱨ ᱨᱟᱱ ᱢᱩᱨᱜᱟᱹᱱ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱚᱡ ᱦᱚᱸᱭ ᱜᱚᱡ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱰᱟᱭᱨᱤᱭᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱪᱷᱚᱱ ᱨᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱲᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱷᱟᱣ ᱡᱷᱟᱲᱟᱢ ᱫᱟᱜ ᱛᱮᱛᱟᱝ, ᱢᱮᱫ ᱵᱚᱞᱚᱠᱚᱜᱼᱟ, ᱞᱤᱢᱤᱴᱤᱵ ᱪᱮᱯᱚᱜᱼᱟ, ᱢᱚᱪᱟ ᱟᱞᱟᱝ ᱨᱚᱦᱚᱲᱚᱜᱼᱟ, ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱟᱲᱟᱜ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱵᱟᱝᱜᱮ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜᱼᱟ, ᱱᱟᱹᱲᱠᱟᱹ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱨᱮ 140 ᱫᱷᱟᱣ ᱜᱟᱱ ᱟᱨ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱠ ᱥᱟᱦᱮᱫ ᱢᱤᱫ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱨᱮ 40-60 ᱫᱷᱟᱣ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱟᱨ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱜᱮᱞᱟ

0: ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱨᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨᱥᱤᱱᱤᱠᱟᱢ ᱵᱷᱮᱨᱮᱴᱨᱟᱢ ᱮᱞᱵᱟᱢ ᱮᱞᱳ ᱯᱨᱚᱴᱤᱱ ᱯᱤᱜ ᱨᱤᱭᱩᱢ ᱯᱳᱰᱳ ᱢᱟᱨᱠᱩᱨᱤᱭᱟᱥ ᱠᱟᱞᱠᱟᱨᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱯᱷᱚᱥᱯᱷᱚᱨᱟᱥ ᱮᱢᱟᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱥᱩᱞ ᱡᱷᱟᱲᱟᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱞᱟᱡ ᱦᱟᱹᱥᱩᱣᱟ ᱛᱚᱯᱟᱜᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱫᱚ ᱢᱚᱴᱟ ᱞᱟᱡ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱹᱞᱤ ᱢᱚ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱞᱟᱡ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱥᱟᱶ ᱵᱟᱦᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱥᱩᱱᱩᱡ ᱢᱮᱥᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱨᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱨᱥᱚᱞ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱢᱚᱴᱟ ᱞᱟᱡ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱜᱷᱟᱣ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱡ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱥᱟᱶ ᱵᱟᱦᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱢᱟᱭᱟᱝ ᱢᱮᱥᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱨᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱨᱥᱚᱞ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱥᱩᱱᱩᱡ ᱢᱮᱥᱟ ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱫᱚ ᱥᱩᱞ ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱭᱟᱝ ᱢᱮᱥᱟ ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱭᱟᱝ ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱮᱥᱤᱞᱟᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱢᱤᱵᱤᱠ ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱤᱱ ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱫᱚ ᱵᱮᱥᱤᱞᱤ ᱟᱨ ᱟᱢᱤᱵᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱛᱤᱡᱩ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱨᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱮᱠᱳᱱᱟᱭᱤᱠ ᱯᱷᱮᱨᱟᱢᱯᱷᱳᱥ ᱟᱨᱥᱮᱱᱤᱠ ᱵᱮᱠᱴᱮᱨᱤᱭᱟ ᱢᱟᱨᱠᱳᱨ ᱢᱟᱨᱥᱚᱞ ᱯᱞᱚᱥᱤᱱ ᱱᱟᱠᱥ ᱵᱷᱩᱢᱤᱠᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱞᱯᱷᱟᱨ ᱮᱢᱟᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱴᱟᱭᱯᱷᱮᱰ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱫᱚ ᱮᱥ ᱴᱟᱭᱯᱷᱳᱥᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱᱤᱡ ᱢᱤᱫ ᱛᱤᱡᱩ ᱤᱫᱤᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱩᱭ ᱛᱤᱡᱩ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱵᱚᱞᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱯᱩᱱ ᱢᱟᱦᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱡᱟᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱦᱟᱹᱥᱩᱣᱟ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱵᱟᱝ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱚᱜᱼᱟ ᱠᱷᱩᱜ ᱩᱞᱟᱹ ᱫᱚᱭᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱠᱟ ᱚᱠᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱸ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱭᱟᱝ ᱦᱚᱸ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜᱼᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹ 102 ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱ 104-5 ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱯᱩᱥᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱚᱰᱚᱝᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱫᱚ 3 ᱦᱟᱴ ᱠᱷᱚᱱ 1 ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨ ᱠᱚᱢᱡᱳᱨᱚᱜᱼᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱟᱹᱪᱩ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱨᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱭᱯᱷᱚᱰᱤᱱᱟᱢ ᱵᱮᱯᱴᱮᱨᱤᱭᱟ ᱟᱨᱱᱤᱠᱟ ᱨᱟᱥᱴᱟᱨ ᱵᱨᱟᱭᱳᱱᱤᱱᱟ ᱵᱮᱞᱟᱰᱳᱱᱟ ᱞᱮᱠᱮᱥᱤᱥ ᱚᱯᱤᱭᱟᱢ ᱟᱨ ᱦᱮᱥᱟᱭᱢᱟᱥ ᱮᱢᱟᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱢᱮᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱫᱚ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱯᱷᱤᱢᱮᱞ ᱮᱱᱳᱯᱷᱤᱞ ᱢᱚᱥᱠᱤᱴᱳ ᱜᱮᱨ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱧᱟᱢᱟ ᱱᱩᱭ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱫᱚ ᱚᱡᱽᱨᱟ ᱫᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱩᱯᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱟᱨᱮᱡ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱩᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱛᱚᱸᱵᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱚᱪᱚᱭ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱟᱨᱮᱡ ᱫᱷᱚᱲᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱤᱡᱤᱴᱤ ᱯᱷᱚᱪᱚᱨ ᱚᱪᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱡᱚᱜ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱡᱷᱟᱹᱞᱤᱛᱮ ᱴᱚᱯᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱢᱮᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱫᱚ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤᱛᱮᱢ ᱩᱭᱠᱚᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱵᱟᱭ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ ᱛᱷᱟᱨᱛᱷᱟᱨᱟᱣᱛᱮ ᱯᱟᱨᱠᱚᱢ ᱜᱟᱛᱮᱜ ᱦᱤᱞᱟᱹᱣ ᱛᱚᱨᱚᱜᱼᱟ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱦᱟᱹᱥᱩᱣᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ 103 ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱ 105 ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹᱛᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱩᱛᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟ ᱞᱚᱞᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱟᱞᱵᱟᱞᱟᱣ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱡ ᱠᱟᱹᱡᱛᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱪᱟᱵᱟ ᱤᱫᱤᱜᱼᱟ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱴᱷᱤᱠ ᱢᱤᱫ ᱚᱠᱛᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱫᱤᱱ ᱪᱷᱟᱰᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱰᱟᱸᱰᱟ ᱟᱨ ᱠᱷᱚᱸᱡᱟ ᱠᱷᱚᱸᱡᱟ ᱦᱟᱹᱥᱩᱣᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱩᱞᱟᱹ ᱟᱨ ᱫᱚᱭᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱢᱤᱫ ᱦᱟᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱨ ᱦᱟᱴ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱰᱷᱮᱨ ᱫᱤᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨ ᱠᱚᱢᱡᱳᱨᱚᱜᱼᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱟᱹᱪᱩ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱨᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱭᱱᱟ ᱤᱪᱤᱠᱟᱥ ᱟᱨᱥᱤᱱᱤᱠᱟᱢ ᱵᱨᱟᱭᱳᱱᱤᱭᱟ ᱤᱭᱩᱯᱮᱴᱳᱨᱤᱭᱟᱢ ᱯᱟᱨᱯ ᱱᱮᱴᱨᱟᱢᱤᱭᱩᱨ ᱡᱮᱞᱥᱮᱢᱤᱭᱟᱢ ᱪᱤᱱᱱᱟᱢ ᱥᱟᱞᱯ ᱟᱨ ᱪᱤᱱᱱᱟᱢ ᱟᱨ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱦᱟᱡᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱭᱵᱨᱳ ᱠᱚᱞᱮᱨᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱᱤᱡ ᱢᱤᱫ ᱛᱤᱡᱩ ᱤᱫᱤᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹᱨᱮ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱫᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱫᱟᱜ ᱜᱮ ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱥᱟᱶᱨᱮ ᱩᱞᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱨᱟᱪᱟ ᱥᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱟᱜ ᱟᱸᱡᱮᱫ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱜᱞᱩᱠᱳᱡᱽ ᱥᱟᱞᱟᱭᱤᱱ ᱮᱢᱚᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱨᱟᱱ ᱢᱩᱨᱜᱟᱹᱱ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱨᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱷᱮᱨᱟᱴᱨᱟᱢ ᱮᱞᱵᱟᱢ ᱠᱩᱯᱨᱟᱢ ᱠᱮᱢᱯᱷᱚᱨ ᱠᱟᱨᱵᱳᱵᱷᱮᱥ ᱯᱳᱰᱳᱯᱷᱟᱭᱞᱤᱱ ᱮᱢᱟᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱟᱜ ᱫᱚ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱠᱩᱧ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱢᱮ ᱪᱟᱯᱟᱠᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱵᱮᱥᱟ ᱠᱩᱧ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱠᱞᱳᱨᱤᱱ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱵᱞᱤᱪᱤᱝ ᱯᱟᱣᱰᱟᱨ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱚᱨᱚᱢ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱷᱟᱹᱱᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮ ᱟᱹᱜᱩᱭᱢᱟ ᱫᱟᱠᱟ ᱩᱛᱩ ᱦᱚᱸ ᱞᱚᱞᱚ ᱡᱚᱢ ᱜᱮ ᱵᱮᱥᱟ ᱨᱚᱠᱟ ᱫᱟᱠᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱹᱨᱤ ᱫᱟᱠᱟ ᱫᱟᱜ ᱫᱟᱠᱟ ᱩᱛᱩ ᱮᱢᱟᱱ ᱵᱮᱥ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱢᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱨᱚ ᱟᱞᱚᱭ ᱟᱵ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟ ᱟᱲᱟᱜ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚᱢ ᱡᱚᱢ ᱢᱟ ᱫᱟᱜ ᱟᱨ ᱛᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱜᱚᱨᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱩᱭᱢᱟ ᱟᱲᱟᱜ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱡᱚ ᱮᱢᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱤᱥᱤᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱵᱮᱥ ᱥᱟᱺᱦᱤᱡ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱵᱽᱨᱟ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱢᱟᱫᱮᱨᱮ ᱜᱤᱰᱤᱭᱢᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱩᱨ ᱰᱷᱚᱰᱟ ᱫᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱛᱤᱡᱩ ᱜᱚᱡ ᱨᱟᱱ ᱟᱨ DDT ᱮᱢᱟᱱ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱱᱤᱡᱮᱨ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱟᱹᱛᱩ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱩᱨ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱵᱮᱥ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱤᱣᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱡᱟᱨ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱥᱩᱛᱩᱨ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱥᱚᱢᱵᱷᱚᱵ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ
1: ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱢᱚᱦᱮᱱᱫᱨᱚ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱟᱡᱟᱨ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ
2: सही राहें ना अपनाओ बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ
3: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गयी है
4: ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱚᱲᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚ ᱵᱚᱱᱢᱟ ᱤᱧ ᱟᱢᱨᱮᱱ ᱵᱮᱴᱟ ᱠᱨᱟᱱᱛᱤ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱯᱚᱨᱤᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱨᱮ ᱵᱚᱞᱮ ᱥᱚᱵ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱟᱯᱟᱥ ᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱷᱟᱨᱟᱨᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱞᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱟᱞᱮ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱡ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱤᱭᱟᱹ
5: ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ আরকি থানা তো জঙ্গল দেওয়া হতো আউকা কাহা মানে আহে হলো আউকা ই জিন্দা হেন মানে জিন্দা হয় কই কম আমরা শুনে পারলি ওহ চলতে একদম আমরা পুরো একদম এখন তো তুমি ঠিক হয়ে হই না তো

0: cura, bro, patan mo tong ito may cura. Pinuli na bagay ato kayo, pinuli na si Arfi ko lo, pulis ko lo, yung laray, chalawa tamo. Buru lang ko yan, dabo, jay tere kakagin ko, ulubo ko ko, kakunal mo yan.
1: Alam mo na si rin tete, apin na ka na lang siya. Aja, hura rin mo na hiro, dito hura rin mo hiro. Pagbugin mo rate, sasan ka eh. Iwagay mo ta huraan ka. Ali, ayan ito yung kayo na mula, apin na ka.
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख दो बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
3: उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
4: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की। खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे, लगता था ऐसे ही चलेगा। पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी, आयुष्मान वह वंदना कार्ड से। आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के हकदार।
5: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वह वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
6: पश्चिमी सिंहभूम जिले रे उनकान आयमा गिद्रे को मेना कोआ जहाँ रिन आयो बाबा बनू कोआ आर बखान आयो बाबा मेना कोआ मेनखान किछि कारण ते उनकु बाको नियल दड़े।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संथाली में कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और इस समय शाम के 6:55 हो रहे हैं। आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय नेशनल स्टैक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन में झारखंड सरकार ने प्रस्तुत किया रोडमैप। 1150 करोड़ का निवेश रोडमैप तैयार। राज्य में SIR की प्रक्रिया जारी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया, अब तक 82% से अधिक मतदाताओं का हुआ मैपिंग। रथ मेले की तैयारियां तेज। पुलिस महानिदेशक ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती का दिया निर्देश। नेता प्रतिपक्ष से मिले RIMS-2 निर्माण से प्रभावित रैयत, समस्याओं से कराया अवगत। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को घेरा। और सरायकेला खरसावा जिले में CISCI जोनल कबड्डी प्रतियोगिता शुरू। कोल्हान प्रक्षेत्र के 16 विद्यालयों के लगभग 800 विद्यार्थी ले रहे हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने झारखंड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित सुशासन और डिजिटल नवाचार का राष्ट्रीय मॉडल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन का आखिरी दिन आज राज्य सरकार ने विजन 2050 और प्रस्तावित AI नीति 2026-31 का विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत किया। इसके तहत अगले 5 वर्षों में 1,150 करोड़ रुपए के निवेश से राज्य में AI आधारित डिजिटल इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने राज्य सरकार पर निवेश के लिए उपयुक्त माहौल बनाने में असफल रहने का आरोप लगाया है। श्री वर्मा ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी स्टार्टअप इंडिया में राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने ट्रेजरी घोटाले को लेकर भी राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया।
1: प्रदेश में किस तरह से इन्वेस्टमेंट के नाम पर राज्य सरकार या ये कहें कि मुख्यमंत्री जी झारखंड की जनता को बेवकूफ लगातार बनाने का काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि अगर सबसे बड़ा धोखा कोई एक होता है तो वो होता है सपना दिखाना और फिर उस सपने को तोड़ देना।
0: राज्य में इन दिनों मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत BLO द्वारा मतदाताओं से e-numeration फॉर्म भरवाया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि वर्तमान में 82% से अधिक मतदाताओं का मैपिंग कार्य पूरा कर लिया गया है। इधर राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की है।
2: BLO को जो कार्य करना चाहिए वो घर घर जाने में असमर्थ हैं। साथ ही साथ जिस बूथ के BLO हैं वहीं पर आम मतदाता को बुला करके फॉर्म देने का काम कर रहे हैं। आयोग का ये कहना है अगर BLO पर सख्ती नहीं किया गया जो SIR का जो सपना है हमको नहीं लगता है कि वो पूरा होता हुआ दिख रहा है।
0: ऐतिहासिक जगन्नाथ पुर रथ मेले के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी है। पुलिस महानिदेशक DGP तदाशा मिश्रा की अध्यक्षता में आज रांची में मेले के सफल आयोजन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में DGP ने अधिकारियों को मेला क्षेत्र तथा रथ यात्रा मार्ग पर निगरानी बढ़ाने, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करने और महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित

0: सुरक्षित करने का निर्देश दिया।
1: पारंपरिक व्यवस्था है, वो लग रही है सीसीटीवी रहेंगे, फोर्स रहेगा, लाइट बिजली पानी सबकी व्यवस्था रहेगी, और उसमें कोई चीज इमरजेंसी होगा तो उसको भी देखने के लिए हम लोग हैं। मेडिकल कैंप्स रहेंगे, वुमेन सेफ्टी के लिए हम लोग महिला पुलिस तैनात रखते हैं।
0: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर योजना का उद्देश्य घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर लोगों को मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना का लाभ झारखंड और बिहार के लोगों तक पहुंचाने के लिए आज हजारीबाग में सांसद मनीष जायसवाल ने फ्रेंचाइजी केंद्र का उद्घाटन किया। मौके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस योजना का लाभ लेकर लोग बिजली बिल देने से मुक्त हो सकते हैं और सोलर पैनल से उत्पादित बिजली बेचकर आर्थिक रूप से संपन्न भी हो सकते हैं।
2: पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से 10 किलोवाट तक का जो है सोलर पैनल इन्वर्टर के साथ आपके घर पे लगाने का प्रोविजन है, जिसमें केंद्र सरकार से आपको 78,000 रुपए का सब्सिडी मिल जाता है। 78,000 का आपको सब्सिडी मिलता है। इसके दो फायदे हैं, एक तो आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा और दूसरा फायदा है कि जो पावर कट का झंझट जो है उससे भी आप मुक्त कर पाएंगे।
0: झारखंड उच्च न्यायालय में आज जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षा फल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी को किसी तरह की राहत नहीं देते हुए याचिका खारिज कर दी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से आज रिम्स 2 निर्माण से प्रभावित रैयत और ग्रामीणों ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री मरांडी को समस्याओं से अवगत कराया और सहयोग की अपील की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण को लेकर राज्य सरकार हठधर्मिता पर अड़ी है। श्री मरांडी ने कहा कि बेकार पड़ी बंजर भूमि पर रिम्स 2 का निर्माण होना चाहिए।
3: जिद पर सरकार अड़ी हुई है, जिस जनता को आज वो उजाड़ रही है वही लोग आने वाला सरकार को लोग उजाड़ देगी। और यहाँ खेती की जमीन आदिवासियों की है और आप हॉस्पिटल के नाम से जबरदस्ती आप उसको छीन रहे हैं। लोग विरोध कर रहे हैं, लोग लोगों से मिल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि भाई सभी पॉलिटिकल पार्टी को और राज्य की जनता को भी ऐसे लोगों को साथ दीजिए।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जमीन कारोबारी कमलेश कुमार सिंह की लगभग 66 एकड़ जमीन जब्त कर ली है। गौरतलब है कि ईडी ने जमीन कारोबारी द्वारा जमीन की खरीद बिक्री की जांच के दौरान यह पाया था कि वह कांके और नगड़ी अंचल में 66 एकड़ जमीन में से कुछ का फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच दिया है। इससे पहले जांच के बाद कारोबारी सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और जांच जारी है। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने आज 78वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान रांची के मोराबादी स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मौके पर अधिवक्ता राजेश कृष्णन ने कहा कि ABVP का इतिहास गौरवशाली रहा है और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है।
4: आज अगर देश हमारा जिस जगह पर खड़ा है, मुझे ये लगता है कि इसमें सबसे बड़ा हक और योगदान ABVP है। इसका सामाजिक संस्थान, इसका नेशनल इंटीट्यूशन और सामाजिक संरचना में उसी जो दंगता रही गहरे विचार से आज समाज का हर व्यक्ति हर कौन विकास की ओर जा रहा है।
0: उधर हजारीबाग में ABVP के स्थापना दिवस पर मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। रांची महानगर कांग्रेस छात्रों की गूंज मुहिम के तहत 12 जुलाई को रांची में छात्र मैराथन का आयोजन करेगा। मोराबादी मैदान में आयोजित इस मैराथन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में छात्र हिस्सा लेंगे।

0: संगठन के संयोजक कुमार राजा ने अधिक से अधिक छात्रों को इसमें शामिल होने की अपील की है।
1: कैंपेन का मंशा ही यही है, उनको बताएं कि किस तरीके से उनके भविष्य के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, हम चिंतित हैं और आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आपको पेपर लीक मुक्त परीक्षा मिले। दूसरा है भर्ती परीक्षा का भी कैलेंडर आए और छात्र को पता रहे कि किस समय पे कौन सी परीक्षा होने वाली है जिससे उसको भी नौकरी में भर्ती मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया अभियान की परिकल्पना को जमीनी स्तर पर साकार करते हुए सरायकेला खरसावां जिले के जेवियर स्कूल परिसर में आज से CISCI जोनल कबड्डी प्रतियोगिता शुरू हुई। दो दिवसीय इस खेल महाकुंभ में कुल्हान प्रक्षेत्र के 16 विद्यालयों के लगभग 800 विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन में झारखंड सरकार ने प्रस्तुत किया रोड मैप, 1150 करोड़ का निवेश रोड मैप तैयार। राज्य में SIR की प्रक्रिया जारी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया अब तक 82% से अधिक मतदाताओं का हुआ मैपिंग। रथ मेले की तैयारियां तेज, पुलिस महानिदेशक ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा, पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती का दिया निर्देश। नेता प्रतिपक्ष से मिले रिम्स 2 निर्माण से प्रभावित रैयत, समस्याओं से कराया अवगत। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को घेरा। और सरायकेला खरसावां जिले में CISCI जोनल कबड्डी प्रतियोगिता शुरू, कोल्हान प्रक्षेत्र के 16 विद्यालयों के लगभग 800 विद्यार्थी ले रहे हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: इस अंक में आप सुनेंगे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे बोकारो संवाददाता।
1: बोकारो जिले में SIR के तहत मतदाता गणना प्रपत्र का वितरण युद्ध स्तर पर चल रहा है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने बताया, बोकारो स्टील सिटी शहरी क्षेत्र के मतदाता BLO को सहयोग नहीं कर रहे हैं। उपायुक्त ने सभी से सहयोग करने की अपील की है।
2: हमारा उद्देश्य है कि जो भी बोकारो के नागरिक हैं, कोई भी नागरिक इसमें छूटे नहीं। सभी नागरिकों से भी अपील है कि BLO को 1,000-1,200 लोगों को तक जाना है। अगर वो आपके पास जा रहे हैं, स्पेशली मैं देख रहा हूँ BS सिटी के क्षेत्र में दो दो घंटे वेट करा रहे हैं, कह रहे हैं 1 घंटे के बाद आइए, 2 घंटे बाद आइए, ऐसा मत करिए। आप उनको इंतजार मत कराइए, वो अपना सब काम छोड़कर आपके पास आए हैं आपका मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए, उसको SIR की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए।
1: बरसात के दिनों में हाथियों का झुंड भोजन की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाता है। वन पदाधिकारी संदीप सिंधे ने गोमिया प्रखंड के ग्रामीणों को खासकर रात में घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है।
3: बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में 30 हाथियों के झुंड की होने की सूचना है। ये जो झुंड है अभी फिलहाल बड़की पुन्नू गोपो पालू कुसुमडी कानीडी एरिया में पाया गया है और इनके मूवमेंट की वजह से ये छितरा भी गया है और 2-3 अलग अलग झुंड में ये देखा जा रहा है। इस झुंड में बताते चले आपको कि 2-3 गर्भवती जो हथनियाँ हैं, इस वजह से ये झुंड आक्रामक होने की संभावना है। खास तौर पर इसी वजह से एहतियात रखने की हम आपके माध्यम से ही सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि झुंड के पास ना जाए, सेल्फी लेने पास में ना जाए और जो रात के समय में भी अपने घर से बाहर ना निकले। आप कोई वन क्षेत्र में कोई गाड़ी या वाहन लेकर लाइट लेकर वहां ना जाए।
1: बोकारो स्टील सिटी के मोहन कुमार मंगलम में स्टेडियम में 18 से 27 अगस्त तक राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता होने जा रहा है। राष्ट्रीय तीरंदाज बोकारो जिला तीरंदाजी संघ की महासचिव एंजेला सिंह ने कहा, इस प्रतियोगिता से स्थानीय खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
4: बोकारो में नेशनल हो जाना, हम तो इमेजिन

0: कर सकते थे इतना दिन के बाद। हम लोग ने इस बार सर थ्रू से ट्राइब सर ने बोले कि हम लोग बोकारो कर सकते हैं, उनके अर्जुन मुंडा जी और हमारा सेक्रेटरी पूर्णिमा महतो जी ने साथ दिए, मेरे लिए तो बहुत खुशी का बात है। हम लोग झारखंड का गौरव दीपिका जी जो आ ही रही है, और जितना बेस्ट प्लेयर सब है जो हम लोग अभी ओलंपिक में जितना अभी जो खेलने गए, वर्ल्ड कप में जो मेडल जितना लोग लाए हैं सब आ रहे हैं।
1: नशा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान उपायुक्त अजय नाथ झा ने बच्चों को नशा से दूर रहने की नसीहत दी है।
2: ऐसी चीजों के प्रलोभन से दूर रहते हुए उस समय इमोशनली स्ट्रांग होते हुए और अपने लक्ष्य पर केंद्रित करते हुए कि आप देश के एक इम्पोर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स है, उस दृष्टि से आप सोचते हुए कि हमको देश के लिए कंट्रीब्यूट करना, अपने परिवार समाज के लिए कंट्रीब्यूट करना है, नशे के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये एक ऐसी चीज है कि एक बार आपने गलती से हाँ कर दिया तो निकलने का रास्ता बहुत कठिन है। इसलिए स्पष्ट रूप से हमारा मैसेज है कि नशा के खिलाफ हम सब लोग एकजुट हों।
1: पिछले दो दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से किसान खुश हैं। जिले के किसान कृषि कार्य में जुट गए हैं। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
3: अभी आप सुन रहे थे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं कार्यक्रम आपकी पसंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा का नमस्कार। श्रोताओं आप सबों के पसंद पर सुनवा रहे हैं आपको ये कार्यक्रम। हमें पत्र लिखा है सरायकेला पाड़ापुर देसावली ग्राम से पहाड़पुर से शिवम शिवाजी मुंडरी सुरमणि मुंडरी हीरामणि मुंडरी हिमांती मुंडरी डोबरो मुंडरी साजन मुंडरी सिद्धेश्वर मुंडरी डोबरो मुकेश कुशल मुंडरी जानुम सिंह मुंडरी सिद्धि बोस सोना बाबू सोना और एफएम शिवा मुंडरी सरायकेला कीता गांव से राधा कृष्ण गोप सुनीता देवी उमा कुमारी गीता देवी रीता देवी अमित गोप अंकित गोप अभिषेक गोप आशीष गोप शुभम गोप सुमित गोप विक्की सरस्वती देवी विनोद गोप राजू गोप राजन गोप माहिर गोप और आराध्या कुमारी। इन सबों के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों को। फिल्म का नाम था मेरे यार की शादी है। और अब श्रोताओं, हमारे अगले गीत को सुनना चाहा है न्यू कॉलोनी निमडी चायबासा से ठाकुर प्रसाद, रंगीला निर्मला देवी, अर्चना राम, खुशबू खुशी, अभी अनीस, अंबिका, अमित, मनीष और मुन्ना। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। तो श्रोताओं, इन सबों की पसंद है किशोर कुमार का गाया, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, आर डी बर्मन के धुन पर फिल्म प्यार का मौसम का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारे आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सबों के पसंद पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। और अब आपकी पसंद का अगला खत हमने लिया है छत्तीसगढ़ भाटापाड़ा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर का, और सेंटोला चाईबासा से भोलाराम मधुर, विनोद कुमार पवन और मीना पवन का। इन्होंने सुनना चाहा है आशा भोसले का गाया फिल्म जुनून का ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के धुन पर फिल्म सरगम का ये गीत। और श्रोताओं, इस गीत को सुनना चाहा था चांडील हारूडीह गांव से तुलसीदास महतो, मनोरमा महतो, कल्पना महतो, मनमहिनी दिनबंधु महतो। और एक पसंद करने वाले थे पटेल नगर मालोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप बेबी आरजू।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: सेना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: और इस जरूरी संदेश के बाद श्रोताओं कार्यक्रम कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सबों का फिर से स्वागत है। और अब कार्यक्रम आपकी पसंद के लिए हमें खत लिखने वाले हैं बड़ा बाम्बो सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, निशा कुमारी, प्रकाश, ललित प्रधान, श्याम देव नायक और गेलिया लोहर गांव से कोमल बेसरा, बासंती, अनु बनमाली, सीध कुमारी और पूजा। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत। तो सुनवा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में, समीर का लिखा ये गीत नदीम श्रवण के धुन पर।

0: ジオカフェ。
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: आले नगे नेहर में बोले नुकान परिस्थिति रे बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ना धरा रे नाकागी आम बोले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोर एक गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ मना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई का नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आए ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
6: मुतुम बुरन सिंह तामसाय अनिता तामसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुकूर मिनाया यापा में रियल तपा में रियल वाह बेटा मिका
7: अन्यान तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्यान हम दो कोदमरी कोड़ा उरो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा दुनिया में बुरी बुरी ने बागिया तोड़ के यूं दुना से यार की कलो पुलिस कलो उन्हीं लड़ाई चलाओ तमे दूर रंग गया तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल मिया
8: अलिंग मुनि सुरें तो ऐसे आप ही लेते ना लिंग से जा हुरा रे मिना ही रो जिता हुरा रे मिना ही रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अली आया न तुम तेरी ना मिल आप ही लेते ना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
9: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
10: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
9: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
10: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
9: डायल कीजिए 8700014242।
10: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
11: और अब श्रोताओं, इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सब का फिर से स्वागत है। और सुनिए अगला गीत। इस गीत को सुनना चाहा है खेड़िया घर मंझारी से बसंत बेकुरा, सुलोचना, हेमंत पात्रो, कौशिक कुमार पान, दीपक कुमार, रिंकी कुमारी, रूपाली कुमारी, झिम्पी कुमारी और जयमनी जयंती। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांधा, गोलू काकू और जेएस रामगढ़िया। तो सुनवा रहे हैं कुमार शानू और अलका याग्निक का गाया फिल्म ये है जलवा का ये गीत।

इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का आप सबों के पसंद पर ये कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं समाप्त होता है।

कार्यक्रम रजनीगंधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा का नमस्कार। श्रोताओं, आप सबों के फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का सबसे पहला गीत। फरमाइश की है मोहल्डिहा सोनुआ से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी वंदनी, दीपक संतोष, राहुल बिट्टू, आयुष, गीतेश, अनु तनु, डिस्को महतो और भाई नंदू महतो। मेन रोड सोनुआ से ही गुरुचरण नायक, अनुसुईया नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाकपानी प्रधान, तनुश्री प्रधान, नीलपानी प्रधान और निकपानी प्रधान, इन सबों के फरमाइश पर कातिल सिफाई का लिखा ये रचना सुनते हैं अनु मल्लिक के धुन पर, कुमार शानू का गाया। फिल्म का नाम है सर।

श्रोताओं, अभी आपने सुना अभिजीत का गाया, जावेद अख्तर का लिखा, जतिन ललित के धुन पर फिल्म यस बॉस का ये गीत। और इस गीत को सुनना चाहा था अमजोड़ा पाखुरिया पोखरिया मालुका से शिखा गोप, प्रेम गोप, संगीता गोप, दीपाली गोप और उनके परिवार के बहुत सारे लोग, चक्रधरपुर केनाल रोड से तेजस प्रधान, विवेक प्रधान, भीष्म प्रधान और सुनीता कुमारी। और अब श्रोताओं, हमारे अगले फरमाइश करता हैं भाटापाड़ा दंतरेगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। इन्होंने सुनना चाहा है कार्यक्रम रजनीगंधा में फिल्म नया दौर का ये गीत।

और अब श्रोताओं, कार्यक्रम रजनीगंधा का अगला खत है खरसवां पति साई से सुकरा नायक, मंजू नायक, गौरव नायक, जलेश्वर नायक, सोनवा गांव पोड़ाहट से मिथुन नायक, राकेश नायक, मुकेश नायक, सुखराम नायक और मखरू आचार्य। एटा रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, सरिता गौतम, अनन्या गौतम, ऐश्वर्या गौतम, श्रेय गौतम, कुश गौतम, रिंकू टिंकू और रीना, इन सबों ने फरमाइश किया है मोहम्मद रफी का गाया ये गीत।

दोस्ती फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के धुन पर। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आप सबों के फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम रजनीगंधा। और अब कार्यक्रम रजनीगंधा के लिए हमें अगला खत मिला है पोंडाकाटा से नरसी महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती सुहानी, संजय सोरेन, नंदनी, गोपाल महली, संजीव सोरेन और करीना महली का। इन सबों के फरमाइश पर सुनवा रहे हैं आपको ये गीत।

0: कहाँ है?
1: कहाँ प्यार है तुमसे, वो जाना कहाँ प्यार है तुमसे।
0: हाँ हाँ
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी का गाया हसरत जयपुरी का लिखा यह गीत शंकर जयकिशन के धुन पर फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस से।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: और अब अगला फरमाइशी खत लेते हैं। खत लिखने वाले हैं बेड़ी से हुकुम कर्मकर, सुनीता कर्मकर, हार्दिक कर्मकर, प्राची कर्मकर, तनु कर्मकर, और पुणे से पंकज बड़ोदे, आर्या बीटी बड़ोदे, चंद्रप्रभा बड़ोदे। इन सबों के फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा आज का रजनीगंधा का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। समाचारों के लिए चलेंगे आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की व्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
3: ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे।

0: निक्षय मित्र तो हम सबका आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। ये समिति IVF क्लिनिक, ART केंद्रों और गैमीट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
4: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये ऐसे युवा शोधकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जांच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में कल तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शुक्रवार को तेज वर्षा होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैरोलिना ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्टा कोच्यूक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का इच्छुक। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, this is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India and Australia adopt a joint declaration on defense and security cooperation to ensure free and open Indo-Pacific. Also ink deal for supply of uranium from Australia. Prime Minister Narendra Modi says India aspires to be one of world's top 3 economies driven by motto of grow more, achieve more, addresses Indian diaspora in Melbourne. National Commission for Women forms a high-level expert committee to review regulatory framework and laws governing IVF clinics. Government waives basic customs duty on key components used in electronic devices to promote their domestic production. Iran accuses U.S. of conducting airstrike near Bushehr nuclear power plant, attacks U.S. bases in Bahrain, Kuwait and Qatar. And in FIFA World Cup, France to face Morocco in the first quarterfinal at Boston in U.S. tonight. And now the news in detail. India and Australia today adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deal was signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said the Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia.
6: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
5: Later, briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides finalized the administrative arrangement for a long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net zero goals.
7: The two countries have similar aspirations and a shared approach to ensure a free, open and prosperous Indo-Pacific region. One of the key outcomes today, adoption of the Joint Declaration on Defense and Security Cooperation, as well as an India-Australia Maritime Security Collaboration Roadmap. We also have the administrative arrangement for enabling the supply of uranium from Australia to India.
5: The Foreign Secretary said the two leaders also reviewed progress in economic cooperation. Following the India-Australia CEO's forum, they agreed to accelerate negotiations on the Comprehensive Economic Cooperation Agreement, building on the gains achieved under the Economic Cooperation and Trade Agreement, which has led to a 55% increase in bilateral trade. India and Australia also expanded cooperation in emerging technologies through the operationalization of the Australia-India Partnership for Cyber-Critical Technologies and Supply Chains. Australia also reaffirmed its support for India's Gaganyaan human space flight mission. The two leaders also reiterated their commitment to the Quad as an important platform for regional cooperation, including counter-terrorism and disaster relief. Prime Minister Narendra Modi today said India's aspiration to become one of the world's top three economies at the earliest is driven by the motto of Grow More, Achieve More. Mr. Modi was addressing the Indian community at the Marvel Stadium in Melbourne.
6: 21st सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है हम अधीर है बेसब्र है हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप थ्री इकोनॉमी बनना चाहते हैं.
5: Speaking at the Melbourne Meets Modi event, Prime Minister Modi also referred to Operation Sindoor. He said the operation demonstrated the effectiveness of India's homegrown defense systems in carrying out anti-terror operations.
6: भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में नवाचार, उच्च कौशल, रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
1: एक ओर भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकसित हो रहा देश है, दूसरी ओर दुनिया के तमाम देशों को भारत तकनीक, प्रतिभा और आगे बढ़ने के लिए उन्नत अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है, जिससे हमारे श्रोता अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम परिचित हैं। यह क्षेत्र भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र। ये वैश्विक क्षमता केंद्र वस्तुतः क्या है, किस रूप में भारत ही नहीं दुनिया में अपना योगदान दे रहे हैं, और एक ओर प्रतिभा को उचित अवसर मिल रहा है, नए नए नवाचार हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो रहा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों को आगे बढ़ने में योगदान दे रहा है। कुछ इन्हीं विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे अपने इस अंक में। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित है डॉक्टर रंजीत मेहता, सीईओ और सेक्रेटरी जनरल PHDCII। स्वागत है आपका डॉक्टर मेहता।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से आयोजित GCC बिजनेस समिट को संबोधित किया।
3: Today the greatest competitive advantage lies in generating knowledge, applying technology and solving complex problems. That's what the GCCs are. It's not as if it's the slightly upgraded version of your backroom, back off or office space, the BOPs. No, this is a completely different domain. It has a lot of technology, no doubt, but the new human intervention, human skills and the human knowledge which gets crystallized, what makes this century going to stand out in the name of GCC?
1: शुरुआत डॉक्टर साहब हम यहीं से करना चाहेंगे कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हमारी जो वैश्विक क्षमता केंद्र है वो किस रूप में योगदान दे रहे हैं, और उससे भी पहले समझना चाहेंगे आम जुबान में आम लोगों के लिए ये वैश्विक क्षमता केंद्र क्या है और किस रूप में यहाँ प्रतिभा का, तकनीक का संगम हो रहा, बड़ी कंपनियों के लिए हम उत्पाद बना रहे।
2: पिछले अगर दशक में देखें तो भारत एक बहुत ही प्रेफर्ड डेस्टिनेशन हो गया है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए। और जो इससे पहले क्या होता था, भारत में सिर्फ बैक ऑफिस लोग रखते थे, उसमें कॉल सेंटर्स ये सब आते थे, लेकिन पिछले दशक में जिस तरीके से भारत में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और नए नए जो भारत के कार्यक्रम जो कि जैसे मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, ये सारे नए नए जो कार्यक्रम आए उससे जो है एक भारत जो है एक इवॉल्व हो चुका है हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक सेंटर्स के तौर पे, जिसमें सिर्फ एक बैक ऑफिस ऑपरेशन तक ही ये सीमित नहीं है, बल्कि जिसमें रिसर्च होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, अब तो एक नया आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, इंजीनियरिंग है, फाइनेंस, फिनटेक, लीगल सर्विसेज, ऑल जो ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस हैं जिसमें जो भी चीजें यूज होती हैं, आज भारत उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हब बन चुका है। आज भारत में 1800 से ज्यादा ऐसे ग्लोबल कैपेबिलिटीज सेंटर्स हैं जिसमें कि 20 लाख से अधिक लोगों को, आज प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अगर आप देखें इसमें, जो कि भारत डेफिनेटली एक टैलेंट कैपिटल भी है, आज अगर आप देखें भारत जो है 65% जो भारत की जनता है वो 35 साल से कम उम्र के लोग हैं, तो भारत एक यंग कंट्री है, एक यंग कंट्री होने के नाते हमारे पास टैलेंट पूल है, बट टैलेंट पूल होने के साथ साथ हमने पिछले करीब दशक में देखा है कि भारत एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। आज जो भारत का आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च हुआ था तब भारत में सिर्फ करीब 300-400 रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है भारत के अंदर हैं, और भारत जो है दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप इनोवेशन की बात करते हैं, इनोवेशन कैपिटल बनाने की बात करते हैं, क्योंकि टैलेंट कैपिटल तो है ही भारत विश्व का, लेकिन एक इनोवेशन कैपिटल बनाने की दिशा में भी भारत जो है आगे

0: गया है, क्योंकि जिस तरीके से जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनने जा रहे हैं, इसमें जो है आगे चल के मैं समझता हूं आगे चल के सिर्फ एक कॉस्ट आर्बिट्रेज, क्या कॉस्ट के बेसिस पे कि भारत में लेबर सस्ती है, इस बेसिस पे ही आप अपना एक कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेज है उसको आप नहीं ले सकते। आगे चलने के लिए हमें एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट की जरूरत है, और उसमें कितना हम इनोवेशन करते हैं, कितना हम उसको ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को इसमें इंटीग्रेट करते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। और जब हम एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं उसके जो तीन मुख्य पिलर होंगे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के। पहला पिलर मैं समझता हूं एक स्किल, कि क्या हमारे पास स्किल सेट्स हैं आज भारत में। आप टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, जेनरेटिव AI आ चुका है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है, सेमीकंडक्टर है, इस साइड डेटा एनालिटिक्स है, साइबर सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी भी ऐसी एक नया एक स्टेप आ चुका है, जिससे जो है हर इंडस्ट्री अपना ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक चर्निंग हो रही है इंडस्ट्री में। क्योंकि भारत ने ऑलरेडी 2070 तक नेट जीरो होने का अपना एक कमिटमेंट कर चुके हैं। अगर आप लंबी दिशा में अगर आप देखना चाहते हैं, तो उसमें ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है जो हम करते आ रहे हैं वही सफिशियंट नहीं होगा, बल्कि इस दिशा में हमें अपने एजुकेशन को भी ले जाना है। तो जिससे कि भारत ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी भारत की आ चुकी है, भारत के अंदर इकोसिस्टम तैयार करना है जिसमें कि कॉन्टिन्यूअस लर्निंग हो, जहां पे कि इंडस्ट्री, एकेडमिया, गवर्नमेंट सब साथ मिलके जो है जो हमारी वर्कफोर्स है उसको जो है हमें फ्यूचर रेडी बनाना है।
1: श्रोताओं, देश की राजधानी दिल्ली में आज भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से एक महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर केंद्र कई सारी बातों पर चर्चा हुई, बहुत सारे विचार रखे गए। और सबसे बेहतर हमारे विशेषज्ञ ने जो कहा कि एक ओर शिक्षा, प्रतिभा, कौशल, दूसरी ओर उद्योग, और तीसरी ओर देश की नीतियां इस दिशा में हो कि हम वास्तुतः दुनिया को दिशा दिखा सकें और तीनों का एकीकरण कर सकें। इस अवसर पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने कहा,
2: What is it that AI can do to enhance productivity, enhance efficiency and effectiveness across a range of sectors? How is it that India can adapt AI and what is it that India can contribute in this space? Which is what application and AI-based solution capital of the world and the way in which we can actually roll out using our talent. What is the way in which we roll out AI for the rest of the world? Today, one of the things that many people, many experts do comment is that while there's a lot of investment taking place in building out data centers, in, you know, the chips that need to be done for this, the high bandwidth memory that needs to work in the data centers, on the infrastructure side, there's a lot of effort which is going on into building the models. But ultimately, all these are just the infrastructure piece of the play. What happens with what actually gets deployed at the enterprise level and at various levels? And the deployment of AI in enterprises is still lagging across the world, not just in India, but across the world. And that is truly where I think GCCs in India will come in and play that critical role.
1: डॉक्टर मेहता, यहाँ से दिशाएं स्पष्ट होनी शुरू हो रही हैं कि हमारा भविष्य क्या है और किस रूप में इसे कार्यान्वित करना है। यहाँ पर हमारा सवाल ये होगा कि जो लक्ष्य हम सामने रख रहे हैं कि उच्च कौशल और तकनीक का जो वास्तविक उत्पाद है AI के ऐप के रूप में,
0: अभी सेक्रेटरी ने भी कहा कि कैसे हम स्किल सेट्स को यहाँ पे सिर्फ BPO जॉब्स, हमें BPO जॉब के लिए ही नहीं काम करना है, बल्कि जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बन रहे हैं उसमें हमें हायर लेवल जॉब्स के लिए जो है अपने आप को तैयार करना है। तो उसमें जो पहला पिलर मैंने बताया स्किल है, और जो सेकेंड पिलर है वो होगा इनोवेशन। क्योंकि आप जो नेक्स्ट लेवल के GCC आएंगे वो सिर्फ यहाँ पे भारत में सिर्फ ग्लोबल मैंडेट को सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं होंगे, बल्कि हमें एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ेगी, इनोवेशन का हब बनना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम करना है, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी पड़ेंगी, और उसके लिए हमें एक प्रोडक्ट हब बनाना पड़ेगा जिसमें विश्व के लिए इसमें प्रोडक्ट को बना सकें। जैसे कि मेक इन इंडिया हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको लॉन्च किया था आज से 10 साल पहले, उसमें कई सारी प्रोग्रेस

0: बच्चे हैं 18 साल, 20 साल, 30 साल से कम उम्र के जो युवा हैं, वो भी आपने देखा यूनिकॉर्न का स्टेटस ले चुके हैं। ऐसी ऐसी कंपनी देश में अभी हैं जिसमें कि 1.5 साल 2 साल के अंदर वो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन करीब, आज के अगर टर्म में देखें तो करीब 10,000 करोड़ से ऊपर जिसका वैल्यूएशन है, वो एक यूनिकॉर्न मानी जाती है कंपनी। तो ये हमारे देश में एक इनोवेशन का जो एक कल्चर बन चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें फर्दर इसको स्ट्रॉन्ग करना है, इंडस्ट्री, एकेडमिया और गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन करके एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ एक्सीलरेट करना है इनोवेशन को। तभी हम जो यूनिवर्सिटीज में टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी उसको कैसे हम कॉमर्शियली उसको वायबल बनाएं, इस पे हमें काम करना है, जिससे कि जो विश्व की समस्याएं हैं तो उसको हम भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसको हम कैसे सॉल्यूशन निकालें। जो थर्ड पिलर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, वो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। अब ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कैसे आएगी? सबसे पहले हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, जो कि बहुत कुछ हो रहा है। आज अगर आप रोड की बात करें, भारत जो है विश्व का लार्जेस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आज बन चुका है। तो इसमें ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं भारत की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉलिसीज स्टेबल हैं और हमारा जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है बहुत उसमें स्टेबिलिटी है, और हमारे पास आज एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ हो चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इतने सारे काम हो रहे हैं, और जो भारत का एक रिफॉर्म का जो मुहिम चली है वो बिल्कुल आगे चलती जा रही है। और डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें, जिसमें कि 1.4 बिलियन 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ वो लोग है, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव जो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हीं सब चीजों से होता है। और इंडिया ने कई ऐसे रिमार्केबल इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसमें समय से पहले ही इन सब चीजों का ऐलान किया था, और आज उसमें कई सारी प्रोग्रेस हो चुकी है। जैसे डिजिटल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो सारे रिफॉर्म्स हैं, इससे जो है हमारे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया में आ रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आर्बिट्रेशन के फील्ड में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के फील्ड में हमने काम किए हैं। इंडिया जो है अपने आप को एक वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इनोवेशन इकोसिस्टम बनने की तरफ इसमें काम कर रहा है।
1: डॉक्टर मेहता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत में नवाचार, उच्च कौशल रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं गजलों के कार्यक्रम में जगदीश सिंह की आवाज़ में गजल, और आप सुनते हैं जगदीश सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ों में।

0: श्रोताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंद

श्रोताओं, रात की शांत सुहानी और खामोश फिजा में अभी आपने सुना तलत महमूद के मखमली आवाज में फिल्म संगदिल का ये गीत। राजेंद्र कृष्ण के गीत को संगीत से सजाया था सज्जाद हुसैन ने। और अब श्रोताओं, रात जैसे जैसे गहराती है वैसे वैसे ही मन की भावनाएं भी और गहरी होती चली जाती है। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो समय की सीमाओं को पार कर सीधे दिल में उतर जाते हैं। ऐसा ही एक अमर गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल एक मंदिर से। तो श्रोताओं, सुनते हैं लता मंगेशकर की सुमधुर आवाज़ में ये अमर गीत।

और अब श्रोताओं, बढ़ते हैं एक ऐसे सदाबहार गीत की ओर जिसे सुनते ही मन में ठंडी हवा, चांदनी रात और प्यार की मीठी सी अनुभूति जाग उठती है। गीतकार शैलेंद्र के खूबसूरत बोल और संगीतकार रवि के धुन पर आशा भोसले और किशोर कुमार की चुलबुली दिलकश आवाज ने इस गीत को हमेशा के लिए अमर बना दिया। तो आइए सुनते हैं, रात के इस सुहाने पल को और भी हसीन बनाते हैं और सुनते हैं फिल्म दिल्ली का ठग का ये सदाबहार युगल गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों के रंग, और अब श्रोताओं सुनते हैं लता मंगेशकर के मधुर और भावपूर्ण आवाज़ में सजा यह गीत। अपनी सादगी और संवेदनशीलता के लिए आज भी श्रोताओं के दिलों में बसा हुआ है। जैसे जैसे रात ढल रही है श्रोताओं, चांद बादलों में ओझल होने लगता है, वैसे वैसे ही इस गीत के बोल मन की भावनाओं को और भी गहराइयों से छूते हैं। तो आइए रात के इन सात शांत और सुहाने पलों में सुनते हैं लता मंगेशकर की सुमधुर आवाज़ में ये खूबसूरत नगमा।

दोस्तों, रात की तन्हाई में जब यादें दस्तक देती है तो कुछ गीत सीधे दिल से बात करने लगते हैं। इंतजार, प्रेम और मिलन की चाह को शब्दों में पिरोने वाले एक ऐसे ही मधुर गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की भावपूर्ण आवाज़ में। तो आइए सुनते हैं ये सदाबहार गीत।

खट खट है समा, हर नजारा है जवां, छा गया चारों तरफ मेरी आहों का।

दोस्तों, रात अब अपने पूरे शबाब पर है। चारों ओर सन्नाटा, ठंडी हवाएं और चांदनी का जादू। ऐसे ही मनमोहक माहौल में कुछ गीत दिल की गहराइयों तक उतर जाते हैं। अब बारी है ऐसे अमर नगमे की, जो आज भी उतना ही लोकप्रिय है जितना अपनी प्रस्तुति के समय था। फिल्म दुलारी का यह गीत संगीतकार नौशाद के मधुर धुन पर, गीतकार शकील बदायूनी के भावपूर्ण बोल और मोहम्मद रफ़ी की दर्द भरी दिलकश आवाज़ का अनुपम संगम है। तो आइए इस सुहानी रात को और भी यादगार बनाते हैं और सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी का ये सदाबहार गीत।

0: चुकी, ना जाने तुम कब आओगे।
1: इन्हीं मधुर और सदाबहार गीतों के साथ सुतों हमारा आज का रात्रि संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग यहीं समाप्त होता है।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं कुछ ही पलों में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। समाचारों के लिए आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में

0: ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टिलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसकी कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियुक को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला 11 जुलाई को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कल आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला ब्रिस्टल में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. India and Australia today adopted a new joint declaration on defense and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said, "The Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia." Later briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said, "Both the sides finalized the administrative arrangement for a long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net zero goals." Prime Minister Narendra Modi today said, "India's aspiration to become one of the world's top three economies at the earliest is driven by the motto of grow more, achieve more." Mr. Modi was addressing the Indian community at the Marvel Stadium in Melbourne.
2: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर।